सुप्रभात, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज है सोमवार, शक संवत 1948 ज्येष्ठ माह की चौथी तिथि, तदनुसार 25 मई 2026। 5:58 मिनट हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी रांची है, सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष

0: विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। खेती किसानी कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय है समन्वित कृषि प्रणाली। चर्चा कर रही है अनीता तिर्की।
3: समन्वित कृषि प्रणाली एक नई तकनीक है जिसमें कृषि के विभिन्न उद्यमों जैसे फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल और सब्जी उत्पादन, मछली पालन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी का जब एक साथ इस प्रकार समायोजन किया जाए कि वे एक दूसरे के पूरक हो, जिससे संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता और लाभप्रदता में पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वृद्धि की जा सके, तो इसे हम समेकित कृषि प्रणाली कहते हैं। चूंकि ये स्वसंपोषित प्रणालियां अवशेषों के चक्रीय और जल और पोषक तत्व आदि के निरंतर प्रवाह पर आधारित है, जिससे कृषि लागत में कमी आएगी, वहीं दूसरी ओर लगातार आमदनी और रोजगार का सृजन होगा। किसान भाई बहुत पहले से ही कृषि के विभिन्न उद्यमों को एक साथ अपनाते चले आ रहे हैं, लेकिन उन उद्यमों में केवल एक ही उद्यम को वह व्यवसाय के तौर पर अपनाते हैं जो उसकी आमदनी का मुख्य जरिया था। अन्य उद्यमों को वह अपनी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए रखते थे, जैसे एक या दो मवेशी को रखना ताकि उसके परिवार को रोजाना दूध मिल सके और अधिक होने पर ही वह उसे बेचता था। इस पुरानी प्रणाली को हम मिश्रित कृषि कहते हैं। लेकिन समन्वित कृषि प्रणाली में किसान को अपने भूखंड के अनुसार कृषि के विभिन्न उद्यमों को एक निश्चित अनुपात में रखा जाता है, ताकि एक उद्यम दूसरे उद्यम की सहायता करे, जिससे उत्पादन लागत में कमी लाते हुए किसानों को ज्यादा से ज्यादा आमदनी प्राप्त हो सके। उद्यमों का चुनाव करते समय किसान भाइयों को कई कारकों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे उस स्थान की पर्यावरण स्थिति, उपलब्ध मजदूरों की संख्या, जमीन की स्थिति और आकार, धन की उपलब्धता, उद्यम के बारे में जानकारी, सारे उद्यमों को एक साथ चलाने की क्षमता, बाजार की उपलब्धता तथा सामाजिक परिवेश के अनुसार ही अपने उद्यमों का चुनाव करना चाहिए। समन्वित कृषि प्रणाली के अंतर्गत किसानों को बहुत भारी बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन उद्यमों को जो उस क्षेत्र विशेष में किसान अपना रहा है, उन्हीं उद्यमों को एक निश्चित अनुपात में रखने की जरूरत है, ताकि उद्यम एक दूसरे के पूरक हो जाएं। इस प्रणाली के अंतर्गत किसान अपनी भूमि के 1/10 भाग पर तालाब या ट्रेंच बनाकर वर्षा जल संग्रहित कर सकते हैं। इस संचित जल में मछली तथा बत्तख पालन के साथ साथ इसे सिंचाई के लिए साल भर इस्तेमाल किया जा सकता है। मछली पालन के तहत तालाब में 6 की मछलियां, रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प को पाला जाता है। ये मछलियां तालाब के विभिन्न स्तर पर रहती हैं। इस तरह तालाब में संग्रहित विभिन्न स्तर के जल का भरपूर दोहन करते हुए उच्च उत्पादन किया जा सकता है। साधारणतः 1 तालाब के लिए 6,000 से 7,000 जीरा डाला जाता है, जिसकी लंबाई 3 से 4 इंच हो। बत्तख के साथ मछली उत्पादन करने पर 8 से 10 इंच की 3 से 4 हजार जीरा तालाब में डाला जाता है, ताकि बत्तख उन्हें खा ना सके। समन्वित कृषि प्रणाली के अन्य उद्यम जैसे मवेशी, सुकर, मुर्गी या बत्तख पालन द्वारा परित्यक्त मल मूत्र और अपशिष्ट पदार्थों को सीधे तालाब में निष्कासित किया जा सकता है, जिससे मछलियों के लिए समुचित प्राकृतिक भोजन उपलब्ध हो। इस व्यवस्था में मछली पालन के लिए अलग से पूरक आहार की आवश्यकता नहीं होगी और 1 में मछली उत्पादन के लिए 200 से 300 बत्तख या 500 से 600 मुर्गी या 60 से 70 सुकर या 5 से 6 मवेशी का उत्सर्जित मल मूत्र काफी होगा। बत्तख के साथ साथ मत्स्य उत्पादन करने पर बत्तखों द्वारा तालाब में विचरण करने से पानी में जो उछाल होता है, उसे वायुमंडलीय ऑक्सीजन पानी में जाता है, जो मछलियों के लिए जीवनदायी का काम करता है।
2: समन्वित कृषि प्रणाली, इस विषय पर अभी आप चर्चा सुन रहे थे। चर्चा कर रही थी अनीता तिर्की। अब आज का खेती किसानी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी के रांची केंद्र से अब प्रस्तुत है आज का चिंतन। संकलन और वाचन स्वर है दिनेश कुमार लाल का।
4: नदी समुद्र तक पहुंचती है तो अपने साथ पानी के अतिरिक्त बड़े बड़े लंबे पेड़ भी ले जाती है। एक दिन समुद्र ने नदी से पूछा कि तुम पेड़ों को अपने प्रवाह में ले आती हो, परंतु कोमल बेलों को अपने साथ में नहीं लाती हो। नदी बोली कि जब जब पानी का बहाव बढ़ता है, तब तब बेलें झुक जाती हैं और पानी को रास्ता दे देती हैं, इसलिए वे बच जाती हैं, जबकि पेड़ तन कर खड़े रहते हैं, इसलिए वे अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। ठीक वैसे ही जीवन में जो विनम्र रहते हैं, उनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। हमारे धर्म ग्रंथों का मूल भी यही है, जो नम्र होकर झुकते हैं वही ऊपर उठते हैं। विनम्रता न केवल हमारे व्यक्तित्व में निखार लाती है, बल्कि कई बार सफलता का कारण भी बनती है। उसके कारण जो सम्मान मिलता है, उसका एक अलग महत्व है। कोमलता सदा जीवित रहती है, जबकि कठोरता का जल्द ही विनाश हो जाता है। विनम्र बनकर व्यक्ति सहनशील बनता है और जीवन की परिस्थितियों से सामंजस्य बैठा लेता है। कई लोग अपने विशेष कार्य में माहिर होते हैं, परंतु विनम्रता के अभाव में घर या कार्यालय में सदैव परेशानी का शिकार होते हैं। विनम्रता कायरता नहीं है, वो व्यक्ति को शांति, सहनशीलता, शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है। मनुष्य यदि विनम्रता से जीवन जीना सीख ले तो उसकी अनेक परेशानियां चुटकी में समाप्त हो सकती हैं। केवल थोड़ा व्यवहार में बदलाव लाने मात्र से यह संभव हो सकता है। भारतीय संस्कृति में विनम्रता को व्यक्त करने के लिए प्रणाम एवं अभिवादन करने की परंपरा है। हमारे जीवन में विनम्रता बनी रहे इसलिए प्रार्थना, वंदना, स्तुतियां आदि की जाती हैं। दूसरों की सेवा, सहायता एवं दान किया जाता है। इससे हम अधिक विनम्र और कृतज्ञ बनते हैं। अर्थात हम सभी को अपने जीवन में विनम्रता को ही स्थान देना चाहिए, अहंकार को नहीं, क्योंकि अहंकार हमें तोड़ता है और विनम्रता हमें उच्च स्थितियों में पहुंचाती है।

ये था आज का चिंतन, संकलन और वाचन स्वर था दिनेश कुमार लाल का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, मीडियम वेव 546.45 मीटर और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है अनूप जलोटा की गाई इस देशभक्ति रचना के साथ।

अनूप जलोटा और साथियों के स्वर में आपने देशभक्ति रचना सुनी और अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की गायी भक्ति रचनाएं। रचनाएं पंडित नरेंद्र शर्मा की हैं और संगीत तैयार किया है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

0: लता मंगेशकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचनाएं। रचनाएं पंडित नरेंद्र शर्मा की थी, संगीत था हृदयनाथ मंगेशकर का। इसी के साथ आज का आराधना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरित मानस का
1: एपिसोड नंबर 119।

अवध के निकटवर्ती प्रदेशों तथा भारत के कतिपय अन्य भागों में विवाह संस्कार संपन्न हो जाने के बाद दुल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाए जाने का विधान प्रचलित है, जहां कुल देवता की पूजा की जाती है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोकाचार का गान किया गया है। उधर सुहागिनी स्त्रियां कुंवर और कुमारियों को कोहबर में ले आती हैं, जहां कुल देवता की पूजा अर्चना में मंगल गान के साथ लौकिक रीतियां संपन्न हो रही हैं। यहां पर वर वधु एक दूसरे के मुंह में कौर खिलाते हैं, जिसे लहकौर कहा जाता है। सुहागिनों के रूप में उपस्थित पार्वती श्री राम को तथा सरस्वती सीता को लहकौर सिखा रही हैं।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य मुख्य कार्यक्रम कौन कौन से हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा में भेंटवार्ता का विषय होगा मधुमेह जागरूकता जांच और समाधान। भेंटवार्ता का डॉक्टर अद्या, इनसे बातचीत की है संजीव कुमार लाल ने। सात बजकर 7:45 पर खुला आकाश में वार्ता का विषय होगा झारखंड के कथा पुरुष। वार्ताकार होंगे डॉक्टर प्रशांत गौरव। नौ बजकर 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता से राग अलहिया बिलावल में ध्रुपद गायन।

10 बजे कार्यक्रम होगा, आओ साथ चलें। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा गृह लक्ष्मी दिन के 12 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। सिप्रा बोस से हम आपको सुनवाएंगे ठुमरी और दादरा। हमारे अनुरंजनी कार्यक्रम में दोपहर 1:20 पर।

हरि हरण की गाई चंद गजलें आपको हम सुनवाएंगे सुगम संगीत में दोपहर 1:45 पर। आओ साथ चलें, कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया जाएगा 4:02 से। हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम।

श्रम युववाणी शाम 5:02 से। कामकाज साथियों के लिए होगा श्रमिक लोक कार्यक्रम शाम 5:30 पर। किसान भाई सुनेंगे खेती बाड़ी कार्यक्रम शाम 6:02 पर। इस कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी का विषय होगा मिट्टी की जान हरी खाद। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, इनसे बातचीत की है संजीव कुमार लाल ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की पूरी तरह संरक्षण करना है। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा को बधाई दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापार,

0: ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी रांची है। स्वास्थ्य चर्चा में भेंटवार्ता का विषय है मधुमेह, जागरूकता, जांच और समाधान। भेंट वार्ता कर रहे हैं डॉक्टर अद्या, इनसे बातचीत की है संजीव कुमार लाल ने।
3: मित्रों नमस्कार, जोहार। मित्रों आजकल के इस बदलती जीवन शैली में बहुत सारी बीमारियां आप तक धीरे से अपनी पहुंच बना रही है, शरीर के अंदर जगह बना रही है और आपको इसका पता नहीं चल पाता है। एक ऐसा ही बीमारी है जो बहुत ही कॉमन बीमारी है और इस बीमारी को हर लोग जानते हैं, वो है मधुमेह या डायबिटिक। डायबिटीज क्यों हो जा रहा है? आप अमूमन देखिए 10 लोगों से बात करेंगे उसमें 6 या 7 लोग इस मधुमेह की बीमारी या इस शक्कर की बीमारी से ग्रसित होते दिखलाई पड़ेंगे। क्या कारण है कि एक बहुत बड़ा युवाओं का वर्ग इस बीमारी के चपेट में आ जा रहा है? हमारा खान पान बहुत बिगड़ रहा है, क्यों हम मधुमेह के शिकार हो जा रहे हैं और इसका जाँच हम कैसे करें, कौन कौन सी जाँचें की जाती है ताकि आप इसका समय रहते इलाज कर सके। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे हॉस्पिटल के एडिशनल चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अद्या। डॉक्टर स्वागत है आपका यहाँ पर।
4: जी धन्यवाद।
3: ये मधुमेह इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है, क्या कारण आप मान रहे हैं इसका?
4: अगर हम देखें तो जो उसका सबसे बड़ा कारण है वो हमारी अनियंत्रित जीवन शैली है। हमारा खान पान, वजन का बढ़ना और रोज़मर्रा के दिनों में हम व्यायाम नहीं करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। जो जीवन शैली में जो हमारा परिवर्तन हुआ है वो डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या को बहुत बढ़ा रहा है।
3: यदि हमें लगता है कि डायबिटिक की शिकार हो रहे हैं तो जाँचें किस प्रकार हैं? बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है कि जाँचें किस प्रकार कराएं और बहुत लोग ये कहते हैं कि हमें तो शक्कर की बीमारी है ही नहीं और इस बीमारी को बहुत लोग सहजता के साथ स्वीकार नहीं करते हैं। तो यदि डायबिटिक आप हो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, तो क्या क्या लक्षण दिखलाई पड़ते हैं और जांचें हम कब से शुरू कर दें और कैसे करें?
4: डायबिटीज़ को पहले हम एक सरल भाषा में समझें कि डायबिटीज़ है क्या। दरअसल जब हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा एक सामान्य लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको मधुमेह की बीमारी बोलते हैं। और ये होती क्यों है? हम जानते हैं कि हमें एनर्जी के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तो हमारी जो कोशिकाओं में ग्लूकोज पहुँचता है वो एक हार्मोन के कारण होता है जिसको इंसुलिन हार्मोन बोलते हैं। वो इंसुलिन हार्मोन या तो पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है या जो इंसुलिन बन रहा है उसकी सेंसिटिविटी कम होती है, मतलब कम वो काम कर रहा है, जिसके कारण लोग डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं, मधुमेह के शिकार होते हैं। इंसुलिन की जो हमने जो सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस की बात की वो जीवन शैली से बहुत कुछ मिलती जुलती है। अगर हम अपनी जीवन शैली अच्छी करते हैं तो इंसुलिन का जो कि सेंसिटिविटी, इंसुलिन के काम करने की क्षमता भी बढ़ती है। इस कारण जीवन शैली से डायबिटीज बहुत ज्यादा रिलेटेड है। अगर जाँच की बात बोलें तो जो डायबिटीज की

0: जांच है वो बहुत ही सिंपल सी जांच है, जो रक्त की जांच से हम उसको पहचान सकते हैं, वो किसी भी लैब में आसानी से हो सकता है। सबसे पहले हम एक फास्टिंग ब्लड शुगर कराते हैं, मतलब खाली पेट में खून की जांच। उसका देने का तरीका है कि कम से कम 8 घंटे तक बिना कुछ खाए सुबह सुबह ये जांच दी जाती है। आप अपना ब्लड शुगर दें, अगर इसका लेवल 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो मतलब ये डायबिटीज़ या मधुमेह का संकेत है। 126 से ज़्यादा है तो फ्रैंक डायबिटीज़ है, अगर 110 टू 126 के बीच में है तो वो प्री डायबिटीज़ का लक्षण होता है। प्री डायबिटिक स्टेज एक ऐसा है कि जिसमें आप सतर्क हो सकते हैं, आप अपनी जीवन शैली ठीक कर सकते हैं, आप अपना खाना ठीक कर सकते हैं, तो उससे आपके डायबिटीज़ होने की क्षमता काफ़ी, जो उसकी संभावना काफ़ी कम हो जाती है। दूसरी जांच एक होती है जिसको हम लोग PPBS बोलते हैं, पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर, वो खाने के बाद होता है और खाना खाने के 2 घंटे के बाद हम लोग ब्लड शुगर की मात्रा को देखते हैं। अगर वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ का लक्षण है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जांच है जिसको ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन या भाषा में हम लोग जानते हैं HbA1c कहते हैं। वो दरअसल हमारे शरीर में पिछले 2 से 3 महीने में हमारे रक्त में औसत कितना ग्लूकोज रहा है उसको बताता है। यह एक तरह से आपके शुगर के, जो ब्लड में शुगर होता है ना, उसका एक रिपोर्ट कार्ड है कि पिछले 3 महीने में आपका खान पान कैसा रहा, आपकी जीवन शैली कैसी रही, ब्लड शुगर कितना कंट्रोल रहा। अगर ये 6.5%, इसको परसेंटेज में देखा जाता है, अगर ये 6.5% से ज़्यादा होता है तो फ्रैंक डायबिटीज़ है। बिटवीन 6 to 6.5% जो है, होना चाहिए 6% से कम, 6 to 6.5% प्री डायबिटिक स्टेज में आता है। एक रैंडम शुगर टेस्ट होता है जो हम लोग चलते फिरते कभी भी ना उसमें खाली पेट की जरूरत है या खाने के बाद कोई टाइम देखने की जरूरत नहीं है,
1: 24 घंटे में कभी भी
0: खाना खाने के बाद आप करा लो। वो रैंडम ब्लड शुगर भी आपका 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप डायबिटीज़ के परिभाषा के अंदर में आते हैं। मेन जांच तो सारी यही होती है। कुछ गर्भावस्था के दौरान जो डायबिटीज़ होता है उसके लिए हम लोग एक अलग से OGTT करते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसमें ग्लूकोज की एक खास मात्रा को पिलाने के बाद 2 घंटे तक, हर आधे आधे घंटे के अंतराल पर हम उसकी एक चैटिंग करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि गर्भावस्था की जो डायबिटीज़ है वो है कि नहीं।
1: जी, तो ये जाँचें जो आपने बताई,
0: हाँ जी,
1: 2 महीने 3 महीने के अंतराल पर और एक फास्टिंग और खाना खाने के बाद, ये कब कब कराना चाहिए ये जाँचें? और जब आप एक लेवल क्रॉस कर जाते हैं तो फिर इसकी क्या उपचार है, जीवन शैली को कैसे हम सुधार करें, हमारी खान पान कैसी होनी चाहिए ताकि हम स्वस्थ जीवन यापन कर पाए?
0: सबसे पहले तो हमें देखें कि किन लोगों को निश्चित रूप से ये जांचें करानी चाहिए। तो वैसे व्यक्ति जिनकी उम्र 30-35 साल या उससे अधिक है, जिनके परिवार में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, जिनको फैमिली में मदर फादर किन्हीं को भी अगर डायबिटीज़ रही हो, जिनका वजन अधिक है, जिनका ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा रहता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा रहता है, जिनकी जीवन शैली बहुत सक्रिय नहीं है, और महिलाओं में यदि गर्भावस्था में उन्हें डायबिटीज़ की हिस्ट्री रही हो, तो वैसे लोगों को तो अपनी जाँच जरूर करानी चाहिए। आपको कब करानी है, कितने कितने अंतराल पर करानी है, वो एक है। तो ऐसा है कि हर व्यक्ति का अपना रिस्क और कंडीशन है और उस पर डिपेंड करता है कि आप कब कब जांच कराएं। आमतौर पे देखें तो अगर उम्र आपकी 35-40 से ज़्यादा है तो साल में एक बार तो शुगर की जांच जरूर करा लें। अगर डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री है, वजन ज़्यादा है, BP ज़्यादा रहता है आपका, तो 6 से 12 महीने में आपको जाँच करा लेनी चाहिए। अगर आपने पहले जांच कराई है और पिछले जांच में आपका बॉर्डरलाइन रहा है, बॉर्डरलाइन मतलब जो मैंने प्री डायबिटिक वाला स्टेज बताया कि 100 से 126 के बीच में फास्टिंग या शुगर 160 से 200 के बीच में है, तो वैसे 3 से 6 महीने में आपको जरूर फिर से जांच करा कर देख लेना है। और जिनको डायबिटीज़ हो रखा है तो उनको अपने उनकी दवाइयाँ कितनी काम कर रही हैं, कितना कंट्रोल है, उसके लिए उनको फास्टिंग ब्लड शुगर जो खाली पेट की जांच है अपने डॉक्टर की सलाह से या हर महीने में जरूर एक बार करा लेना चाहिए। HbA1c जो मैंने बताया कि वो एक आपका रिपोर्ट कार्ड है पिछले 2 से 3 महीने के ब्लड शुगर का, तो उसको 3 महीने के अंदर रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, तो उसको आमतौर पर 3 महीने के बाद हम कराते हैं। शुगर अगर नियंत्रित है तो हम हर 6 महीने के बाद भी हम करा सकते हैं अगर आपका नियंत्रित है। कई बार क्या होता है कि शुरू के स्टेज में जब हम लोग दवाइयाँ शुरू करते हैं तो हमारा जब शुगर नियंत्रित नहीं रहता है तो हमें थोड़ी जल्दी वो टेस्ट कराने की जरूरत हो सकती है 3 महीने के बाद भी। तो हर व्यक्ति का केस अलग अलग है, तो वो डिपेंड करता है।
1: इन सारी जाँचों में यदि निष्कर्ष निकल पाता है कि आप शुगर की बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं,
0: हाँ जी,
1: तो उपचार किस प्रकार किया जाता है मैडम, और अपनी जीवन शैली को किस प्रकार हम व्यवस्थित करें ताकि एक सामान्य जीवन हम जी सकें?
0: जी जी, सबसे पहले तो अगर आपको आपकी जांच में पता चला कि आपका ब्लड शुगर ज़्यादा है तो आप और भी कुछ बीमारियों की तरफ जरूर ध्यान दें और अपनी जांच कराएं, जैसे कि आप अपना नियमित ब्लड प्रेशर, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जो आपका लाइफस्टाइल है जिसके कारण शुगर हो रहा है, शुगर ज़्यादा हो रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है, हाइपरटेंशन के लिए भी बहुत कुछ वही है। तो हम अगर ब्लड प्रेशर की नियमित जाँच कराएँ, उनके कोलेस्ट्रॉल की जाँच कराते रहें, उनके किडनी फंक्शन टेस्ट की जाँच कराएँ, उनके आँखों के रेटिना की जाँच कराएँ और उनके पैरों की, हृदय की, तो ये सब जांचें हो जानी चाहिए जिनका एक बार डायबिटीज का लक्षण आ गया है
1: जी।
0: और अगर लक्षण आया है तो वो डॉक्टर के पास जाएं,
1: दवाइयां
0: शुरू करें। और इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि दवाई लेने में आप देर ना करें और आप ये ना सोचें कि नहीं मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि डायबिटीज एक साइलेंट किलर है, साइलेंट बीमारी है। कई बार क्या होता है कि काफी सालों तक आपका ब्लड शुगर ज्यादा है, आप में कोई लक्षण नहीं है, और जब तक लक्षण आता है तब तक शरीर के बाकी हिस्सों पर वो अपना असर पहुंचा चुका होता है, प्रभावित कर चुका होता है। तो जब तक लक्षण आया, जैसे उसके लक्षण में बहुत प्यास लगना, आपका वजन घटना, कमजोरी लगना, या बार बार पेशाब होना, अगर इस तरह की सारी आपको लक्षण आ रहे हैं तो उससे काफ़ी पहले से आपका ब्लड शुगर वो ज़्यादा हो रखा रहता है। तो अच्छा है कि जैसे ही आपको पता चले, आप एक बार आप डायबिटीज के डेफिनेशन में आ गए जो मैंने लेवल बताया था। आजकल की दवाइयाँ बहुत ही सुरक्षित हैं, आप अपने डॉक्टर की सलाह में अगर रहें तो ये दवा से आपको
1: जी नियमित रूप से आप दवाइयाँ गोलियों का सेवन करने लग जाते हैं और एक व्यवस्थित जीवन आप जीना शुरू कर देते हैं तो आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। क्या कहेंगे हमारे सुनने वाले साथियों को कि इस बीमारी से ग्रसित नहीं हो और जिनको ये बीमारी हो गया है वो अपने जीवन शैली को, अपनी दिनचर्या को बिल्कुल व्यवस्थित कर लें।
0: बिल्कुल, मैं भी अपने श्रोताओं से यही कहूंगी कि आप अपने समय पे जांच कराएं, संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें,
1: टेंशन नहीं लें
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात कि डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयां ना छोड़ें
1: जी, और सहजता के साथ स्वीकार करें कि हमें मधुमेह हो गया है।
0: बिल्कुल, आज की सावधानी ही कल की सुरक्षा है
1: जी। तो टेंशन वो करें बाय बाय और अपनी जीवन शैली को बिल्कुल व्यवस्थित करें। एक बढ़िया आप जीवन जीते हैं और एक अच्छा लाइफ स्टाइल आपकी रहती है तो फिर ये डायबिटीज या कोई भी बीमारी आप तक नहीं पहुंचेगी और आप एक बढ़िया जीवन जी पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दया, एडिशनल चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट साउथ ईस्टर्न रेलवे हॉस्पिटल रांची। आज आप इस कार्यक्रम में बड़ी अच्छी आपने बातचीत की डायबिटिक के बारे में। आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा, रोज की तरह हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। कल फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार, जोहार।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मधुमेह जागरूकता जांच और समाधान विषय पर डॉक्टर अद्या से ली गई भेंटवार्ता। इनसे बातचीत की संजीव कुमार लाल ने। ये आकाशवाणी रांची है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी गानों का हमारा प्रोग्राम सुबह सुरीली।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
4: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: पर्सनल लोन ऑफर
7: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
6: फ्री ट्रिप टू दुबई
7: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूँ यार।
8: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है,
7: तो क्या करूँ।
8: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
7: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
8: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
2: सुबह सुरीली कार्यक्रम का पहला गाना है आविष्कार फिल्म से। इस गाने को जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने गाया है। रचना पारंपरिक है, संगीत कनु रॉय का है।

मोहम्मद रफी की गाई इस रचना के बाद आपको सुनवा रहे हैं येसुदास की आवाज में अमित खन्ना का लिखा गाना। इस गाने को संगीत से संवारा है राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम है स्वामी।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए गुड्डी फिल्म की रचना, स्वर है वाणी जयराम का, गुलजार की रचना है, संगीत वसंत देसाई का है।

0: इस गाने के साथ ही आज का सुबह सुरीली कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, खुला आकाश। इस कार्यक्रम में आज की वार्ता का विषय है झारखंड के कथा पुरुष। वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रशांत गौरव।
1: झारखंड में कथा लेखन की सुदीर्घ परंपरा रही है। यहाँ का कथा परिदृश्य लगभग 8 दशकों में फैला है। आज भी समकालीन हिंदी कथा साहित्य में कथाकारों की एक बड़ी संख्या सम्मानजनक उपस्थिति दर्ज करा रही है। यह उपस्थिति क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों स्तरों पर प्रभावपूर्ण है। झारखंड में हिंदी लेखकों के 3 वर्ग हैं। पहले वर्ग में ऐसे लेखक सम्मिलित हैं जिनकी जन्मभूमि इसी अंचल में। दूसरा वर्ग उन हिंदी लेखकों का है जिनकी कर्म भूमि झारखंड है। और तीसरे वर्ग में प्रवासी लेखकों की बड़ी संख्या है जिन्होंने कम या अधिक समय यहाँ बिताया और अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इसलिए हिंदी साहित्य के क्षेत्रीय इतिहास लेखन में तीनों श्रेणियों के साहित्यकारों की प्रमुख भूमिका रही है। झारखंड का हिंदी कथा परिदृश्य अनेक कथाकारों की उपलब्धियों का इतिहास है। इन कथाकारों में प्रेमचंद युग के राधाकृष्ण से लेकर हिंदी के नवीनतम कथाकारों तक की चर्चा की जा सकती है। राधाकृष्ण को झारखंड का पहला विशिष्ट और समर्पित कथाकार कहा जा सकता है। हिंदी साहित्य में जो सम्मान प्रेमचंद को प्राप्त है वही सम्मान राधाकृष्ण को झारखंड के हिंदी साहित्य में प्राप्त है। अपनी सहज, संप्रेषणीय और विशिष्ट कथा भंगिमा के साथ किस्सागोई की विलक्षण क्षमता के कारण वे अपने समय में चर्चित, प्रशंसित रहे थे। उनकी पहली कहानी सिन्हा साहब अप्रैल 1929 में हंस में प्रकाशित हुई। इनके प्रमुख कहानी संग्रह रामलीला, सजला, गल्पिका, गेंद और गोल, आहत है। वहीं उपन्यासों में फुटपाथ, रूपांतर, बोगस, सनसनाते सपने आदि प्रमुख हैं। राधा कृष्ण ने विपुल साहित्य का सृजन किया है लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी अधिकांश रचनाएं आज भी अप्रकाशित हैं। राधा कृष्ण के बाद झारखंड में कथाकारों की लंबी कतार बनती चली गई। 1917 ईस्वी में लोहरदगा जिले में जन्मे द्वारिका प्रसाद का लेखन 1948 से 78 के बीच 3 दशकों में सिमटा हुआ है। द्वारिका प्रसाद झारखंड के पहले नियमित उपन्यासकार के साथ ही हिंदी में व्यक्तिगत निबंधों के जन्मदाता भी हैं। कहानी उपन्यासों के अतिरिक्त मनोविज्ञान तथा यौन विज्ञान संबंधी रचनाएं भी लिखी है। इनके उपन्यासों में अंकुश, पहिए, भटका साथी, स्वयं सेवक, अनामी, कांता, घेरे के बाहर प्रमुख है। अपने समय में घेरे के बाहर काफी विवादास्पद रही। इनकी 2 कहानी संग्रह परियों की कहानियां, शेर का शिकार प्रकाशित हो चुका है। कथाकारों के इसी क्रम में 1 नवंबर 1905 को भोजपुर जिले के पवार गांव में जन्मे योगेंद्रनाथ सिन्हा, जिनकी कर्म भूमि झारखंड रही, यहां वन विभाग के सर्वोच्च पद मुख्य वन संरक्षक के पद पर रहकर सेवानिवृत्त हुए। उनकी रचनाओं में वन के मन की निश्चल आत्मीयता, वन का पावन जादू पूरे सम्मोहन के साथ खुलता है। पहाड़ की पुकार, दुम्भी हो, मूछ की लड़ाई, चलो बादलों में छिप जाएं, खोया कंगन, आसमान तारा इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। वहीं वन लक्ष्मी,

वन के मन में प्रसिद्ध उपन्यास है। कथाकारों के इस कतार में जमशेदपुर के गुरुवचन सिंह, जिनके युग और देवता, नीम की निबोलियां, धरती के बेटे, एक और निवेदन, बुझी हुई राख, आसमान दूर है, हे अरण्य कुछ कहो, मोतियाबिंद आदि प्रमुख कहानी संग्रह है। वन पाखी, रेखाएं और पंजाब की त्रासदी पर केंद्रित सबे घर राम बोले महत्वपूर्ण उपन्यास है। श्रवण कुमार गोस्वामी आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठतम व्यंग कथाकारों में से एक हैं। उनकी रचनात्मक प्रतिभा विलक्षण है। मनोविश्लेषण की गहन क्षमता, सूक्ष्म सौंदर्य बोध एवं कला के प्रति ईमानदारी एवं समर्पण का भाव उन्हें अन्य कथा लेखकों से अलग साबित करता है। उन्होंने अपने उपन्यासों में समाज के यथार्थ की आलोचना व्यंग के माध्यम से की है। देश में व्याप्त गरीबी, भ्रष्टाचार, पूंजीवाद, अशिक्षा, गलत शिक्षा प्रणाली, गिरते मूल्य को अपने उपन्यासों से उभारा है। उनका संपूर्ण औपन्यासिक लेखन मानव मूल्यों और आदर्शों को समर्पित है। उनके प्रत्येक उपन्यास में कोई न कोई पात्र ऐसा है जो विषम परिस्थितियों को झेलता हुआ भी अपने लिए साहसपूर्ण मार्ग चुनता है और अपनी अलग पहचान निर्मित करता है। इनके उपन्यासों में जंगल तंत्रम, जिसे 1980 में झारखंड का प्रसिद्ध राधाकृष्ण पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, सेतु, भारत बनाम इंडिया, दर्पण, झूठ ना बोले, राहु केतु, मेरे मरने के बाद, चक्रव्यूह, एक टुकड़ा सच, आदमखोर प्रमुख हैं। जिस दिए में तेल नहीं, एकमात्र कहानी संग्रह है। इसी कड़ी में रांची विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर रहे डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी ने अपनी कहानियों के माध्यम से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। इनकी पहली कहानी बॉडम 1961 में धर्मयुग में प्रकाशित, साल वन का आखिरी पेड़ उनका प्रमुख कहानी संग्रह है, वहीं जंगल उपन्यास है। सन 1958 में गया से रांची आए विद्याभूषण एक साथ कथाकार और समीक्षक भी हैं। 1963-64 तक आते आते उनकी स्तरीय कहानियां देश भर के शीर्ष पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। उनकी अब तक 4 कहानी संग्रह प्रकाशित है, जिनमें कोरस, कोरस वाली गली, नायाब नर्सरी प्रमुख है। टाटा स्टील से सेवानिवृत्त जयनंदन समकालीन हिंदी कथाकारों के बीच खासे चर्चित हैं। इनके कहानी लेखन की विशिष्टता के कारण भारतीय ज्ञानपीठ का युवा लेखन पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। इनकी रचनाओं में सामाजिक विसंगतियां और अंतर्विरोधों की झलक मिलती है। सन्नाटा भंग, विश्व बाजार का ऊंट, एक अकेले गांधी जी, कस्तूरी पहचानोवत्स, दाल नहीं गलेगी, अब घर फूक तमाशा, गुहार, गांव की सिसकियां, भीतर घात इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। श्रम एवं जयते, ऐसी नगरिया में कई विधि रहना, सल्तनत को सुनो गांव वालों इनके उपन्यास हैं। पौराणिक ऐतिहासिक पात्रों को अपने उपन्यास में नए ढंग से प्रस्तुत कर पूरे वैश्विक फलक पर हिंदी की गरिमा को विशेष पहचान दिलाने वाले नरेंद्र कोहली जनप्रिय रचनाकार रहे हैं। भारत विभाजन के पश्चात सियालकोट, अब पाकिस्तान से जमशेदपुर आए नरेंद्र कोहली रांची विश्वविद्यालय के हिंदी प्रतिष्ठा में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्नातक रहे हैं। पुनरारंभ, आतंक, साथ सहा गया दुख, दीक्षा, महासमर, तोड़ो कारा तोड़ो, वसुदेव, पूत अनोखे जाए इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। परिणति, कहानी का अभाव, दृष्टि देश में एकाएक, सटल, नमक का कैदी, निचले फ्लैट में आदि प्रमुख कहानी संग्रह है। वासुदेव की पिछले 3 दशकों में लगभग 100 से अधिक कहानियां विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपी है। उनकी 14 कहानियों का संकलन इस जंगल के लोग 1993 में प्रकाशित हुआ। इसकी पांडुलिपि को बिहार सरकार के

0: राजभाषा विभाग द्वारा युवा लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। इन कथाकारों में सी भास्कर राव की विशिष्टता आज भी बनी हुई है। मूलतः तेलुगु भाषी सी भास्कर राव ने हिंदी साहित्य के श्री वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आतंक तथा अन्य कहानियां, दावानल, एक अधूरी आत्मा, ताकि शेष रहे मन, विशिष्ट कहानियां, वायरस 2000, मेरी यादगार कहानियां, हादसे से गुजरते हुए तथा अन्य कहानियां, बस स्टॉप पर लाश, रोना भी एक रोशनी है, प्रमुख कहानी संग्रह है, दिशा, शोध संघर्ष, कटघरे में कुत्ता उनका प्रमुख उपन्यास है। पलामू झारखंड में जन्मे मनमोहन पाठक अपने एकमात्र उपन्यास गगन घटा घरानी से हिंदी पाठकों के हृदय में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। पलामू रोहतास की सीमा पर स्थित उरांव बस्तियों की संघर्ष कथा का बड़ा सजीव चित्रण मनमोहन पाठक ने किया है। भारत के मानचित्र के बाहर जहां तक हिंदी भाषा और साहित्य पहुंची है, रणेंद्र के उपन्यासों की गूंज वहां तक है। पेशे से प्रशासनिक अधिकारी होते हुए रणेंद्र ने साहित्य की जो अभूतपूर्व सेवा की, उसकी मिसाल दुर्लभ है। रणेंद्र की रुचि हास्य के समाज की अस्मिता से जुड़े सवालों को सामने लाने तथा उन समस्याओं पर बहस कर उसका समाधान प्रस्तुत करना रहा है। ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता देश, गूंगी रुलाई का कोरस उनका चर्चित उपन्यास है। रात, बाकी एवं अन्य कहानियां, 56 छुरी, 72 पेंच प्रमुख कहानी संग्रह है। 1990 के बाद हिंदी कथा साहित्य में एक नई पीढ़ी का आगमन हुआ। पंकज मित्र इसी नई पीढ़ी के प्रमुख कहानीकार हैं। इनकी अब तक 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें लगभग 52 कहानियां संकलित है। अंग्रेजी साहित्य में एमए और पीएचडी की उपाधि अर्जित किए पंकज मित्र देश भर के कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुके हैं। इंडिया टुडे का युवा लेखन पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। इनकी रचनाओं में गांव और शहर के बीच बसे कस्बाई जीवन का चित्रण मिलता है। पंकज मित्र के कहानियों के प्राण तत्व है उसकी व्यंग भाषा। इनका व्यंग फलक बहुत विस्तृत है। जीवन के सभी क्षेत्रों में फैली विसंगतियों को सुंदर अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में मिलती है। क्विज मास्टर, हुड़क लुल्लू, जिद्दी रेडियो, बसिंदा एट द रेट ऑफ तीसरी दुनिया, अच्छा आदमी, एक हंसोड़ का हलफनामा इनका प्रमुख कहानी संग्रह है। बाद की पीढ़ी में प्रियदर्शन, नीरज नीर, मृत्युंजय कोइरी आदि युवा कथाकार सक्रिय हुए हैं। प्रियदर्शन का एकमात्र उपन्यास जिंदगी लाइफ काफी प्रशंसित रहा। वहीं अब तक उनके 2 कहानी संग्रह उसके हिस्से का जादू, बारिश, धुआं और दोस्त पाठकों को प्रभावित करता है। 1973 में जन्मे नीरज नीर का एकमात्र कथा संकलन ढुकनी एवं अन्य कहानियां पाठकों में खासा लोकप्रिय है। 3 फरवरी 1992 को रांची जिले से 80 किलोमीटर दूर सोनाहातू के चोगा ग्राम में जन्मे मृत्युंजय कोइरी की आत्मा गांव में बसती है। उनकी कहानियों में ग्रामीण व शहरी आम जनजीवन के दुख दर्द, लाचारी, विवशता व उच्च वर्ग की संवेदनहीनता के चित्रण मिलते हैं। झारखंड के नए कहानी लेखकों में मृत्युंजय अकेले कहानीकार हैं जो किसानी जीवन को केंद्र में रखकर लेखन कर रहे हैं। कम समय में ही विशिष्ट कहानीकारों के फहरिस्त में शामिल मृत्युंजय के प्याज के आंसू और 100 यात्रा कहानी का क्रमशः बंगला और मलयालम में अनुवाद हो चुका है। मेड़, राजेश की बैलगाड़ी, एक बोझा दान, चयनित कहानियां मृत्युंजय कोइरी प्रमुख कहानी संग्रह है। तपस्या, अंतर्मन के शब्द, गैरत, विवस्ता आदि इनका साझा कहानी संकलन है। इन सभी पुरुष कथाकारों ने मिलकर यह स्थापित किया कि कथा साहित्य आज जीवन के सर्वांग स्वरूप को प्रस्तुत करता है।
1: खुला आकाश कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रशांत गौर।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीईयूटी स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
4: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
5: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।

0: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
4: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडप में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
4: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद दो दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रूपए और डीजल में 2.71 रूपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hiked by 2.61 rupees per litre, while that of diesel by 2.71 rupees per litre. National Testing Agency postpones CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jayashankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Kolkata Knight Riders by 40 runs at Eden Gardens in Kolkata. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. We have a report.
7: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Instituted in the year 1954, these awards are announced on the occasion of Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
6: News Services Division of Akashwani will broadcast special programs as part of a series People's Padma on Akashwani.
8: We launched an environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
9: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा, जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोगरोधी किस्मों का विकास मैंने किया।
10: फिर हम गुरुजी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में सत्संग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए।
6: In these episodes, we provide listeners insights into the work and life of Padma awardees. To listen to the episodes, tune into 100.1 Akashwani Gold today from 9:10 a.m. onwards. It can also be heard on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. UN Home Minister Amit Shah has said that the government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said the UCC will not infringe upon any tribal rights.
11: Narendra Modi Sarkar ke Guru Mantri ye nate.
12: As the Home Minister of the Narendra Modi government, I want to make it clear that no restriction of the UCC will apply to the tribal world or any tribal individual, no violation of tribal rights.

0: समीक्षा की जाएगी। बकरीद को लेकर सभी जिलों की पुलिस अलर्ट मोड में है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इसे लेकर रामगढ़ पुलिस केंद्र में मॉक ड्रिल कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करने और लोगों से भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। इधर रांची में बकरीद पर्व को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ महावीर मंडल, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी, अंजुमन इस्लामिया और अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरकार ने पिछले 11 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। आज से देशभर में पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये महंगा कर दिया गया है। राजधानी रांची में अब पेट्रोल की कीमत 105.24 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि डीजल की कीमत 100.37 रुपये हो गए हैं। पिछले 11 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 7.35 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमत में 7.53 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। दुमका के मसानजोर डैम में कल शाम नौका विहार के दौरान एक पर्यटक की डूबने से मौत हो गई। मसानजोर थाना प्रभारी अवधेश कुमार के अनुसार घटना में 4 पर्यटक तैरकर सुरक्षित किनारे आ गए, जबकि एक पर्यटक गहरे पानी में डूब गया। इधर दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में कल रात स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट की कोशिश की गई। इस दौरान अपराधियों ने हवा में 2 राउंड फायरिंग भी की। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सिमडेगा पुलिस ने गौ तस्करी के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस उपाधीक्षक रणवीर सिंह ने बताया कि आरोपी गौवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी में शामिल था और ओडिशा से सिमडेगा होकर पशुओं से लदे वाहनों को पार कराने का काम करता था।
1: गौवंशीय पशुओं की तस्करी का संगठित ग्रोह चला रहे थे, ओडिशा से सभी को मैनेज करते थे। उसके बाद सिमडेगा की जिम्मेदारी इन्होंने अन्य लोगों का नाम स्पष्ट किया है। उसके बाद कुछ लोगों की जिम्मेदारी खुट्टी के लोगों की थी। उसके बाद रांची होते हुए ये अवैध गौवंशीय पशुओं को ओडिशा भेजने का काम करते थे। अब तक इन पे ओडिशा और सिमडेगा जिला के अंतर्गत कुल 8 कांड दर्ज हैं और अन्य भी अनुसंधान जारी है।
0: राज्य भर में पड़ रही भीषण गर्मी और लू से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राज्य के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। डाल्टनगंज राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रांची में भी पारा 39 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज गढ़वा, पलामू और चतरा जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी और लू के कारण पिछले 3 दिनों में जमशेदपुर 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। ताज़ा मामला गोलमुरी थाना क्षेत्र के न्यू केबल टाउन बस्ती का है, जहां बिरला मंदिर के पास एक व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे जांचा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के तीसरे दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई नए रिकॉर्ड बनाए। प्रतियोगिता में पोल वॉल्ट, लंबी कूद, ऊंची कूद और हर्डल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ क्वालिफिकेशन हासिल कर अपनी प्रतिभा का दम दिखाया। एक रिपोर्ट।
2: महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक में हरियाणा की रवीना ने अपनी रफ्तार से सबको पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के हैमर थ्रो मुकाबले में पंजाब की मनप्रीत कौर ने शानदार थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। सर्वेश अनिल कुसारे ने 2.28 मीटर की शानदार छलांग लगाई। उनके साथ ही आदर्श राम ने 2.22 मीटर की कूद लगाकर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एक बड़ा धमाका विश्व के पोल वॉल्ट में भी हुआ, जहां मध्य प्रदेश अकादमी के देव मीना ने 5.42 मीटर की छलांग लगाकर नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है।
3: आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज से की जाने वाली समीक्षा बैठकों की खबर

अजारी, 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन और प्रतियोगिता के तीसरे दिन टूटे कई रिकॉर्ड। देव मीणा, कुलदीप कुमार ने कॉमनवेल्थ के लिए किया क्वालिफाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

ये आकाशवाणी रांची है। आकाशवाणी रांची के प्रसारण में फिलहाल आपका हम सफर ओली मिन्स। नमस्कार जोहार।

लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम लोक रंग। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे इग्नेस कुमार और साथियों के गाए नागपुरी लोकगीत।

इग्निस कुमार और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे नागपुरी लोकगीत। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी गानों का प्रोग्राम रस रंजन।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है।
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: पर्सनल लोन ऑफर
7: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
6: फ्री ट्रिप टू दुबई
7: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
8: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
7: तो क्या करूं?
8: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
7: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
8: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
9: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है।
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: रसरंजन प्रोग्राम का पहला गाना है यादों की बारात फिल्म से। इस गाने को आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। मजरूह का लिखा ये गाना है, तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

यादों की बारात फिल्म के गाने के बाद अगला गाना है दूसरा आदमी फिल्म से। इस गाने को लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी ने गाया है। मजरू का लिखा यह गाना है, तर्स बनाई है राजेश रोशन ने।

रसरंजन प्रोग्राम का अगला गाना है द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से। इस गाने को शरद कुमार, आशा भोसले और अमिताभ बच्चन ने गाया है। रचना आनंद बख्शी की है, संगीत राहुल देव बर्मन का है।

प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवा रही है दर्द फिल्म का गाना, किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ। नक्श लायलपुरी का लिखा ये गाना है जिसे संगीत से संवारा है खय्याम ने।

0: इस गाने के साथ ही आज का रसरंजन प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी रांची है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
4: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
0: शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत लीजिए सुनिए श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता का गाया राग अलहिया बिलावल में ध्रुपद गायन। रचना चार ताल में निबद्ध है, इसके बोल हैं मोतियन की झाला लागी। संगत करने वाले कलाकार हैं हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती, पखावज पर हैं श्री रामबचन पाठक।

0: शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता का गाया राग अल्हैया बिलावल में ध्रुपद। संगत करने वाले कलाकार थे हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती, पखाज पर थे श्री रामबच्चन पाठक।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
0: आकाशवाणी के रांची केंद्र से अब आप सुनेंगे आओ साथ चले कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात हम करवाएंगे श्रीमती सीमा से। विषय होगा नई सोच के साथ आगे बढ़ती झारखंड की ग्रामीण महिलाएं। भेंट वार्ताकार हैं सिंधु मिश्रा। इसके अलावा चर्चा का विषय होगा आत्मनिर्भर बनती ग्रामीण महिलाएं।

कार्यक्रम अवसर चले में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वीकार करें कार्यक्रम की हम सफर सिंधु मिश्रा का नमस्कार। श्रोताओं, आज कार्यक्रम की शुरुआत इन पंक्तियों से करना चाहूंगी जो हमारी बहनों को समर्पित है। मैं अबला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ, मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। जिस युग में दोनों नर नारी कदम मिला चलते होंगे,

0: मैं उस भविष्य स्वर्णिम युग की एक आशा की चिंगारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। श्रोता मित्रों, अपनी निजी स्वतंत्रता और स्वयं के फैसले लेने के लिए महिलाओं को अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण है। परिवार और समाज संबंधी फैसले, अधिकार, विचार, दिमाग से संबंधित पहलुओं पर निर्णय लेने का अधिकार आज हम महिलाओं को स्वतंत्र रूप से मिला है। समाज के सभी क्षेत्रों में पुरुष और महिला दोनों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। देश, समाज और परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए महिला सशक्तिकरण आज बेहद जरूरी है। देश को पूरी तरह से विकसित बनाने और विकास के लक्ष्य को पाने के लिए एक जरूरी हथियार के रूप में है महिला सशक्तिकरण। श्रोताओं, भारत में बच्चों और महिलाओं के उचित विकास के लिए इस क्षेत्र में महिला और बाल विकास विभाग अच्छे से अपना कार्य कर रहा है। प्राचीन समय से ही भारत में महिलाएं अग्रणी भूमिका में थीं, हालांकि उन्हें हर क्षेत्र में हस्तक्षेप की इजाजत नहीं थी। श्रोताओं, आज हमारी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बस महिलाओं को अपने विकास और वृद्धि के लिए हर पल मजबूत, जागरूक और चौकन्ना रहने की जरूरत है। श्रोताओं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती है, परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर बढ़ने लगता है। श्रोताओं, भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले उन सभी सामाजिक कुरीतियों को दूर करना होगा जो विकास के मार्ग में बाधक हैं, जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, असमानता, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी और ऐसी ही अन्य कई कुरीतियां। हम जानते हैं कि लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अंतर ले आता है जो देश को पीछे की ओर ढकेलता है। श्रोताओं, भारत के संविधान में समानता के अधिकार को धरातल पर लाने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे अच्छा उपाय है। आज महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक अलगाव और हिंसा को रोकने के लिए सरकार कई सारे कदम उठा रही है। आज हम महिलाओं को विकास करते हुए देख भी रहे हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाएं आज घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए अपने को सुदृढ़ बना रही हैं। आज के कार्यक्रम आओ साथ चले में हमारी ऐसी ही एक महिला बहन से बातचीत हुई जो आरा केरम गांव की रहने वाली हैं। ये महिला समूह में पुस्तक संचालिका के रूप में और नरेगा के तहत महिला मेट के रूप में काम कर रही हैं। महिला समूह में शामिल सभी महिलाओं के बचत, खर्च एवं जरूरतों का ब्यौरा रखना और उसे लिखना, साथ ही नरेगा में किस तरह योजनाओं का लाभ इन्हें लेना है, ग्रामीणों को इसके प्रति जागरूक करने के साथ साथ योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम ये अच्छे से निभा रही हैं। और इन्होंने अपने गांव को नशा मुक्त करने के लिए भी महिलाओं और ग्रामीणों के साथ मिलकर कई काम किया है। आइए अब इनसे ही जानते हैं कैसे ये गांव और समाज के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम सीमा देवी है और मैं ग्राम आरा की रहने वाली हूँ और मैं जिसल पीए के समूह से जुड़ी हूँ, जो कि मेरा समूह का नाम है सरस्वती महिला समूह, जिसकी मैं पुस्तक संचालक हूँ और हम आरा गाँव के मनरेगा के तहत महिला मेट के रूप में कार्य करती हूँ।
0: महिला मेट के रूप में आप मनरेगा में काम कर रही हैं, तो ये क्या काम कर रही हैं?
1: मनरेगा के बारे में जितनी सारी योजना होती है उनको कैसे किस प्रकार काम कराना है और यहाँ के लोगों को मनरेगा के बारे में जानकारी देना, किस प्रकार काम करना है और मनरेगा में हम काम करने से हमें क्या फायदा है और किस प्रकार हमें मनरेगा में काम करने से हमारे

0: हमको पैसा मिलता है और हमें एक दिन में मनरेगा में कितना काम करना है ये सब जानकारी। सबसे पहले हमको महिला जब मैट का चयन हुआ उसके बाद हम लोग को ब्लॉक द्वारा सीएफटी लोग के द्वारा हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया, उसमें हमें मनरेगा के बारे में सारी जानकारी दी गई जो कि हम अपने गाँव में आके सभी को बताएं।
1: अच्छा, मान लीजिए कि अब मुझे जानकारी लेनी है आपसे मनरेगा के बारे में, तो एक महिला मेट होने के नाते आप मुझे कैसे समझाएंगी इसके बारे में?
0: मनरेगा में काम करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक जॉब कार्ड की जरूरी होती है। जॉब कार्ड रहेगा तभी हम मनरेगा में काम की मांग कर सकते हैं। हम काम की मांग करने के लिए हमें एक मजदूर दिवस होता है जो कि हर पंचायत भवन में हर गुरुवार को होता है, जो हम अपने मजदूर अब वहाँ जाके हम अब काम की मांग कर सकते हैं। जैसे हम काम की मांग किए उसमें हम काम की मांग करने से छोड़ नहीं देंगे उसके, उससे हम जिस काम की मांग किए उसे हम रिसीविंग ही लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग को 15 दिन के अंदर अगर हम लोग को काम ना मिला तो हम लोग को बेरोजगारी भत्ता मिल सके। इस प्रकार हम मजदूर को बताएंगे कि हम लोग को मनरेगा में इस प्रकार काम मांगना है।
1: अच्छा, आपने कहा कि मनरेगा में हम तभी अपने काम का मांग कर सकते हैं जब हमारे पास जॉब कार्ड हो, तो जॉब कार्ड कहाँ से बनवाएंगे हम?
0: जैसे हम लोग को जितना मजदूर का जॉब कार्ड बनाना है उसमें हम लोग एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि हम अपने गांव में काम करना चाहते हैं, उसमें हम लोग पंचायत भवन जाएंगे, उसमें हम लोग जॉब कार्ड बनाने के लिए एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी जो और पासबुक का फोटोकॉपी और दो फोटो का आवश्यकता होती है जो कि हम रोजगार सेवक को देंगे और वे हमको जॉब कार्ड बना देगी। उसके बाद हम लोग को रिसीविंग लेंगे कि हम लोग को 15 दिन के अंदर हम लोग को जॉब कार्ड बन के मिल जाना चाहिए। जॉब कार्ड मिलने के बाद ही हम काम की मांग कर सकते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है। महिला मेट के रूप में काम करते हुए आपको कितना दिन हुआ है?
0: हम 2016 से महिला मेट के रूप में काम कर रहे हैं।
1: 2016 से काम कर रही हैं। तो आपने मनरेगा के अंतर्गत जो भी योजनाएं आई हैं और लोगों को मिल रहा है, तो क्या अंतर महसूस कर रही हैं, क्या फर्क नजर आ रहा है?
0: पहले तो यहाँ हमारे गांव में कोई नहीं जानता था कि मनरेगा क्या चीज है। मनरेगा के बारे में किन्हीं को पता भी नहीं था। मनरेगा में कोई भी अगर योजना आती थी तो जो जागरूक आदमी है जो ब्लॉक आना जाना करते हैं या फिर उन संपर्क रखते वही आदमी को केवल मनरेगा के लाभ को ले सकते थे। पर हम जब से हमारे गाँव में मनरेगा के बारे में हम लोग सभी लोग जागरूक हुए, हम लोग को ड्राइव चला, तब से हम यहाँ के लोग सभी अपने जरूरत के अनुसार मनरेगा के बारे में हम लोग मनरेगा के योजनाओं को हम लोग मांग कर सकते हैं। सब हमारे यहाँ पहले जब से हमारे गांव नशा मुक्त नहीं हुआ था तब से वे किसी चीज को जानकारी नहीं थी, वे किसी चीज को यानी जानना भी नहीं चाहते थे वे, क्योंकि बाहर ही निकल नहीं पाते थे कि हम लोग को क्या क्या चीज आता है सरकार द्वारा, हम लोग को किस प्रकार लेना चाहिए, इस सब के बारे में जानकारी नहीं थी। ब्लॉक से जो संपर्क रखते थे वही लोग को केवल मनरेगा का लाभ मिल सकता था। पर भी वे मजदूर में ना करके पहले जैसे डोभा सब मिलता था तो वे मजदूर से ना करवा के वे जेसीबी से खुदवाते थे, जो कि वे जेसीबी गाड़ी वाला आता था और एक दो तीन घंटा में वे डोभा खोद के चला जाता था। पर हम लोग जब से यहाँ हमारे गांव में जागरूक हुए, हमारे गांव नशा मुक्त हुआ, तब से हमारे यहाँ सभी लोग जानकारी हुए और हम लोग जैसे ट्रेनिंग मिला हम लोग को, तो हम लोग सभी गांव वालों को आके बताएं मनरेगा में सभी चीज को हम लोग को योजना का लाभ ले सकते हैं। पहले तो किसी का दिमाग नहीं था कि हम लोग को किस प्रकार काम करना है और किस प्रकार की हम लोग को योजना की मांग कर सकते हैं। पर हम लोग को नशा जैसे छूटने लगा तब से यहाँ दिमाग लोगों का खुलने लगा और वे हम लोग बकरी सब भी पालते थे, गाय सब भी पालते थे, हम लोग के पास जगह ना रहने के कारण हम लोग कम कम ही मात्रा में रख पाते थे और वे रख भी पाते थे तो हम लोग जहाँ खाना बनाते थे जहाँ सोते थे उसी के साथ में बकरी सब को भी रखते थे, जिससे हमारे गाँव में बहुत सारी परेशानी भी होती थी, मलेरिया सब भी आता था, बहुत सारी बीमारी ग्रस्त भी होते थे। पर हम लोग जैसे नशा मुक्ति हुआ तैसे सभी लोगों अपना योजना की मांग करने लगे हम लोग को जरूरत के अनुसार। अब हमारे गांव में पहले ग्राम सभा भी होता था तो केवल पुरुष सब जाते थे, दो तीन पुरुष जाते थे, ग्राम सभा होके कम्प्लीट हो जाता था। पर अब से हमारे सभी लोग यहाँ जागरूक हुए, जब भी ग्राम सभा होता है तो सभी लोगों को जानकारी होती है और महिला पुरुष दोनों जाते हैं ग्राम सभा में और वे अपने जरूरत के अनुसार कि हम लोग को गाय पालन हम करेंगे, हम सुअर पालन करेंगे, मुर्गी पालन करेंगे या फिर बकरी पालन करेंगे या फिर हम कृषि अधिक मात्रा में लगाएंगे, इस प्रकार हम लोग काम मांगते हैं। तो हम लोग ग्राम सभा हम लोग को 26 तारीख को होता है, हम लोग सभी महिला पुरुष जाते हैं और उसमें हम लोग अपना

0: जरूरत के अनुसार हम मुर्गी पालन करेंगे तो हमको मुर्गी सेट का जरूरत है, बकरी पालन करेंगे तो बकरी सेट का जरूरत है। तो हमारे गांव में मौसमी के अनुसार भी ये काम किया जाता है मैम। सबसे पहले हम लोग डोभा का निर्माण किया, हमारे गांव में हम लोग कुआं हुआ कुछ नहीं किए, सबसे पहले हम लोग डोभा का निर्माण किए क्योंकि हमारे गाँव में पानी तो अधिक आता है पर हम लोग को पानी आके हुए बह जाता है, इसलिए हम लोग पानी को स्थिर करने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग डोभा का निर्माण किया। 45 डोभा हम लोग अगले साल खोदे, जो कोई भी जीसीपी से नहीं, हम लोग सारे गांव के मजदूर से ही काम किए। पहले हम लोग को मनरेगा में पता नहीं था कि मनरेगा में काम करेंगे तो पैसा भी कैसे मिलेगा, और जो जीसीपी से खुदवाते थे उसमें कुछ जीसीपी से खोदने के बाद कुछ सीढ़ी सीढ़ी बाइक बनाना पड़ता है, वे मजदूर भी लगते थे तो लोगों को पता भी नहीं था कि कैसे हम काम करेंगे या कैसे हम लोग को पैसा मिलेगा। पर हम लोग जब से मनरेगा के बारे में पूरा ट्रेनिंग लिया है तब से हम लोग को पता चला कि हम लोग को जॉब कार्ड रहेगा तभी हम मनरेगा में काम करेंगे, और मनरेगा में काम का डिमांड देंगे तब हम रिसीविंग लेंगे, और साथ में हम लोग के पास जब मास्टर रोल होगा तभी हम मनरेगा में काम कर सकते हैं। मैं मास्टर रोल एक होता है जो कि इसमें मजदूर का नाम और जॉब कार्ड संख्या और खाता संख्या और आधार संख्या लोड हुआ रहता है, और वे कितने दिन काम कर रहे हैं और एक दिन में कितना उसका मजदूर दर मिल रहा है, ये सारा चीज़ लिखा होता है। वे मास्टर रोल आता है जो कि मजदूर के नाम के साथ आता है, उसमें जिस मजदूर का नाम होता है उसी को हम लोग काम में लगाते हैं ताकि उसको सही से पैसा मिल सके। जो व्यक्ति काम किया उसका सीधे अकाउंट में पैसा चला जाता है, इससे हम लोग को यह फायदा हुआ मैम कि पहले हमारे गांव में कोई के किसी किन्हीं का शायद ही खाता था तो किन्हीं का खाता नहीं था। जब से हम लोग मनरेगा में जुड़े जॉब कार्ड बनाने का हुआ तब से हमारे लोग यहाँ सभी का खाता है अपना अपना, और वे अपने पहले तो पता भी नहीं था कि हम लोग बचत कैसे करेंगे, किस प्रकार हम लोग पैसा को रखेंगे, किस प्रकार खर्च करेंगे। जितना पैसा बाहर जो कमाते थे वह पैसा मिलता था वह खर्च कर देते थे, उसमें पता भी नहीं था कि हम लोग बचत किस प्रकार करेंगे। पर जब से हम लोग मनरेगा में जुड़े तब से हम लोग को बचत करना भी सीख गए, और अपने जरूरत के अनुसार जैसे काम करते हैं तो हम लोग को पैसा अकाउंट में आता है तो अपने जरूरत के अनुसार निकाल लेते हैं पैसा को, और हम लोग यूज करते हैं और अपना बचत भी करते हैं। इस प्रकार हमारे मनरेगा में जुड़ के हम लोग कम से कम हमारे गाँव में 60 से 80 दिन का तक हम लोग काम करते हैं, जो कि हम लोग को अकाउंट में 9000 से 14000 तक पैसा आ जाता है। हम मनरेगा में जुड़ के बहुत खुशी हुई मैम कि हम पहले अपने घर में केवल पति लोग ससुर लोग के साथ ही खेती बाड़ी में हाथ बटाते थे, पर अब हमारे गांव में मनरेगा में जुड़ के हम लोग मनरेगा में काम भी कर रहे हैं साथ में उसमें हाथ भी बटा रहे हैं। हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने अपने बल पे खड़ा हुए कि हम किसी पे निर्भर नहीं है कि हम कि यानी किसी से पैसा मांगे कि हम ये सामान करना, हम अपने बल पे हैं कि हम अपने खुद पे कुछ कर सकते हैं। हमारे गाँव में मनरेगा के तहत बहुत सारी योजनाएं मिली, जैसे गाय शेड हो गया, बकरी शेड, सुअर शेड, नाडे, बायोगैस, डोभा, कुआ, ऐसे बहुत सारी योजनाओं को हम लोग मनरेगा से लाभ उठाए हैं।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। सीमा एक बात और आपने अपने बातों में कही कि नशा मुक्त हुआ ये गांव, तो क्या परेशानी आ रही थी, कब ये नशा मुक्त हुआ है?
0: यहाँ सभी लोग यहाँ नशा करते थे, पुरुष से लेकर महिला तक। यहाँ नशा के होने के कारण जो यहाँ की महिला लोग थी, सभी महिला लोग जंगल से लकड़ी लाके वे जिसे बेचने चल जाती थी, और पुरुष लोग होते थे वो लोग जाते थे रांची काम करने, और उधरे से जैसे 200 मिलता था तो वो 100 का उधरे शराब पी के आते थे शाम को घर। तो जिसे पत्नी लोग बोलती थी कि इतना में काम नहीं चलेगा, घर का बच्चा सबको पढ़ाना खाना पीना तो कैसे चलेगा, तो उसी उसमें पति लोग होते थे कि पत्नियों लोग को दबा देते थे कि हम पोसेंगे कि तुम पोसेगी। और यहाँ के अधिकतर बहुत गरीबी स्थिति था मैम गांव का, यहाँ अधिकतर यहाँ की महिलाएं अधिकतर लकड़ी से ही निर्भर थी। इसमें हमारे गांव में बहुत सारी परेशानी हुई होती थी कि सभी 1 से 2 दिन काम करने जाते थे या 5-6 दिन इधर उधर पी के रहते थे। जैसे कोई त्योहार आता था मैम तो आज उसका घर में पीना है, आज उसका घर में पीना है, ऐसे कर कर के एक दिन का त्योहार वे पूरे 8 दिन महीनों दिन तक लगा देते थे। यहाँ कोई खाया कोई पिया, कोई बच्चा लोग कैसा है, स्कूल जाता है, पढ़ाई लिखा, धर धन कुछ नहीं देता था। यहाँ किसी को पता नहीं चलता कि हमारे आगे का भविष्य कैसा होगा, कैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ये लोग किसी को पता नहीं। इसे हमारे गाँव में बहुत सारी परेशानी होती थी, वे एक दूसरे के साथ थोड़ा पीने के बाद वे घर में क्या बोल रहे हैं या फिर एक दूसरे के साथ क्या क्या बोल रहे हैं वे पीने के बाद कोई उन लोग को पता नहीं चलता था। लड़ाई झगड़ा इधर उधर के बाद छोटे मोटा घर में अगर छोटी सी अगर कुछ भी बात हो जाए तो उसे

0: तुरंत लड़ाई झगड़ा के शिकार हो जाते थे। पर हमारे गांव में जैसे जैसे धीरे धीरे दशा मुक्ति का अभियान चला, मैं अब हमारे लगभग हो गया 20 बार हो गया होगा। यहाँ गांव में तो हम लोग सब मना कर दिए कि हम लोग सब महिला के हम लोग रखना ही बंद कर देंगे, तो फिर हम लोग का हस्बैंड लोग ससुर लोग पियेंगे कैसे। तो जिनको कठिनाई थी, उन लोग को लत लगा था, वो लोग बाहर से जाते थे और पी के आते थे या भी लाते थे। तो हम लोग सारी महिला जमा हुए और सोचे नहीं, सबका घर में हम लोग जाएंगे शाम शाम को तलाशी लेने कि कौन कौन पीता है। उसके बाद फिर बाहर से भी लाते थे तो उसको हम लोग बोले नहीं, ये खराब चीज़ है, इसको मत पिए, अगर छोड़िएगा तो आप ही लोग का भलाई होगा, हम लोग का नहीं होगा। उसमें हम लोग सभी महिलाएं निर्णय लिए कि नहीं, हम लोग का जितना हम लोग यहाँ हड़िया वाला इतना बर्तन होता है मैम, सबको हम लोग घर में रखेंगे ही नहीं, तो फिर लाएगा भी किस में और बना कर पिएगा भी किससे। तो सभी हम लोग सभी महिला निर्णय लिए। और उसके बाद फिर हम लोग जो ठेठरा होता है मैम बर्तन बेचता है, उस सबको बुलाए और बोले नहीं, हम लोग सारा बर्तन को बेच देंगे। तो सभी महिलाएं निकाले अपना अपना घर से बर्तन और सबको ठेठार को दे दिए। इस प्रकार हमारे गाँव में नशा मुक्ति की है मैम। इस प्रकार हमारे गाँव थोड़ा ध्यान दिए और अभी हमारे बच्चे को पढ़ाई की ओर भी हम लोग आगे की ओर ले गए हैं, स्वास्थ्य की ओर भी। इस प्रकार हम लोग अपने गांव को थोड़ा संवारने में ध्यान दिए।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है। और एक बात और बताइए सीमा, ये तो महिला मेट के रूप में आपने मनरेगा के तहत बहुत सारा काम किया है, लोगों को समझाया है, साथ साथ लोगों ने इससे लाभ भी लिया है। साथ ही साथ नशा मुक्ति के लिए जो आपने अभियान चलाया, महिलाओं से जुड़कर सभी लोग एकत्रित हुए और नशा मुक्त कराया इस गांव को, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपने शुरू में अपने परिचय में बताया कि आप एक महिला समूह की पुस्तक संचालिका के रूप में भी काम कर रही हैं, तो इसमें कौन सा महिला समूह है, कितने लोग हैं और कब से आप पुस्तक संचालिका के रूप में काम?
0: पुस्तक संचालक हमारे गांव में समूह 2016 में हम लोग का ड्राइव चला और 2016 से ही हमारे गांव में समूह का गठन हुआ, जिसमें हम पुस्तक संचालक का काम करने लगे। और पुस्तक संचालक के काम करने के बाद फिर हम लोग को गांव में मनरेगा के तहत महिला मेट के रूप में चयन किया गया। उसके बाद से हम लोग महिला मेट के रूप में काम कर रहे हैं।
1: पुस्तक संचालिका के रूप में आपको कौन कौन से काम देखने पड़ते हैं?
0: हमारे जो समूह है उसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग का 7 रजिस्टर होता है मैम, जो कि हम लोग 7ों रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। सबसे पहले हम लोग को किस प्रकार बैठक करना है, उसके बाद फिर बैठक करने के बाद हम लोग को प्रार्थना करना है और उसके बाद शपथ लेना है। शपथ लेने के बाद अपना अपना परिचय देना है। उसके बाद हम लोग कितने हम लोग महिला सरस्वती महिला समूह में हम लोग 8 मेंबर है, उसमें से कौन कौन मेंबर आए, कौन अब्सेंट किए, क्या कारण था वे नहीं आए, उपस्थिति में इनको लिखना है। फिर उसको पिछली बैठक उपस्थिति, जो हमारे पिछले बैठक में क्या क्या चर्चा हुआ, क्या क्या लेन देन हुआ, कितना लेन देन हुआ, उसके बारे में लिखना होता है। हमारे समूह में हम लोग 20-20 रुपया के दर से हम लोग बचत वसूली करते हैं। वे बचत वसूली कितने लोग किए, कितने हमारे हाथ में पैसा है, और उसके बाद फिर किस्त और ब्याज में हम लोग जैसे किसी चीज़ के लिए पैसा हम लोग मांग करते हैं तो उसमें हम लोग को एक किस्त बनना पड़ता है, जो कि हम अपना इच्छा अनुसार हम बोल सकते हैं। अगर जैसे हम 1,000 लिए तो हम उसको बोल सकते हैं कि हम 2 किस्त में वापस करेंगे या फिर 1 किस्त में वापस करेंगे। उस पर एक किस्त बंधा होता है, जो कि वे किस्त महीना का होता है, 1 महीने का, वह किस्त के अनुसार वह पैसा वापस करते हैं। उस पर नया ऋण मंजूरी, जो कि हम अगर पैसा के मांगना होता है तो हम उसको पैसा मांग करते हैं कि हम लोग को हमको इतना पैसा की ज़रूरत है, हमको पैसा चाहिए। उस बाद फिर प्राप्त और भुगतान होता है मैम, जो कि हमारे यानी हाथ में कितना पैसा जमा हुआ और कितना बचत हुआ और किस्त और ब्याज में कितना पैसा हुआ और जो कि कितना वितरण होता है। उस पर फिर हम लोग सदस्य में चर्चा भी करते हैं कि हमें आज के बैठक में क्या चीज़ के बारे में चर्चा करना है, जैसे कि किसी के काम के बारे में अगर चर्चा करना हो या फिर स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करना हो कि आज हम लोग को स्वास्थ्य में ऐसा किया, फिर या फिर हम लोग को किसी के काम करना होता है, जैसे कि आज हम लोग वहाँ पर काम है तो सारे लोग वहाँ जाके काम करेंगे। इस पर का हम लोग चर्चा भी करते हैं और अपने स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा करते हैं कि हम लोग क्या क्या काम करना चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद फिर अन्य विषय में जो कि हमारे सभी कितने कितने लोग उपस्थित हुए और कौन इस बैठक का अध्यक्ष हुए और कितना हमारे हाथ में पैसा अंतिम बचा, ये सब अन्य विषय में लिखते हैं। और उसके बाद हम लोग कितने सदस्य उपस्थित हुए उसका हम लोग हस्ताक्षर करते हैं।

और जो जो कि बुक कीपर है वे भी अपने साइड में साइन करती है कि बुक कीपर ये नाम की है। उस बाद बचत पासबुक होता है जो कि अपने पासबुक में लिखा होता है कि कितने कितने पैसा हम लोग को हुआ, इतने सप्ताह में कितना हुआ, आज 20 जोड़ेंगे तो कितना हुआ। और वे इसमें अपना पासबुक होता है, उसमें लिखा होता है कि आप कितना पैसा ले रहे हैं। वे पासबुक अपने घर में ले जा सकते हैं, और जो जो दिल्ली पढ़ी लिखी नहीं है वो अपने घर वाला को भी दिखा सकते हैं कि हम इतना पैसा निकाले हैं, हमको इतना इतना दिन में जमा करना है, और किस पर कितना कितना डेट में जमा करना है, और कितना कितना करके जमा करना है। क्योंकि जो पढ़ी लिखी दीदी वो लोग तो जान जाएगी, पर पढ़ी लिखी दीदी नहीं लोग वो लोग अपने घर पे बता के वे जान सकती है कि हमको इतने इतने दिन में पैसा जमा करना है। फिर वह पुस्तक संचय बताती भी है, पर अपने मन की संतुष्टि के लिए वह पासबुक अपना घर ले जाना पड़ता है, फिर उसका हर बैठक में उसको लाना पड़ता है। इस पर 7 रजिस्टर होता है, जो 7 रजिस्टर को हमको यानी पुस्तक संचालक लिखती है बैठक में ही। तो हम लोग को महिला समूह से जुड़ के हम लोग को बहुत सारे लाभ भी मैम, कि पहले हम लोग को यहाँ कोई महिला यानी कि एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, गांव में रहते हुए थे, रहते हुए भी एक दूसरे को बात नहीं करते थे। वे अपना काम कर रहे, ये अपना काम कर रहे, इस प्रकार सब अपने अपने में रहते हैं। पर जब से हमारे गाँव में महिला समूह का ड्राइव चला, हम लोग एकजुट हुए, तब से हम लोग हर रोज एक दूसरे के हेल्प भी करते हैं, और एक साथ हर संडे को बैठते हैं। उसके अलावा भी हम लोग 15 दिन के अंदर बैठते थे, अभी कुछ दिन से नहीं बैठ रहे हैं पर बैठते थे, और उसमें सभी चीज़ को डिस्कस करते थे कि आपका घर में क्या परेशानी है, आपको क्या चीज़ का कमी है, या आपका घर में ज़्यादा काम है तो हम लोग जाके सभी लोग कर देंगे। इस प्रकार हम लोग उस चीज़ को बात को रखते थे, और उसके से हम लोग बात को रखते हुए वे लगता था कि उनको नहीं करने सकेगी तो हम लोग उनका हेल्प करते थे जाके। इस प्रकार हम लोग महिला समूह तो एक एक दूसरे से एकजुट हुए। हाँ, हमारे गांव में 8 कुल महिला समूह है मैम। इसमें सभी समूह में 12 से 14 15 मेंबर है। इसमें हम लोग आरा में है 5 और केरम में 3 है। तो इस प्रकार हम लोग गांव में सभी महिलाएं समूह में जुड़े, और समूह में जुड़ने से हमें बहुत सारी लाभ मिली। आज के डेट में जो SLPS के समूह में ही जुड़ी उन्हीं दीदी लोगों को लाभ मिल सकता है, अगर वे जुड़ी नहीं है तो उनको लाभ नहीं मिलता है। इस प्रकार हम लोग समूह में जुड़ के ये 20 रुपया तो एक बहाना है मैम कि हम लोग इसको बचत करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एकजुटता होना, गरीबी को दूर करना। हम लोग साथ एकजुट रहेंगे, एक दूसरे के बाद साथ बात को रखेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तभी हम आगे की ओर बढ़ सकते। अपनी बात अपने पास रखेंगे तो कभी एक दूसरे को बारे में जान भी नहीं पाएंगे और बता भी नहीं पाएंगे। इस प्रकार हम लोग एक दूसरे को शेयर करना सीखेंगे, तभी हम जैसे बताएंगे तभी दीदी जान सकती है कि आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या चीज़ का जरूरत है। तो हम लोग समूह में जुड़े तब से हम लोग दीदी लोग, पहले तो यहाँ के लोग पास पैसा नहीं था, तो जो बड़े कार्य करते थे, शादी ब्याह हो गया तो वे लोग जमीन उमीज को बंधक रख देते थे, या फिर अचानक बच्चा लोग को तबीयत खराब हो जाता था तो किसी से पैसा मांगने पर भी वे रहने पर भी बोल देते थे नहीं है पैसा, नहीं देंगे। पर हम लोग जब से समूह में जुड़े तब से हम लोग को जब चाहे, तब रात हो या दिन हो, जब चाहे हम लोग जाएंगे और समूह में कह सकते हैं कि हमको इतना पैसा का जरूरत है, और हम लोग पैसा निकाल से अपना बच्चा को सही टाइम में इलाज करवा लेते हैं। इस प्रकार हमें सभी जुड़ के बहुत सारी लाभ भी मिली। हम लोग को कहीं बाहर ड्राइव में भी गए, बाहर बाहर देखे कि महिला में जुड़ के कैसा करना चाहिए। जब से हम लोग महिला में जुट एकजुट हुए तब अपना से निर्णय लेने भी लगे। हम लोग सबसे पहले महिला मंडल में जुड़ने के बाद सबसे पहले हम लोग निर्णय लिए कि यहाँ जो हम लोग को मम्मी लोग है, दादी लोग है, उन लोगों को पहले हम लोग जो साइन करना नहीं आता है मैम उसको हम लोग साइन करना सिखाएंगे। बाद दो दो दीदी लोग मिल के उनको साइन करना सिखाएं। यहाँ 3-4 ही दीदी लोग है जिनको आँख के प्रॉब्लम से वो साइन करना नहीं चाहती है, न तो बाकी बात दीदी जो अनपढ़ भी है वो लोग भी साक्षर है, वे साइन करना जानती है। उस बाद फिर हम लोग बोले चलो हम लोग तो साइन करना सीख लिए, पर हम जब हम लोग गांव इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, नशा मुक्ति का अभियान चला है, तो हमारे गांव में कितने सारे लोग आते हैं कि नशा मुक्ति अच्छे की ओर ही लोग बढ़े, तो हम लोग क्यों ना और अच्छे की ओर ले जाएं हमारे गाँव को साफ सफाई की ओर। सबसे पहले तो हम लोग महिला मंडल में जुड़ने से हम लोग पहले सोचे कि चलो हम लोग महीना में एक दिन पूरा गाँव का भ्रमण कर दें, पूरा गाँव को साफ करेंगे। फिर बोले नहीं, महीना में अगर करेंगे तो हमारे यहाँ तो घास फूस पेड़ पौधा है ही, उससे पुआल सब हम लोग का रहता ही है, उससे और ज्यादा गंदगी होते रहते।

0: नहीं, हम लोग इसको सप्ताम करेंगे, सप्ताह के बाद मिले नहीं, जब हम लोग इसको सप्ताम करेंगे काहे नहीं, इसको हम लोग थोड़ा ही रोज हर रोज करेंगे तो काहे नहीं सब हम लोग का गाँव होगा। तो हम लोग सारे लोग यहाँ हर रोज निकलने लगे, यहाँ तक पुरुष लोग भी निकले, बच्चा लोग भी निकले, और उसके बाद साफ सफाई करने लगे। इस प्रकार हम लोग सभी लोग सोच रहे हैं इसको हम लोग डेली साफ करेंगे तो अच्छा होगा।
1: चलिए, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: कार्यक्रम में हमारी बातें हो रही थी आरा केरम गांव की ग्रामीण महिला बहन सीमा देवी से। श्रोताओं, सचमुच ऐसी महिलाओं से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि हम अपने राष्ट्र, समाज, गांव और परिवार के विकास के साथ साथ खुद के विकास पर विशेष ध्यान दे सकें। बस जागरूक रहकर सरकार द्वारा दी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए विकास में अपनी भागीदारी निभाएं और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में भी भागीदार बनें। तो श्रोताओं, इस बातचीत के साथ ही हमारे आज के आओ साथ चलें कार्यक्रम का वक्त भी अब यहीं समाप्त होने को है। कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा को आज दें विदा। नमस्कार।

आओ साथ चलें। अभी हम सुन रहे थे इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने सुना चर्चा आत्मनिर्भर बनती ग्रामीण महिलाएं, भेंटवार्ता नई सोच के साथ आगे बढ़ती झारखंड की ग्रामीण महिलाएं। भेंटवार्ताकार थी श्रीमती सीमा, भेंटकर्ता सिंधु मिश्रा। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की, प्रस्तुति स्वर सिंधु मिश्रा का। और अब इसी के साथ आओ साथ चलें संपन्न हुआ।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जोहार रांची।

दोस्तों कहते हैं ना कि सादा जीवन उच्च विचार, यही सफल जीवन का मूल मंत्र है। जीवन की सादगी, उच्च और उन्नतशील विचार हमारे जीवन को प्रेरणादायी बनाते हैं। हमारे पूर्वजों में इन गुणों का समावेश था और तभी आज हम यहाँ हैं, हमारा समाज यहाँ है। लेकिन ऐसा लगता है कि विगत कुछ दशकों में ऐसे विचार गौण हो चुके हैं। लोगों का जीवन तो भौतिक सुख सुविधाओं से भरा पड़ा है, लेकिन उनमें वास्तविक सुखों की अनुभव का बहुत ही कम श्रेय है। दोस्तों विचार हमारे जीवन का वो पहलू है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जैसे विचारों के साथ हम अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे, वैसे ही तय होगी हमारी मंजिलें। अगर हम एक नज़र गुजरे ज़माने पर डालेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि परोपकार की भावना से, विचारों से हमने अब तक के रास्तों को तय किया है। तो ऐसे विचारों से हमें सीख लेने की ज़रूरत है और ऐसे ही विचारों को अपने जीवन में जगह देने की ज़रूरत है, जिनसे हमारा जीवन तो सरल हो, साथ ही आने वाली पीढ़ियों के रास्ते भी सुगम हो जाएं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जोहर राजी में एक बार आप सबों का फिर से स्वागत है। साथियों, बातें मौसम की। इन दिनों हम तेज गर्मी की चपेट में हैं, लेकिन मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम के मिजाज में बदलाव की संभावना है। रांची मौसम केंद्र ने राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक, तेज हवा और बारिश का

पूर्वानुमान जारी किया है। रांची और आसपास के क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक मौसम बदलता रहेगा। 25 और 27 मई को गरज वाले बादल बनने की संभावना है, जबकि 28 मई तक तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। 28 मई को रांची का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं उत्तर पश्चिमी जिलों पलामू प्रमंडल में सोमवार से लू चलने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा, चतरा जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि इन इलाकों में तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है और ऐसे में लोगों को दोपहर के समय सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार 25 से 28 मई तक रांची में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 25 मई को उत्तर पूर्वी जिलों संथाल परगना में फिर से तेज हवा और वज्रपात की आशंका जताई गई है और वहीं 26 और 27 मई को राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना बनी रहेगी। और ये भी बता दें कि रविवार को डाल्टेनगंज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहाँ की अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जमशेदपुर में 40.5 डिग्री, बोकारो में 42.4 डिग्री और चाईबासा में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बहरागोड़ा में 4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम जो है वो शुष्क बना रहा।

और जोहर रांची में आइए जानकारी लें। आज 25 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं जो इतिहास में दर्ज हैं उनके बारे में। 1995 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने पहली बार जीवित जीव के डीएनए को डिकोड करने में सफलता पाई थी। परमाणु परीक्षणों के कारण भारत पर प्रतिबंध न लगाने के लिए यूरोपीय संघ के सभी 15 देश सदस्य देश सहमत हुए थे। 2003 में चिली ने पहली बार विश्व कप टेनिस खिताब जीता, आज ही के दिन यानी 25 मई को। 25 मई को ही 2006 में नासा ने GOESN नामक मौसम उपग्रह अंतरिक्ष में रवाना किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पोत आधारित इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने चीन के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के 12 देशों ने यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर एक नए संगठन का गठन किया। हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने विवादित पुलाउ बाटू द्वीप सिंगापुर को हस्तांतरित कर दिया। और 2010 में आज ही के दिन भारतीय मूल की 59 वर्षीय कमला प्रसाद बिसेसर निवर्तमान प्रधानमंत्री पैट्रिक मैनिंग को पराजित कर ट्रिनिडाड टोबैगो की पहली प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई थीं।

और साथियों, हम बातें कर रहे हैं इतिहास की, तो ये भी बताते चलें कि आज किन का जन्म दिवस है। आज जन्मदिन है प्रसिद्ध उर्दू शायर दाग देहलवी का, और आज उनका भी जन्मदिन है जिन्हें हम सब रास बिहारी बोस के नाम से जानते हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे महान क्रांतिकारी जिनका नाम इतिहास में साहस, त्याग और देशभक्ति के साथ लिया जाता है। रास बिहारी का बोस का जन्म आज के दिन 25 मई 1886 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। बचपन से ही उनके मन में देश में आजाद देखने की प्रबल इच्छा थी। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। साल 1912 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर हुए बम हमले की योजना में उनका अहम योगदान माना जाता है। जब अंग्रेज सरकार उनके पीछे पड़ गई तो वे जापान चले गए, लेकिन विदेश में रहकर भी उनका संघर्ष नहीं रुका। उन्होंने जापान में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया और बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रास बिहारी बोस ने ही आगे चलकर आजाद हिंद फौज की नींव रखी और उसका नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपा। उनका ये निर्णय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ। रास बिहारी बोस का जीवन हमें सिखाता है कि देश से बड़ा कुछ नहीं, और समर्पण और दृढ़ निश्चय से किसी भी मुश्किलों से लड़ा जा सकता है। तो ऐसे महान देशभक्त को हमारा शत शत नमन।

और आइए अब ये जानकारी लेते हैं कि आज किनका किनका निधन हुआ था। 2020 में बलबीर सिंह, भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी, इनका निधन आज ही के दिन यानी 25 मई को हुआ था।

2012 में भगवत रावत प्रसिद्ध कवि और निबंधकार, इनका निधन आज ही के दिन हुआ था। 2011 में भारतीय समाज सेवी रजनीकांत अरोल का निधन आज ही के दिन हुआ था। और बंगला अभिनेता तपन चट्टोपाध्याय का निधन भी आज ही के दिन हुआ था। 1978 में बीरेन मित्रा, भारतीय राजनीतिज्ञ और उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, इनका निधन भी आज के दिन ही हुआ था। 1974 में कृष्ण चंद्र गजपति, इनका निधन भी आज ही के दिन हुआ था। 1933 में बास्तियो पांडे, त्रिनिदाद और टोबैगो के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका निधन 25 मई यानी आज के दिन ही हुआ था। 1924 में सर आशुतोष मुखर्जी, जो बंगाल के ख्याति प्राप्त बैरिस्टर और शिक्षाविद थे, इनका निधन भी आज ही के दिन हुआ था। और ये भी बताते चलें कि 2005 में हिंदी फिल्म के सुप्रसिद्ध अभिनेता सुनील दत्त का निधन आज के दिन ही हुआ था।

और फिल्म संगीत में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सुपरहिट जोड़ी को तो हम सभी जानते हैं। इनके संगीत से सजी कई फिल्मी गाने हमने सुने हैं, उन्हीं में से एक लक्ष्मीकांत का निधन भी आज ही के दिन हुआ था।

की। दोस्तों, इन दिनों एलर्जी का प्रभाव बहुत देखा जा रहा है। इससे बचने के कई तरीके हैं, जैसे कि सबसे पहला तरीका है साफ सफाई बदलने का। नियमित साफ सफाई पर हमें ध्यान देना होगा। लंबे समय तक कहीं भी गंदगी नहीं छोड़नी होगी। और जब हम झाड़ू लगाते हैं तब धूल के कण जमीन से उड़कर दीवारों, बेड या फर्नीचर पर जमा हो जाते हैं। ऐसे में जब बहुत कचरा न हो तो झाड़ू का इस्तेमाल न करें, सिर्फ पोछा लगाएं। वैक्यूम क्लीनर से सफाई बेहतर विकल्प है। सप्ताह में एक बार दीवारों, दरवाजों, खिड़कियों और फर्नीचर को साफ जरूर करें। चादर और तकियों को एक सप्ताह में जरूर बदल दें। कालीन या कारपेट भी समय समय पर साफ करते रहें। ये धूल कण के जमा होने का अनुकूल जगह है। साथ ही ये भी बता दें कि बाहर के जूते चप्पल घर के अंदर नहीं लाएं, और अगर लाना ज़रूरी हो तो उन्हें अच्छी तरह से साफ करके लाएं। और हम अपने खान पान से भी एलर्जी से बच सकते हैं। सबसे पहले हमें उन चीज़ों को लेना होगा जिनसे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ग्रीन टी, हल्दी, शहद, इलायची, सूखे मेवे, टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज, दही और चिकन, मछली, इन सबों का सेवन हमें करना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ मौसमी फल और सब्जियों का इस्तेमाल तो हमें हमेशा करना चाहिए। धूम्रपान और शराब का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इम्यूनिटी को तो घटाते ही हैं, साथ साथ एलर्जी को बहुत बढ़ाते हैं। और इनसे बचाव का सबसे अच्छा उपाय ये है कि हम एलर्जन से बचें। पहले एलर्जी का स्थायी उपचार नहीं था, लेकिन अब एलोपैथिक में उपचार उपलब्ध है, जिससे एलर्जी को जड़ से हम दूर कर सकते हैं। इसमें एलर्जी की पहचान करने के लिए ब्लड टेस्ट और स्किन टेस्ट किया जाता है। इससे पता चलता है कि मरीज को किस पदार्थ की एलर्जी है। उसी पदार्थ को प्यूरिफाई करके मरीज को लगातार देते हैं, धीरे धीरे शरीर उस पदार्थ से इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इसे एलर्जन इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। इसमें एलर्जेटिक अस्थमा भी ठीक हो जाती है। नियमित गहरे श्वास लेने और छोड़ने का अभ्यास हमें ज़रूर करना चाहिए। प्राणायाम, कपालभाति और जलनेति भी एलर्जन से बचने का एक अच्छा तरीका है।

और आइए अब हम चलते हैं सैर पे। तो आज हम आपको सैर करवाएंगे शोजा की। अगर आपको पहाड़ रोमांचित करते हैं और आपको शांति पसंद है तो हिमाचल प्रदेश में स्थित शोजा गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए एक उपयुक्त जगह है। बहुत ही कम आबादी वाली ये जगह जालोरी दर्रे से ठीक पहले एक छोटे से गांव में है। हरे भरे ढलान वाले पहाड़ों, चारों ओर मीलों तक फैले देवदार के पेड़ों और बर्फ से ढकी चोटियों के अनूठे दृश्य के साथ ये एक लुभावनी जगह है जहाँ की शांति आपको बेहद पसंद आएगी। यहाँ हम क्या क्या देख सकते हैं तो ये भी बता दें, जालोरी दर्रा प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श है। यहाँ के आकर्षक दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। रघुपुर किला इतिहास के शौकीन हैं तो जालोरी दर्रे के 3 किलोमीटर दूर इस किले तक का सफर हम आपके रोमांच को बढ़ा सकता है। रघुपुर किले की पैदल यात्रा और कैंपिंग खास लोकप्रिय है तो इसका लुत्फ उठाना नहीं भूलिएगा। यहाँ पहुँचने के लिए क्या करना है, यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा भुंतर है और निकटतम रेलवे स्टेशन चंडीगढ़। यहाँ से आप टैक्सी लेकर भी इस जगह पर पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग से जाना आपके लिए दिलचस्प रहेगा। और ये भी बता दें कि मार्च से जून और सितंबर से नवंबर तक यहाँ जाना सही रहता है। वाटरफॉल पॉइंट से सूर्योदय का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है, साथ ही पक्षियों की चहचहाहट को भी हम महसूस कर सकते हैं। और जहाँ तक यहाँ बात ठहरने की है तो हमें होमस्टे और हॉस्टल के विकल्प यहाँ मिल सकते हैं। और चूंकि ये एक बहुत ही सुदूर जगह है इसलिए होमस्टे में रहने से पहले भोजन के बारे में आप बात ज़रूर कर लें। वैसे शोजा में भोजन पूरी यात्रा का अनुभव का एक अभिन्न अंग है, इसलिए यहाँ के भोजन का आप स्वाद ज़रूर लें और एक बार शोजा ज़रूर घूम आएँ।

कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सबों का स्वागत है। ये पहली फरमाइश भेजी है आप सबों ने बाबा बैजनाथ धाम से मनोज केसरी, पूजा केसरी, महादेव केसरी, श्रद्धानंद केसरी और रोशनी केसरी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्या, अभानंद आर्या, परमानंद आर्या, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। आप सबों ने सुना चाहा है फिल्म बॉर्डर का ये गाना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में।

और ये अगली फरमाइश भेजी है आप सबों ने रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरेंगी से भागवत वर्मा, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा बेलदार और उल्ला आसमा बेगलदार। आप सबों ने सुना चाहा है फिल्म राजा जानी का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में।

गोंदा टाउन कांके रोड रांची से रमेश प्रसाद जायसवाल, अनुप्रिया, मंटू, मोनू सोनी और बजरंग मेहता, और आप सब हैं बड़ा बॉम्बे सुपाईसाई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लेह से कोमल बेसरा, बासंती, और आप सब हैं नाज मंजिल महसौल से, सीतामढ़ी महसौल से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, ममता रानी, पूनम कुमारी, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, शाहीन नाज, नूरी नाज, पच्चू शेख और चीना शेख। आप सबों ने सुना चाहे फिल्म शागिर्द का ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदीप मिका, बलविंदर विरक, जातेक विरक और मिका विरक, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल अंसारी और आसमान अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोमन और डॉक्टर अदिबा, सारिमपुर बक्सर से राजा एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी। आप सबों ने सुनना चाहे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म कारवां का ये गाना।

मैसौल सीतामढ़ी से नुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फराज जहानाज, रिफत जहानाज, नुजत जहानाज, शाजिया शाहिनाज और नारिया नूरीनाज, क्वात बिहार से नरगिस जफर। आप सबों ने सुना चाहे फिल्म सौदागर का ये गाना, आवाज है किशोर कुमार की।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनिए बहनों का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, आज की गृह लक्ष्मी नागपुरी भाषा में।

0: कार्यक्रम सुनिए है सब श्रोता बहन मन के सुमन बहन बटले जोहार और वंदा बहन राउल को हो जोहार
1: जोहार सुमंदी और गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनवाई है सब बहन मन के वन्ना राय बटले जोहार और असरा करीला की हमरे कर सब बहन मन बढ़िया से होबे
0: सही कहली और जब बेस रहब तभी तो हर काम के हमरे बेस से करे पाए है नी चाहे खेल कर संबंध में होवे चाहे घर के संभराय में होवे जीवन कर हर कदम में आगे बढ़े ले स्वास्थ्य रहे जरूरी है के देखो हमरे कर देश में महिला फुटबॉल भी बहुत तेजी से उभरते जाते और हाल ही में भारतीय अंडर 17 टीम कर AFC अंडर 17 महिला एशियन कप में ऐतिहासिक प्रदर्शन और सीनियर महिला टीम कर AFC महिला एशियाई कप में लगातार सफलता से देश में खेल कर लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ जाए
1: देखो पहले कर जमाने में कहल जात रहे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब पढ़ोगे लिखोगे बनोगे ना लेकिन अब ये बात लागू नहीं होवेला देखो हमरे कर देश जो है खेल बटे भी बहुत आगे बढ़ते चाहे वो क्रिकेट होवे चाहे फुटबॉल होवे चाहे बैडमिंटन होवे चाहे टेनिस होवे तो अब खेल के खराब बुझे के नखे और लड़का मन कर संगे संगे लड़की मन के भी कर बटे जरूर हमरे मन के आगे जरूरी है काले की देखो

0: क्रिकेट में हमरे मन देखले कि महिला मन कते बढ़िया प्रदर्शन कर ले
1: हाँ, और इखन भी बढ़ते हैं
0: क्रिकेटर
2: सही।
0: टेनिस में सानिया मिर्जा और दौड़ में कहो तो उषा पीटी उषा जे रहे बहुत बढ़िया रहे। तो ऐसा मत समझो कि खाली लड़का है मनुकर में बढ़िया होबे, लड़की मन भी आगे बढ़त है। तो देखो फुटबॉल में जे एखन होलक से बहुत बड़ सफलता इंडिया के चाहे भारत के मिल है, इसलिए हमरे कर देश में खेल कर लोकप्रियता दिन दिन बढ़ते हैं जाते हैं। और देखो नहीं भारत में जो महिला फुटबॉल का विकास होते वो कई गो कारण से होते, जैसे कि घरेलू जो लीग है उसका विस्तार, इंडियन वुमेन्स लीग यानी कि IWL देश भर कर महिला खिलाड़ी मन के पेशेवर स्तर से खेले अपन प्रतिभा दिखाए और आजीविका कमाई करे को शानदार मंच उमन के प्रदान कर रहे
2: सही
0: और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता। तो भारतीय टीम AFC महिला एशियाई कप और एशियन गेम्स जैसन मुख्य आयोजन मन में शानदार प्रदर्शन करके अपन मजबूत स्थिति के उमने दर्ज करा लाए।
2: और देखो कि जे महान खिलाड़ी मनक योगदान है उकर में ओइनम बेम बेम देवी जिनके कि भारतीय फुटबॉल कर दुर्गा भी कहल जाएला और आशालता देवी जैसन खिलाड़ी मन खेल के नावा ऊंचाई तक पहुंचा लें और युवा मन के भी प्रेरित कर लें। और देखो कि ग्रास रूट स्तर पर सुधार इकर भे है तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ बटले लगातार जमीनी स्तर पर प्रतिभा कर खोज और ट्रेनिंग कैंप कर आयोजन से खेल में लड़की मनक भागीदारी भी पढ़ते हैं जाते
0: एकदम सही कर ले। और देखो निसंग है भारतीय टीम लगातार AFC और FIFA स्तर पर टूर्नामेंट मन में अपन स्थिति के मजबूत करे में लगले है और सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म कर माध्यम से भी महिला खेल के अधिक दृश्यता मिलत है। बड़ बड़ ब्रांड और कारपोरेट या अब महिला खिलाड़ी ऊपर निवेश करत है उमने जेकर से कि आर्थिक सुरक्षा और खेल कर स्तर तीयों में सुधार हुआ थे और गांव और शहर तीयों क्षेत्र में मैया मन के खेल में अपन करियर बनाई खातिर परिवार और समाज दियो कर समर्थन भी मिलत है। फुटबॉल खेल ले देखो मैया मन कर आत्मविश्वास भी बढ़ेला, उमन में नेतृत्व कर क्षमता भी बढ़ेला और संगे है शारीरिक मजबूती भी उमन में आवेला।
2: सही कहली तो बेटी छुआ मन के भी खेल में आगे बढ़ाए लेकिन बहुत कम प्रयास जारी है। और देखो कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ बटले महिला खेल कर बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण सुविधा ऊपर विशेष ध्यान दिल जाते जेकर से कि उमन के विश्व स्तरीय अनुभव देखे ले मिलते। वर्तमान समय में पुरुष फुटबॉल कर वनस्पत महिला फुटबॉल में वित्तीय निवेश प्रायोजन कर वेतन कम है और एखनो टीवी में खेल कर नियमित प्रसारण कम होवेला, लेकिन इस सब चुनौती कर बावजूद महिला सशक्तिकरण और खेल कर बटे अपन लगाव कर चलते भारत में जे महिला फुटबॉल कर भविष्य आवे वाला दिन में बहुत उज्जवल है नहीं।
0: तो ये रहे महिला फुटबॉल का लोकप्रियता कर बारे में और हमरे मन के भी अपन छोवा कर संगे संगे मैया मन के भी खेल बटे जरूर आगे करे चाहिए।
2: सही कहली।
0: तो चलो इकर बादे हमरे मन सुनब एगो नागपुरी लोकगीत रुना देवी और संगी मन कर गावल।
3: ये धारा

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: तो ये रहे विज्ञापन संदेश, और उकर से पहले हमारे मन सुन ली नागपुरी लोकगीत रूना देवी और संगी मनकर गावल। तो चलो सुमन बहिन, एखन हमारे मन जानकारी करी ला कि गर्मी में स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें, तो उकर बारे हमरे के बताते हैं शीतल कुमारी और बातचीत कर रहे हमरे कर सुमन बहिन।

0: अपनी चरण सीमा पर है गर्मी। इस मौसम में सूरज बहुत तेज चमक रहा है और बाहर बहुत तेज धूप है। लोग पसीने पसीने हो जाते हैं। अब बच्चे गर्मियों की छुट्टी उन्हें अच्छी लगती है, वे खेलते हैं, घूमते हैं और ठंडी चीजें खाते हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में हमें अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम ध्यान नहीं रखते तो हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती है। गर्मी में त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी होती हैं, त्वचा पर दाना होना, खुजली, लाल निशान, फोड़े हो सकते हैं। इन्हें हम त्वचा का संक्रमण भी कहते हैं। हमारा शरीर बहुत कीमती है, हमें शरीर को साफ रखना चाहिए। साफ रहने से हम स्वस्थ रहते हैं। गर्मियों में हमें रोज नहाना चाहिए, साफ सूती कपड़े पहनने चाहिए, ज्यादा धूप में नहीं खेलना चाहिए, बहुत पानी पीना चाहिए और हमारा शरीर अच्छा रहता है। गर्मी में लोग पंखा, कूलर और एसी का उपयोग करते हैं। गर्मियों में आम, तरबूज और खरबूज जैसे फल मिलते हैं। ये फल शरीर को ठंडक देते हैं। गर्मियों में पेड़ पौधे भी पानी की जरूरत होती है, नहीं तो ये कुम्हलाने लगते हैं। उसी तरह जानवर भी छाया ढूंढते हैं। गर्मी में शरीर जल्दी थक जाता है, त्वचा पर पसीना आता है, इस कारण त्वचा का संक्रमण हो सकता है। अगर त्वचा स्वस्थ रहती है तो हमारा शरीर भी अच्छा रहता है। त्वचा के कारण हम गर्म और ठंडा महसूस कर पाते हैं। त्वचा हमें चोट से बचाती है, इसलिए हमें त्वचा का ध्यान रखना चाहिए। जब त्वचा पर कीटाणु लग जाते हैं और त्वचा खराब होने लगती है तो उसे त्वचा संबंधी संक्रमण कहते हैं। गर्मियों में पसीना ज्यादा आता है। पसीने और गंदगी के कारण त्वचा पर कीटाणु जल्दी बढ़ते हैं, इससे खुजली, दाने और फोड़े हो सकते हैं। अगर हम शरीर साफ नहीं रखते हैं तो संक्रमण बढ़ सकता है, इसलिए गर्मियों में साफ सफाई बहुत जरूरी है। गर्मियों में होने वाले त्वचा संक्रमण के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं शीतल जी। शीतल जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: शीतल जी। गर्मियों के दिनों में बच्चे हो या बड़े, त्वचा में संक्रमण चाहे कोई भी तरह की रख रखाव हमें अपनी त्वचा की किस तरह से करनी चाहिए, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगी?
1: हमारी त्वचा, ऐसे तो हमारे शरीर का काफी महत्वपूर्ण भाग होती है और त्वचा हमें धूल हो गया, मिट्टी, धूप, कीटाणु, ये सबसे बचाती है। और अगर हम अपनी त्वचा इसे सफाई तरीके से नहीं रखते हैं तो त्वचा में कई सारी समस्याएं हो सकती है। गर्मी, गंदगी, पसीना, कीटाणु, ये सब के कारण त्वचा खराब हो सकती है, इसलिए हमें अपनी त्वचा का ख्याल रखना चाहिए। काफी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसमें कि पहला नंबर पे हम घमौरी बोल सकते हैं, जिसमें कि घमौरी जो होती है गर्मी में होने वाली एक सामान्य समस्या है। इसमें त्वचा पर छोटे छोटे लाल दाने निकल आते हैं, इनमें खुजली और जलन होती है और ये ज्यादातर जल्दी पसीना आने के कारण होती है। इससे बचाव करने के लिए हमें रोज नहाना चाहिए, शरीर को साफ रखना चाहिए, कॉटन क्लोथ्स पहनना चाहिए जिसे कि हम सूती के कपड़े भी कहते हैं, और ज्यादा धूप में नहीं खेलना चाहिए, साथ ही साथ ठंडी जगह पे रहना चाहिए। उसके बाद फिर खुजली भी हो सकती है गर्मी में, खुजली जो कि ये भी काफी आम समस्या है। इसमें भी त्वचा जो है उसे खुजलाने का मन करता है और ये भी गंदगी और पसीने के कारण खुजली हो सकती है। और ये जो खुजली होती है इससे भी बचने के मुख्य रूप से वही सारे प्रिकॉशंस या प्रिवेंशन मेजर्स जो जिसे बोलते हैं वही है। उसके बाद दाद आता है जो कि एक त्वचा का ही रोग है जिसमें कि गोल निशान बन जाता है और इनमें बहुत सी खुजलियां होती है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। इससे बचाव के लिए साफ तौलिये का इस्तेमाल करना चाहिए और लाइक घर पे ऐसा बनाना चाहिए कि सबका अपना अपना टॉवल है और दूसरे के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। शरीर को सूखा रखें और रोज सफाई रखें, समय पर दवाई लें। ये सब करने से ये सब कुछ प्रिवेंशन मेजर है जिससे कि ये सब छोटी मोटी गर्मियों की जो जो परेशानी होती है, जो जो त्वचा की प्रॉब्लम्स होती है, वे सबसे छुटकारा मिल सकता है। अंततः त्वचा हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और अगर हम साफ

0: सफाई रखें और अच्छी आदतें अपनाएं तो त्वचा की समस्याएं से बच सकते हैं। हमें रोज नहाना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए और स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। स्वस्थ त्वचा से हमारे जो शरीर है वो भी स्वस्थ रहता है।
1: माता पिता को गर्मी के दिन में बच्चों के लिए कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए?
0: माता पिता को ऐसे तो बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें बच्चों को साफ रहना सिखाना चाहिए और बच्चों को समय पर खाना और पानी देना चाहिए। अगर बच्चे की त्वचा पर दाने या खुजली हो तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और तो साथ ही साथ उन्हें बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि धूप में टोपी पहन करके जाएं या फिर बाहर से आकर के हाथ पैर धोए और ज्यादा देर तक धूप में फिर उन्हें नहीं खेलने देना चाहिए। फिर उन्हें ठंडी और साफ चीजें खानी चाहिए और साथ ही साथ उन्हें रोज नहाने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। गर्मियों के दिन में त्वचा को धूप, टैनिंग और पसीने से बचाने के लिए काफी जरूरी होता है कि दिन में कम से कम दो बार फेस वॉश करें और घर से 20 मिनट पहले निकलने से कोई भी सनस्क्रीन अच्छी वाली भी लगा लेनी चाहिए और खुद को काफी ज्यादा हाइड्रेट रखना, भर करके पानी पीना काफी आवश्यक होता है। सनस्क्रीन ऐसे तो काफी ज्यादा होता है, नेसेसरी होता है, स्पेशली धूप में निकलने के समय जो बाहर है, ऐसे तो इंडोर्स में भी सनस्क्रीन लगाया जाता है। लेकिन यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो त्वचा का ध्यान रखने के लिए सनस्क्रीन काफी जरूरी होती है। उसके बाद हाइड्रेशन और डाइट, जिसमें कि दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए और अपनी डाइट में तरबूज, खीरा, नींबू पानी, ये सब चीजें शामिल करनी चाहिए जो कि शरीर और त्वचा दोनों को अंदर से ठंडा रखती है। और साथ ही साथ कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए जो कि त्वचा को सांस लेने देने के लिए ढीले और सूती कपड़े पहनने चाहिए, जिसमें कि घमौरियों और रैशेस की समस्या ना होए।
1: अभी भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे भी हमें राहत पाने के लिए किस तरह से अपने आप का ध्यान रखना चाहिए?
0: गर्मी से राहत पाने के ऐसे तो काफी सारे आसान उपाय होते हैं जो कि जिसमें कि पर्याप्त पानी पीना, जिसमें कि दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना, सादे पानी जिसमें कि या फिर ORS या फिर नारियल पानी, ये सब भी ले सकते हैं। हल्के और सूती के कपड़े पहनना जो कि हल्के ढीले ढाले कपड़े होते हैं, काले या गहरे रंग के बजाय हल्के रंग के कपड़े को चुनना चाहिए। धूप से बचना चाहिए, जिसमें कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। यदि अगर निकलना पड़े तो छाता या फिर टोपी ये सब ले करके निकले। और तो और सत्तू और छाछ का सेवन करना चाहिए। चने या जौ का सत्तू, छाछ, लस्सी, मट्ठा, ये सब पेट को ठंडा रखता है और शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। पानी से भरपूर जो फल होते हैं वे सब अपने आहार में इंक्लूड करने चाहिए, जिसमें कि तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब शामिल करना चाहिए और इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है जो कि डिहाइड्रेशन से बचाती है। सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए, घर से बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगानी चाहिए। बाहर जंक फूड से बचना चाहिए, ज्यादातर मसालेदार, भारी और तला हुआ भोजन खाने से बचना चाहिए क्योंकि इन्हें पचाने में शरीर को अधिक ऊर्जा लगती है और जिससे गर्मी और बेचैनी बढ़ती है। घर को ठंडा भी रखना जरूरी होता है, जैसे कि दोपहर के समय घर की खिड़की दरवाजे बंद रखें ताकि बाहर की गर्म हवा अंदर ना आ सके। पर्दों का इस्तेमाल करें और कूलर या पंखे की हवा में रहें। लू और भीषण गर्मी से भी बचने के लिए देशी पेय जैसे सत्तू और शिकंजी बनाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं।
1: अभी गर्मी काफी तेज पड़ रही है और लू और भीषण गर्मी से हमें बचने के लिए देसी पेय और सत्तू और सिकंजी पीना चाहिए। आपने हमारे श्रोताओं को अच्छी जानकारी दी, अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद।

0: तो एखन हमरे मन जानकारी कर ली कि गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें और उकर बारे में बतात रहे शीतल कुमारी और बातचीत कर ले हमरे कर सुमन बहिन। तो सुमन दी चलो कोनो गीत कर जोगाड़ है का?
1: चलो तब फिर हमरे वो नागपुरी लोकगीत के सुन ले वीरा रिजरंग कर संगे तो केतकी देवी और संगी मन कर गावल।
0: चलो

0: हाँ तो एखन हमरे मन सुनली नागपुरी लोकगीत केतकी देवी और संगी मनकर कावल। तो चलो सुमन बहन और एगो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में हमरे मन जानकारी कर ले मिले। तो ई योजना भारत सरकार बटले चलाल एगो प्रमुख कल्याणकारी योजना है जेकर उद्देश्य है गर्भवती और स्तनपान कराई वाला महिला मन के पहला दू गो जीवित छुआ मन ले वित्तीय सहायता देवे जेकर से कि उ मन के पर्याप्त पोषण और समुचित आराम मिले।
1: सही है। योजना कर अनुसार 5,000 रुपया कर सहायता सोझा लाभार्थी कर बैंक खाता में किस्त में भेजल जाएला। गर्भावस्था पंजीकरण और कम से कम एगो प्रसव से पहले जांच करवा ले 3,000 रुपया और छुआ कर जन्म पंजीकरण और प्राथमिक टीकाकरण में 2,000 रुपया देल जाएला। और ई राशि कर अलावे सरकारी अस्पताल में डिलीवरी करबादे जननी सुरक्षा योजना में मिले वाला राशि भी इकर में जोड़ल जाएला। और दोसर छुआ अगर मैया है ले है तो योजना अनुसार 5,000 कर लाभ भी मिलेला।
0: तो रौरेमन भी योजना कर लाभ जरूर उठाओ और संगे चलो। अब तो हमरे कर जाय कर पेरा होते तो अगला सोमवार के हमरे फिर से अपन बहिन मन कर संगे गोठिया। तब तक खातिर देव विदा।
1: जोहार।

0: नंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
3: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली, पोस्ट खेरथा बाजार, जिला बालोद, छत्तीसगढ़।

0: जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंत तीन भाई और मोतीम भाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
1: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
0: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
1: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
1: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
1: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
0: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
1: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।
3: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना, एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
2: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
3: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद, धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद।
2: हे महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने? हम जिनसे आशा भी नहीं करते, वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
1: अर्धशीर बुरजोर जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर,
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है। यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको।
5: फेंका जनाब।
6: अरे ये क्या हुआ?
5: ये क्या हुआ? अरे बचो बचो बचो,
6: फट जाओ,
2: साथियों। हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि

0: तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे,
1: ये आदि क्या कर रहा है,
0: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
2: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
1: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
3: सही में
1: बहादुर सैनिक हो तुम। हाँ।
4: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
5: May I come in, sir?
2: Yes, come in.
5: Sir,
2: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
5: सर,
2: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
5: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
2: हाँ हाँ, कहो।
5: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
2: ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
5: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
2: गो अहेड यंग मैन।
5: सर,
4: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
0: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
4: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
6: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
7: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
6: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
8: जी जनाब।
2: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
6: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
7: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
6: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन, निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
7: यस सर। वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
6: फायर!
7: सर ये टैंक तो गया।
6: गुड, तो अब निशाना लगा उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है, जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर!
7: सर ये टैंक तो गया।
6: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर!
7: यस सर।
4: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
0: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
4: सितंबर 1965 का दिन, उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया, भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।
0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
4: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
4: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
4: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
3: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनि अंकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
9: उमंग उमंग उमंग उमंग
10: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभियान सुन रहे थे।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। दिन के एक बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, हमारे दिल्ली केंद्र से 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार आप हमारे रांची केंद्र से सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद के तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के 2रे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय

0: मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first round of the civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. The Supreme Court today expressed concern over repeated lapses in the conduct of the NET examination, saying it was sad that the National Testing Agency, NTA, had not learnt any lesson from the earlier paper leak controversy. A bench of Justices P.S. Narasimha and Alok Aradhe sought responses from the Centre, the NTA and the CBI on petitions demanding replacement of the testing agency with a more robust and autonomous body to conduct the medical entrance examination. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at the 250th Independence Day celebrations of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jaishankar said India and the US must always be clear about zero tolerance for terrorism.
2: We must always be clear about zero tolerance for terrorism. And that is why our counter-terrorism cooperation is so important. The people-to-people connect has also been a very special characteristic of our relationship. It has helped build political understanding between our two nations and remains a living bridge.
1: The Quad Foreign Ministers meeting will be held in New Delhi tomorrow. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and Secretary of State of the United States Marco Rubio will participate in the meeting. External Affairs Minister S. Jaishankar will preside over the meeting. The External Affairs Ministry said leaders will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing initiatives and other international issues of mutual concern. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged as a key grouping, largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. India is hosting the meeting in its capacity as the current chair of the coalition. Millions of pilgrims from across the world, including India, are converging at Mina in Saudi Arabia as the annual 5-day Hajj pilgrimage began today amidst regional tension in West Asia. The pilgrims began from the hotel. Nearly 1,75,000 pilgrims from India are participating in this year's Hajj pilgrimage. Earlier, Minority Affairs Minister Kiran Rijiju reiterated the government's commitment to ensuring a smooth, safe and comfortable Hajj experience. With the Hajj Suvidha mobile app, information and grievance reporting services are being provided to Indian pilgrims. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Kolkata Knight Riders by 40 runs in Kolkata last night. Delhi Capitals set a target of 204 runs for Kolkata Knight Riders. In reply, Kolkata Knight Riders scored only 163 runs in 18.4 overs. Kuldeep Yadav was declared player of the match. Earlier in the day, in another fixture, Rajasthan Royals defeated hosts Mumbai Indians by 30 runs at Wankhede Stadium. Put into bat, Rajasthan Royals posted 205 runs for the loss of 8 wickets in the stipulated 20 overs. In reply, chasing a target of 206 runs, Mumbai Indians managed to score 175 runs for the loss of 9 wickets in their allotted 20 overs. The Indian Meteorological Department has issued an orange alert for heat wave conditions today in parts of Delhi, Haryana, Chandigarh and Punjab. Parts of Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Jharkhand, Odisha and Telangana are also likely to witness severe heat wave conditions during the day. Benchmark domestic equity indices were trading around 1.1% higher in afternoon trade today amid hopes of a possible agreement to end the US-Iran conflict. The Sensex surged 845 points to 76,260, while the Nifty climbed 244 points to 23,964 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 11 जून तक करेंगे मैराथन बैठक। आज जल संसाधन, पेयजल एवं वाणिज्य कर विभाग के कार्यों की होगी समीक्षा। हाईकोर्ट ने लैब असिस्टेंट भर्ती मामले में दिया बड़ा फैसला। विज्ञापन की शर्त रद्द करते हुए कहा, वैधानिक नियमों से ऊपर नहीं हो सकती विज्ञापन की शर्तें। राज्य सरकार ने की गांवों के पारंपरिक ज्ञान को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच दिलाने की पहल। युवाओं के लिए झारखंड ग्रामोत्सव इंटर्नशिप इनोवेशन योजना शुरू। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर सियासी संग्राम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगाया मुनाफाखोरी का आरोप। भाजपा ने कहा, वैश्विक बाजार मूल्यों से तय होती है कीमतें। और हॉकी, झारखंड की स्पेशल जनरल बॉडी ने राष्ट्रीय खेल अधिनियम 2025 के अनुरूप नए बॉय लॉस को सर्वसम्मति से दी मंजूरी। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने यह बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
4: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
3: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 11 जून तक राज्य के विकास योजनाओं की प्रगति और वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना को लेकर विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठकों में आज जल संसाधन, पेयजल एवं वाणिज्य कर विभाग, 26 मई को स्कूली शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, जबकि 27 मई को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा की जाएगी। हाईकोर्ट ने लैब असिस्टेंट प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने विज्ञापन की उस शर्त को रद्द कर दिया है जिसमें स्नातक स्तर पर संबंधित विषयों को 2 या 3 वर्ष तक पढ़ने की अनिवार्यता तय की गई थी। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य के कर्मचारियों के मामले में स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी का वेतनमान और सेवा शर्तें उसके औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी होने की तारीख से नहीं बल्कि उस विज्ञापन और चयन प्रक्रिया की तारीख से तय होंगी जिसके तहत भर्ती शुरू की गई थी। राज्य सरकार ने युवाओं के लिए झारखंड ग्रामोत्सव इंटर्नशिप इनोवेशन योजना की शुरुआत की है। योजना का उद्देश्य गांवों में मौजूद पारंपरिक ज्ञान और नवाचारों को नई पहचान देना है। एक रिपोर्ट।
5: झारखंड सरकार ने युवाओं के लिए झारखंड ग्राम उत्सव इंटर्नशिप इनोवेशन योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य गांवों की पारंपरिक जानकारी और नवाचारों को नई पहचान देना है। ये दो माह का

0: क्रेडिट आधारित इंटर्नशिप कार्यक्रम है जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है। योजना के तहत छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड, शैक्षणिक क्रेडिट और विशेषज्ञों की मेंटरशिप दी जाएगी। कार्यक्रम में झारखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों के 17,000 से अधिक छात्रों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इंटर्नशिप के दौरान छात्र पंचायतों में जाकर स्थानीय नवाचार, पारंपरिक ज्ञान और ग्रामीण उत्पादों का अध्ययन करेंगे। योजना में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमों को राज्य स्तर पर 1,25,000 रुपए तक के पुरस्कार भी दिए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पूर्ण मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले 11 दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। इसको लेकर राज्य में सियासी संग्राम जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने सरकार पर आम लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया है।
2: जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं, अपने 2-4 उद्योगपति मित्रों से मतलब है, कैसे उनका मुनाफा बढ़े, कैसे उनकी जेब भारी हो। जो रिफाइंड ऑयल है, डीजल पेट्रोल, उसे हम निर्यात कर रहे हैं। वाह रे वाह, विडंबना देख, अपने देश में हम महंगा करते जा रहे हैं। इसका असर क्या होगा? आम रोजमर्रा की वस्तुएं आसमान छूने लगेंगी।
1: वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने दामों की वृद्धि के लिए कांग्रेस की पूर्व की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार हॉर्मूज पर नजर रखे हुए है, जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी।
3: पेट्रोल की कीमतें वैश्विक बाजार के हिसाब से तय होती हैं, ये किसकी देन है? ये सरकार कांग्रेस की थी उस समय, वरना उस समय तक तो सरकारें कंट्रोल करती थी। उसके बाद ऑयल कंपनीज तेल पर नियंत्रण करने लगी प्राइसेस पे। तो हम मानते हैं कि ये डिफिकल्ट डिसीजन है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और हम गल्फ ऑफ हॉर्मूज पर लगातार नजर बनाए हुए। जैसे ही वहाँ स्थितियाँ बेहतर होंगी, ये प्राइसेस फिर से पुराने दर पे आ जाएगी।
1: धनबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों और अस्वच्छ तरीके से खाना बेचने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार ने बताया कि फूड सेफ्टी ऑन व्हील के जरिए मौके पर ही स्ट्रीट फूड, मिठाई की दुकानों और होटलों के खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है।
4: टेस्टिंग व्हीकल मंगाया गया है, साथ में दुनिया लोग भी आए हुए हैं। स्पॉट जो स्पॉट पे कई दुकान है, टेलीकॉम चे है, सभी में ऑन द स्पॉट सैंपल का जांच किया जाएगा। और इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर सराइडेला से हमने स्टार्ट किया है और अगले 2 दिन तक पूरे धनबाद जिले में अभियान जारी रहेगा।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 953 अंक की उछाल के साथ 76,368, जबकि निफ्टी 268 अंक बढ़कर 23,987 पर कारोबार कर रहा था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,75,000 रुपये प्रति किलो है। रांची में आयोजित हॉकी झारखंड की स्पेशल जनरल बॉडी की बैठक में राष्ट्रीय खेल अधिनियम 2025 के अनुरूप नए बॉयलॉज को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। बैठक में जिला इकाइयों को महिला और पुरुष खिलाड़ियों की सूची जमा करने तथा संगठनात्मक प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। जमशेदपुर में तृतीय झारखंड स्टेट योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 5 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग तक के प्रतिभागियों ने 12 कैटेगरी में योगासनों का प्रदर्शन किया। दिव्यांग बच्चों की स्टार कैटेगरी और महिलाओं की मॉम्स कैटेगरी आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम का उद्घाटन सरयू राय, आलोक मल्होत्रा और मनोज सत्यनारायण ने किया। रांची जिला कबड्डी संघ की ओर से आयोजित 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कबड्डी प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया गया। शिविर में करीब 50 बालक और बालिका खिलाड़ियों को प्रशिक्षक प्रदीप तिर्की ने कबड्डी के महत्वपूर्ण डिफेंस कौशल एंकल होल्ड की तकनीक सिखाई। संघ के अनुसार आगामी दिनों में खिलाड़ियों को विभिन्न तकनीकी कौशल और फिटनेस से संबंधित विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 11 जून तक करेंगे मैराथन बैठक। आज जल संसाधन, पेयजल एवं वाणिज्य कर विभाग के कार्यों की होगी समीक्षा। हाईकोर्ट ने लैब असिस्टेंट भर्ती मामले में दिया बड़ा फैसला। विज्ञापन की शर्त रद्द करते हुए कहा, वैधानिक नियमों से ऊपर नहीं हो सकती विज्ञापन की शर्तें। राज्य सरकार ने की गांवों के पारंपरिक ज्ञान को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच दिलाने की पहल। युवाओं के लिए झारखंड ग्रामोत्सव इंटर्नशिप इनोवेशन योजना शुरू। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर सियासी संग्राम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगाया मुनाफाखोरी का आरोप। भाजपा ने कहा, वैश्विक बाजार मूल्यों से तय होती है कीमतें। और हॉकी झारखंड की स्पेशल जनरल बॉडी ने राष्ट्रीय खेल अधिनियम 2025 के अनुरूप नए बॉयलॉज को सर्वसम्मति से दी मंजूरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

आइए सुने उपशास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम अनुरंजनी। आज की अनुरंजनी में हम आपको सुनवाएंगे सिप्रा बोस को। सबसे पहले इनसे सुनते हैं ये ठुमरी। राग है मिश्र खमाश और बोल है साजन अबघर आजा।

आज की अनुरंजनी में हम सुन रहे हैं सिप्रा बोस को। आइए सुनिए ये दादरा खातिर से या लिहाज से।

आज की अनुरंजनी में हम सुन रहे थे सिप्रा बोस को। अब इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का हमारा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।

आइए सुनिए सुगम संगीत। आज के सुगम संगीत में हम आपको सुनवाएंगे हरिहरन की गाई कुछ गजलें। लीजिए सुनिए ये पहली गजल, बोल है सागर है मेरा खाली।

0: Championships held in Japan. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Supreme Court seeks responses from Centre, NTA and CBI in NEET paper leak case, says lessons still not learnt from earlier paper leak cases. Assam Assembly introduces Uniform Civil Code Bill. IMD issues yellow alert in Delhi for next 3 days. Heat wave conditions to also persist over Haryana, Bihar, Madhya Pradesh, Odisha and Telangana. And Norway Chess 2026 tournament to begin in Oslo this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
3: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल खुला रहेगा।

0: की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच, जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी तरह की रात की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 आज समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार यह प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। यीनो एंजनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटे की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा केंद्र एक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। ये वक्त है फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती का। आइए सुनिए ये पहला गाना। इसे हमने लिया है फिल्म लक्ष्य से। आवाजें हैं शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन, रूप कुमार राठौर, कुणाल गांजावाला और विजय प्रकाश की। बोलो को लिखा है जावेद अख्तर ने, धुन तैयार की है शंकर एहसान लॉय ने।

अगला गाना गुलजार के बोलों को सलील चौधरी ने सुरों में पिरोया है, मुकेश ने अपनी आवाज़ दी है और इस गीत को हमने चुना है फिल्म आनंद से।

खयाम के संगीत निर्देशन में आइए सुने साहिर लुधियानवी के बोलों को। इस गाने को हमने लिया है फिल्म कभी कभी से और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

जय भारती, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में आइए एक बार फिर सुने फिल्म अपना देश का ये गाना। बोलो को लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है राहुल देव परमन ने।

0: आइए सुनिए फिल्म सिलसिला का ये गाना, लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल हैं, शिवहरि का संगीत।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: इस गीत के साथ ही अब आज का हमारा फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मरणोपरांत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान देने की घोषणा पर राज्य के राजनीतिक दलों ने गहरी खुशी जताई है। झामुमो नेता मनोज पांडे ने इसे आदिवासियों और झारखंड की अस्मिता की जीत बताया है।
2: लास्ट का दिन, हालांकि गुरुजी इससे भी ज्यादा के हकदार थे, हम लोगों ने तो भारत रत्न की मांग की थी, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगता है कि धरती पर कोई दूसरा अवतरित होगा इस तरह की करिश्माई नेतृत्व।
1: इधर भाजपा नेताओं ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गुरुजी के संघर्षों को सराहा है।
3: झारखंड आंदोलन में उनकी महती भूमिका थी और झारखंड आंदोलन से भी पहले वो शराबबंदी के खिलाफ उनका जबरदस्त आंदोलन था, जिस शराबबंदी को आज हेमंत सोरेन ने नकार दिया और शराब को बेचने के लिए टारगेट फिक्स किया जा रहा, गुरुजी के उसूलों को उन्होंने भूल दिया, लेकिन केंद्र सरकार नहीं भूली और पद्म भूषण का सम्मान दिया। महाजनी प्रथा के खिलाफ भी गुरुजी ने जबरदस्त संघर्ष किया था।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवादों से कोई सबक नहीं सीखा है। यह 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा है। कोर्ट में दायर याचिकाओं में परीक्षा कराने के लिए किसी अधिक मजबूत और स्वतंत्र संस्था को लाने की मांग की गई है। जमशेदपुर के घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंदियों के लिए झारखंड का पहला ओपन जिम बनेगा। जेल प्रशासन ने इसके लिए जगह चुन ली है। जेल अधीक्षक और एडीएम ने इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी है। उपायुक्त की मंजूरी मिलते ही काम शुरू होगा। इससे जेल के 1,568 बंदियों को फिट रहने में मदद मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी पुलिस ने आगामी बकरीद त्योहार को लेकर कचहरी मैदान में मॉक ड्रिल किया। पुलिस कप्तान ऋषभ गर्ग ने बताया कि शहर में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। जगह जगह मजिस्ट्रेट, महिला बटालियन और पुलिस बल तैनात रहेंगे। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी।
4: 20 तारीख को बकरीद का पर्व मनाया जाना सुनिश्चित किया गया है। उसी के मद्देनजर हम लोगों ने आज जो है राइट मॉक ड्रिल का एक अभ्यास किया था और इसी में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे वह टीयर गैस शेल हो या फिर स्टन ग्रेनेड हो, उन सभी का भी अभ्यास किया गया और उसकी देखा गया कि कारगर वो कितना है। सभी की कार्रवाई अच्छी थी और हम लोग आशा करते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग बकरीद का पर्व मनाएंगे।
1: सिमडेगा के पाकरटार थाना पुलिस ने साइबर ठगी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप के जरिए संदिग्ध मोबाइल नंबर की जांच की थी। एसडीपीओ धर्मदेव पासवान ने बताया कि आरोपी जामताड़ा के ठगों को सिम और एटीएम कार्ड भेजते थे। पुलिस ने इनके पास से एटीएम, सिम, मोबाइल और बाइक बरामद की है। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, रांची, खूंटी और गुमला जिलों में आज वज्रपात की आशंका जताई है। इन इलाकों में गरज के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में चल रही राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने नया इतिहास रच दिया है। इस प्रतियोगिता में गुरिंदर सिंह ने 100 मीटर, विशाल टीके ने 400 मीटर और तेजस्वी शंकर ने डेकैथलॉन में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। शानदार प्रदर्शन के दम पर गुरिंदर सिंह, अनिमेश कुजूर, रवीना और सीमा सहित कुल 12 एथलीटों ने आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसके साथ ही कई खिलाड़ियों ने नया मीट रिकॉर्ड भी बनाया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: नमस्कार। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। कुछ ही देर में हम सुनेंगे अंत्याक्षरी।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: और आकाशवाणी के रांची केंद्र से आइए अब सुनते हैं नॉनस्टॉप अंताक्षरी। तो लीजिए सबसे पहले सुनिए ये पहला गाना माँ अक्षर से।

आइए सुनिए रांची मेलोडीज। रांची मेलोडीज कार्यक्रम का ये पहला नगमा लता मंगेशकर की आवाज में, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का नाम, अनजान के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में आइए सुनिए फिल्म मेरे हमसफर का ये गाना। आनंद बख्शी के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

मेरा साया, इस फिल्म का गीत अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोलो को लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने और धुन तैयार की थी मदन मोहन ने। आइए सुने किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म सफ़र का ये गाना। इंदिवर के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म मशाल का ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल हैं और हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही अब आज का रांची मेलोडीज कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनिए प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। लोहरदगा के सलगी चूल्हा पानी में आयोजित देवनद दामोदर महोत्सव में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने दामोदर नदी के उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना कर राज्य के सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक सरयू राय ने की। पलामू के चियांकी हवाई अड्डे से उड़ान शुरू न होने का मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा केंद्र को जरूरी प्रस्ताव न भेजना है। लोकसभा में सांसद विष्णुदयाल राम द्वारा उठाए गए सवाल पर नागरिक विमानन केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यह जवाब दिया है। गुमला के जिला उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने पीएम जनमन सहित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की एक बड़ी समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी लंबित काम तय समय के भीतर पूरे किए जाएं। पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। उन्होंने जिले के स्कूलों की व्यवस्था, छात्रवृत्ति, पोशाक, किताब और मिड डे मील जैसी बड़ी योजनाओं में काम की जांच की। हजारीबाग के उपायुक्त हेमंत सत्ती ने कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावासों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां रह रहे छात्रों से सीधा बात कर उनकी समस्याओं को सुनकर तुरंत समाधान के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, रांची, खूंटी और गुमला जिलों में आज वज्रपात की आशंका जताई है। इन इलाकों में गरज के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में चल रहे राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता में आज महिलाओं के 500 मीटर दौड़ में रिलायंस की सीमा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। पुरुष वर्ग की 500 मीटर दौड़ में कर्नाटक के शिवाजी परशुरामम्मा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का रांची केंद्र है और आप हमारे कार्यक्रम एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। आइए सुने कार्यक्रम आओ साथ चलें। प्रस्तुति है नूतन प्रसाद की, प्रस्तुति स्वर सिंधु मिश्रा का।

0: कार्यक्रम अवसर चले में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वीकार करें कार्यक्रम की हम सफर सिंधु मिश्रा का नमस्कार। श्रोताओं, आज कार्यक्रम की शुरुआत इन पंक्तियों से करना चाहूंगी जो हमारी बहनों को समर्पित है। मैं अबला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ, मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। जिस युग में दोनों नर नारी कदम मिला चलते होंगे, मैं उस भविष्य स्वर्णिम युग की एक आशा की चिंगारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। श्रोता मित्रों, अपनी निजी स्वतंत्रता और स्वयं के फैसले लेने के लिए महिलाओं को अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण है। परिवार और समाज संबंधी फैसले, अधिकार, विचार, दिमाग से संबंधित पहलुओं पर निर्णय लेने का अधिकार आज हम महिलाओं को स्वतंत्र रूप से मिला है। समाज के सभी क्षेत्रों में पुरुष और महिला दोनों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। देश, समाज और परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए महिला सशक्तिकरण आज बेहद जरूरी है। देश को पूरी तरह से विकसित बनाने और विकास के लक्ष्य को पाने के लिए एक जरूरी हथियार के रूप में है महिला सशक्तिकरण। श्रोताओं, भारत में बच्चों और महिलाओं के उचित विकास के लिए इस क्षेत्र में महिला और बाल विकास विभाग अच्छे से अपना कार्य कर रहा है। प्राचीन समय से ही भारत में महिलाएं अग्रणी भूमिका में थीं, हालांकि उन्हें हर क्षेत्र में हस्तक्षेप की इजाजत नहीं थी। श्रोताओं, आज हमारी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बस महिलाओं को अपने विकास और वृद्धि के लिए हर पल मजबूत, जागरूक और चौकन्ना रहने की जरूरत है। श्रोताओं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती है, परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर बढ़ने लगता है। श्रोताओं, भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले उन सभी सामाजिक कुरीतियों को दूर करना होगा जो विकास के मार्ग में बाधक हैं, जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, असमानता, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी और ऐसी ही अन्य कई कुरीतियां। हम जानते हैं कि लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अंतर ले आता है जो देश को पीछे की ओर धकेलता है। श्रोताओं, भारत के संविधान में समानता के अधिकार को धरातल पर लाने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे अच्छा उपाय है। आज महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक अलगाव और हिंसा को रोकने के लिए सरकार कई सारे कदम उठा रही है। आज हम महिलाओं को विकास करते हुए देख भी रहे हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाएं आज घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए अपने को सुदृढ़ बना रही हैं। आज के कार्यक्रम अवसर चले में हमारी ऐसी ही एक महिला बहन से बातचीत हुई जो आरा केरम गांव की रहने वाली हैं। ये महिला समूह में पुस्तक संचालिका के रूप में और नरेगा के तहत महिला मेट के रूप में काम कर रही हैं। महिला समूह में शामिल सभी महिलाओं के बचत, खर्च एवं जरूरतों का ब्यौरा रखना और उसे लिखना, साथ ही नरेगा में किस तरह योजनाओं का लाभ इन्हें लेना है, ग्रामीणों को इसके प्रति जागरूक करने के साथ साथ योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम ये अच्छे से निभा रही हैं। और इन्होंने अपने गांव को नशा मुक्त करने के लिए भी महिलाओं और ग्रामीणों के साथ मिलकर कई काम किया है। आइए अब इनसे ही जानते हैं कैसे ये गांव और समाज के विकास में अपना योगदान दे रही हैं।
1: आपका नाम बताइए।
2: मेरा नाम सीमा देवी है और मैं ग्राम आरा की रहने वाली हूँ और मैं जैसल पी ए के समूह से जुड़ी हूँ, जो कि मेरा समूह का नाम है सरस्वती महिला समूह, जिसकी मैं पुस्तक संचालक हूँ। और हम आरा गांव के मनरेगा के तहत महिला मेट के रूप में कार्य करती हूँ।
1: महिला मेट के रूप में आप मनरेगा में काम कर रही हैं, तो ये क्या काम कर रही हैं?
2: मनरेगा के बारे में जितनी सारी योजना होती है उनको कैसे किस प्रकार काम कराना है, और यहाँ के लोगों को मनरेगा के बारे में जानकारी देना, किस प्रकार काम करना है और मनरेगा में हम काम करने से हमें क्या फायदा है, और किस प्रकार हमें मनरेगा में काम करने से हमारे पास हमको पैसा मिलता है, और हमें एक दिन में मनरेगा में कितना काम करना है, ये सब जानकारी। सबसे पहले हमको महिला जब मेट का चयन हुआ उसके बाद हम लोग को ब्लॉक द्वारा सीएफटी लोग के द्वारा हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया। उसमें हमें मनरेगा के बारे में सारी जानकारी दी गई जो कि हम अपने गाँव में आके सभी को बताएं।
1: अच्छा, मान लीजिए कि अब मुझे जानकारी लेनी है आपसे मनरेगा के बारे में, तो एक महिला मेट होने के नाते आप मुझे कैसे समझाएंगी इसके बारे में?
2: मनरेगा में काम करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक जॉब कार्ड की जरूरी होती है। जॉब कार्ड रहेगा तभी हम मनरेगा में काम की मांग कर सकते हैं। हम काम की मांग करने के लिए हमें एक मजदूर दिवस होता है जो कि हर पंचायत भवन में हर गुरुवार को होता है, जो हम अपने मजदूर अब वहाँ जाके हम अब काम की मांग कर सकते हैं। जैसे हम काम की मांग किए उसमें हम काम की मांग करने से छोड़ नहीं देंगे उसके, उससे हम जिस काम की मांग किए उसे हम रिसीविंग ही लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग को 15 दिन के अंदर अगर हम लोग को काम ना मिला तो हम लोग को बेरोजगारी भत्ता मिल सके। इस प्रकार हम मजदूर को बताएंगे कि हम लोग को मनरेगा में इस प्रकार काम मांगना है।
1: अच्छा, आपने कहा कि मनरेगा में हम तभी अपने काम का मांग कर सकते हैं जब हमारे पास जॉब कार्ड हो, तो जॉब कार्ड कहाँ से बनवाएंगे हम?
2: जैसे हम लोग को जितना मजदूर का जॉब कार्ड बनाना है उसमें हम लोग एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि हम अपने गांव में काम करना चाहते हैं। उसमें हम लोग पंचायत भवन जाएंगे, उसमें हम लोग जॉब कार्ड बनाने के लिए एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी जो और पासबुक का फोटोकॉपी और 2 फोटो का आवश्यकता होती है, जो कि हम रोजगार सेवक को देंगे और वे हमारे को जॉब कार्ड बना देगी। उसके बाद हम लोग को रिसीविंग लेंगे कि हम लोग को 15 दिन के अंदर हम लोग को जॉब कार्ड बन के मिल जाना चाहिए। जॉब कार्ड मिलने के बाद ही हम काम की मांग कर सकते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है।

0: महिला मेट के रूप में काम करते हुए आपको कितना दिन हुआ है?
1: हम 2016 से महिला मेट के रूप में काम कर रहे हैं।
0: 2016 से काम कर रही हैं। तो आपने मनरेगा के अंतर्गत जो भी योजनाएं आई हैं और लोगों को मिल रहा है, तो क्या अंतर महसूस कर रही हैं, क्या फर्क नजर आ रहा है?
1: पहले तो यहाँ हमारे गांव में कोई नहीं जानता था कि मनरेगा क्या चीज़ है। मनरेगा के बारे में किन्हीं को पता भी नहीं था। मनरेगा में कोई भी अगर योजना आती थी तो जो जागरूक आदमी है, जो ब्लॉक आना जाना करते हैं या फिर उन संपर्क रखते हैं, वही आदमी को केवल मनरेगा के लाभ को ले सकते थे। पर हम जब से हमारे गाँव में मनरेगा के बारे में हम लोग सभी लोग जागरूक हुए, हम लोग को ड्राइव चला, तब से हम यहाँ के लोग सभी अपने ज़रूरत के अनुसार मनरेगा के बारे में हम लोग मनरेगा के योजनाओं को हम लोग मांग कर सकते हैं। सब हमारे यहाँ पहले जब से हमारे गांव नशा मुक्त नहीं हुआ था तब से वे किसी चीज को जानकारी नहीं थी, वे किसी चीज को यानी जानना भी नहीं चाहते थे वे, क्योंकि बाहर ही निकल नहीं पाते थे कि हम लोग को क्या क्या चीज आता है सरकार द्वारा, हम लोग को किस प्रकार लेना चाहिए, इस सब के बारे में जानकारी नहीं थी। ब्लॉक से जो संपर्क रखते थे वही लोग को केवल मनरेगा का लाभ मिल सकता था। पर भी वे मजदूर में ना करके पहले जैसे डोभा सब मिलता था तो वे मजदूर से नाव करवा के वे जेसीबी से खुदवाते थे, जो कि वे जेसीबी गाड़ी वाला आता था और 1-2-3 घंटा में वे डोभा खोद के चला जाता था। पर हम लोग जब से यहाँ हमारे गाँव में जागरूक हुए हैं, हमारे गाँव नशा मुक्त हुआ, तब से हमारे यहाँ सभी लोग जानकारी हुए और हम लोग जैसे ट्रेनिंग मिला हम लोग को, तो हम लोग सभी गाँव वालों को आके बताएं मनरेगा में सभी चीज को हम लोग को योजना का लाभ ले सकते हैं। पहले तो किसी का दिमाग नहीं था कि हम लोग को किस प्रकार काम करना है और किस प्रकार की हम लोग को योजना की मांग कर सकते हैं। पर हम लोग को नशा जैसे छूटने लगा तब से यहाँ दिमाग लोगों का खुलने लगा और वे हम लोग बकरी सब भी पालते थे, गाय सब भी पालते थे, हम लोग के पास जगह ना रहने के कारण हम लोग कम कम ही मात्रा में रख पाते थे और वे रख भी पाते थे, तो हम लोग जहाँ खाना बनाते थे, जहाँ सोते थे, उसी के साथ में बकरी सब को भी रखते थे, जिससे हमारे हमारे गाँव में बहुत सारी परेशानी भी होती थी, मलेरिया सब भी आता था, बहुत सारी बीमारी ग्रस्त भी होते थे। पर हम लोग को जैसे नशा मुक्ति हुआ तैसे सभी लोगों अपना योजना की मांग करने लगे, हम लोग को जरूरत के अनुसार। अब हमारे गांव में पहले ग्राम सभा भी होता था तो केवल पुरुष सब जाते थे, 2-3 पुरुष जाते थे, ग्राम सभा होके कंप्लीट हो जाता था। पर अब से हमारे सभी लोग यहाँ जागरूक हुए, जब भी ग्राम सभा होता है तो सभी लोगों को जानकारी होती है और महिला पुरुष दोनों जाते हैं ग्राम सभा में और वे अपने जरूरत के अनुसार कि हम लोग को गाय पालन हम करेंगे, हम सुअर पालन करेंगे, मुर्गी पालन करेंगे या फिर बकरी पालन करेंगे या फिर हम कृषि अधिक मात्रा में लगाएंगे, इस प्रकार हम लोग काम मांगते हैं। तो हम लोग ग्राम सभा हम लोग को 26 तारीख को होता है, हम लोग सभी महिला पुरुष जाते हैं और उसमें हम लोग अपना जरूरत के अनुसार, हम मुर्गी पालन करेंगे तो हमको मुर्गी सेट का जरूरत है, बकरी पालन करेंगे तो बकरी सेट का जरूरत है। तो हमारे गाँव में मौसमी के अनुसार भी ये काम किया जाता है। मैम सबसे पहले हम लोग डोभा का निर्माण किया, हमारे गाँव में हम लोग कुआं हुआ कुछ नहीं किए, सबसे पहले हम लोग डोभा का निर्माण किए, क्योंकि हमारे गांव में पानी तो अधिक आता है पर हम लोग को जो पानी आके हुए बह जाता है, इसलिए हम लोग को पानी को स्थिर करने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग डोभा का निर्माण किया। 45 डोभा हम लोग अगले साल खोदे, जो कोई भी जेसीबी से नहीं, हम लोग सारे गांव के मजदूर से ही काम किए। पहले हम लोग को मनरेगा में पता नहीं था कि मनरेगा में काम करेंगे तो पैसा भी कैसे मिलेगा, और जो जेसीबी से खुदवाते थे उसमें कुछ जेसीबी से खोदने के बाद कुछ सीढ़ी सीढ़ी बाइक बनाना पड़ता है, वे मजदूर भी लगते थे, तो लोग को पता भी नहीं था कि कैसे हम काम करेंगे, कैसे हम लोग को पैसा मिलेगा। पर हम लोग जब से मनरेगा के बारे में पूरा ट्रेनिंग लिया है तब से हम लोग को पता चला कि हम लोग को जॉब कार्ड रहेगा तब ही हम मनरेगा में काम करेंगे और मनरेगा में काम का डिमांड देंगे तब हम रिसीविंग लेंगे और साथ में हम लोग के पास जब मास्टर रोल होगा तब ही हम मनरेगा में काम कर सकते हैं। मैं मास्टर रोल एक होता है जो कि इसमें मजदूर का नाम और जॉब कार्ड संख्या और खाता संख्या और आधार संख्या लोड हुआ रहता है और वे कितने दिन काम कर रहे हैं और एक दिन में कितना उसका मजदूर दर मिल रहा है, ये सारा चीज़ लिखा होता है। वे मास्टर रोल आता है जो कि मजदूर के नाम के साथ आता है, उसमें जिस मजदूर का नाम होता है उसी को हम लोग काम में लगाते हैं ताकि उसको सही से पैसा मिल सके। जो व्यक्ति काम किया उसका सीधे अकाउंट में पैसा चला जाता है। इससे हम लोग को यह फायदा हुआ मैम कि पहले हमारे गांव में कोई के किसी किन्हीं का शायद ही खाता था, तो किन्हीं का खाता नहीं था। जब से हम लोग मनरेगा में जुड़े, जॉब कार्ड बनाने का हुआ, तब से हमारे लोग यहाँ सभी का खाता है अपना अपना। और वे अपने पहले तो पता भी नहीं था कि हम लोग बचत कैसे करेंगे, किस प्रकार हम लोग पैसा को रखेंगे, किस प्रकार खर्च करेंगे। जितना पैसा जो बाहर जो कमाते थे वह पैसा मिलता था वह खर्च कर देते थे, उसमें पता भी नहीं था कि हम लोग बचत किस प्रकार करेंगे। पर जब से हम लोग मनरेगा में जुड़े तब से हम लोग को बचत करना भी सीख गए, और अपने जरूरत के अनुसार जैसे काम भी करते हैं तो हम लोग को पैसा अकाउंट में आता है तो अपने जरूरत के अनुसार निकाल लेते हैं पैसा को, और हम लोग यूज करते हैं और अपना बचत भी करते हैं। इस प्रकार हमारे मनरेगा में जुड़ के हम लोग कम से कम हमारे गांव में 60 से 80 दिन का तक हम लोग काम करते हैं, जो कि हम लोग को अकाउंट में 9,000 से 14,000 तक पैसा आ जाता है। हम मनरेगा में जुड़ के बहुत खुशी हुई मैम कि हम पहले अपने घर में केवल पति लोग ससुर लोग के साथ ही खेती बाड़ी में हाथ बटाते थे, पर अब हमारे गांव में मनरेगा में जुड़ के हम लोग मनरेगा में काम भी कर रहे हैं, साथ में उसमें हाथ भी बटा रहे हैं। हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने अपने बल पे खड़ा हुए कि हम किसी पे निर्भर नहीं है कि हम कि यानी किसी से पैसा मांगे कि हम ये सामान करना, हम अपने बल पे हैं कि हम अपने खुद पे कुछ कर सकते हैं। हमारे गांव में मनरेगा के तहत बहुत सारी योजनाएं मिली, जैसे गाय शेड हो गया, बकरी शेड, सुअर शेड, नाडे, बायोगैस, डोभा, कुआ, ऐसे बहुत सारी योजनाओं को हम लोग मनरेगा से लाभ उठाए हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। सीमा एक बात और आपने अपने बातों में कही कि नशा मुक्त हुआ ये गांव, तो क्या परेशानी आ रही थी, कब ये नशा मुक्त हुआ है?
1: यहाँ सभी लोग यहाँ नशा करते थे, पुरुष से लेकर महिला तक। यहाँ नशा के होने के कारण जो यहाँ की महिला लोग थी, सभी महिला लोग जंगल से लकड़ी लाके वे जिसे बेचने चल जाती थी, और पुरुष लोग होते थे वो लोग जाते थे रांची काम करने, और उधरे से जैसे 200 मिलता था तो वे 100 का उधरे शराब पी के आते थे शाम को घर। तो जिसे पत्नी लोग बोलती थी कि इतना में काम नहीं चलेगा, घर का बच्चा सबको पढ़ाना खाना पीना तो कैसे चलेगा, तो उसी उसमें पति लोग होते थे तो पत्नियों लोग को दबा देते थे कि हम पोसेंगे कि तुम पोसेगी। और यहाँ के अधिकतर बहुत गरीबी स्थिति था मैम गांव का, यहाँ अधिकतर यहाँ की महिलाएं अधिकतर लकड़ी से ही निर्भर थी। इसमें हमारे गांव में बहुत सारी परेशानी हुई होती थी कि सभी 1 से 2 दिन काम करने जाते थे या 5-6 दिन इधर उधर पी के रहते थे। जैसे कोई त्यौहार आता था मैम तो आज उसका घर में पीना है, आज उसका घर में पीना है, ऐसे कर कर के एक दिन का त्यौहार में पूरे 8 दिन महीनों दिन तक लगा देते थे। यहाँ कोई खाया कोई पिया, कोई बच्चा लोग कैसा है, स्कूल जाता है, पढ़ाई लिखाई हर दिन कुछ नहीं देता था। यहाँ किसी को पता नहीं चलता कि हमारे आगे का भविष्य कैसा होगा, कैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ये लोग किसी को पता नहीं। इसे हमारे गाँव में बहुत सारी परेशानी होती थी, वे एक दूसरे के साथ थोड़ा पीने के बाद वे घर में क्या बोल रहे हैं या फिर एक दूसरे के साथ क्या क्या बोल रहे हैं वे पीने के बाद कोई उन लोग को पता नहीं चलता था। लड़ाई झगड़ा इधर उधर के बाद छोटे मोटा घर में अगर छोटे छोटी सी अगर कुछ भी बात हो जाए तो उसे तुरंत लड़ाई झगड़ा के शिकार हो जाते थे। पर हमारे गांव में जैसे जैसे धीरे धीरे दशा मुक्ति का अभियान चला मैं, अब हमारे लगभग हो गया 20 माह हो गया होगा। यहाँ गांव में तो हम लोग सब मना कर दिए कि हम लोग सब महिला के हम लोग रखना ही बंद कर देंगे तो फिर हम लोग का हस्बैंड लोग ससुर लोग पिएंगे कैसे। तो जिनको कठिनाई थी उन लोग को लत लगा था, वो लोग बाहर से जाते थे और पी के आते थे या भी लाते थे। तो हम लोग सारी महिला जमा हुए और सोचे नहीं सबका घर में हम लोग जाएंगे शाम शाम को तलाशी लेने कि कौन कौन पीता है। उसके बाद फिर बाहर से भी लाते थे तो उसको हम लोग बोले नहीं ये खराब चीज़ है इसको मत पिए, अगर छोड़िएगा तो आप ही लोग का भलाई होगा हम लोग का नहीं होगा। उसमें हम लोग सभी महिलाएं निर्णय लिए कि नहीं हम लोग का जितना हम लोग यहाँ हड़िया वाला इतना बर्तन होता है सबको हम लोग घर में रखेंगे ही नहीं तो फिर लाएगा भी किस में और बना कर पिएगा भी किससे। तो सभी हम लोग सभी महिला निर्णय लिए और उसके बाद फिर हम लोग जो ठेठरा होता है बर्तन बेचता है सबको बुलाए और बोले नहीं हम लोग सारा बर्तन को बेच देंगे। तो सभी महिलाएं निकाले अपना अपना घर से बर्तन और सबको ठेठार को दे दिए। इस प्रकार हमारे गांव में नशा मुक्ति की है मैम, इस प्रकार हमारे गांव में थोड़ा ध्यान दिए और अभी हमारे बच्चे को पढ़ाई की ओर भी हम लोग आगे की ओर ले गए हैं, स्वास्थ्य की ओर भी। इस प्रकार हम लोग अपने गाँव को थोड़ा संवारने में ध्यान दिए।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। और एक बात और बताइए सीमा, ये तो महिला मेट के रूप में आपने मनरेगा के तहत बहुत सारा काम किया है, लोगों को समझाया है, साथ साथ लोगों ने इससे लाभ भी लिया है। साथ ही साथ नशा मुक्ति के लिए जो आपने अभियान चलाया, महिलाओं से जुड़कर सभी लोग एकत्रित हुए और नशा मुक्त कराया इस गांव को, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपने शुरू में अपने परिचय में बताया कि आप एक महिला समूह की पुस्तक संचालिका के रूप में भी काम कर रही
1: यस
0: हैं, तो इसमें कौन सा महिला समूह है, कितने लोग हैं
1: यस
0: और

0: कब से आप पुस्तक संचालिका के रूप में काम?
1: पुस्तक संचालक हमारे गांव में समूह 2016 में हम लोग का ड्राइव चला और 2016 से ही हमारे गांव में समूह का गठन हुआ, जिसमें हम पुस्तक संचालक का काम करने लगे। और पुस्तक संचालक के काम करने के बाद फिर हम लोग को गांव में मनरेगा के तहत महिला मेट के रूप में चयन किया गया। उसके बाद से हम लोग महिला मेट के रूप में काम कर रहे हैं।
0: पुस्तक संचालिका के रूप में आपको कौन कौन से काम देखने पड़ते हैं?
1: हमारे जो समूह है उसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग का 7 रजिस्टर होता है मैम, जो कि हम लोग 7 रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। सबसे पहले हम लोग को किस प्रकार बैठक करना है, उसके बाद फिर बैठक करने के बाद हम लोग को प्रार्थना करना है और उसके बाद शपथ लेना है। शपथ लेने के बाद अपना अपना परिचय देना है। उसके बाद हम लोग कितने हम लोग महिला सरस्वती महिला समूह में हम लोग 8 मेंबर है, उसमें से कौन कौन मेंबर आए, कौन अब्सेंट किए, क्या कारण था वे नहीं आए, उपस्थिति में इनको लिखना है। फिर उसको पिछली बैठक उपस्थिति जो हमारे पिछले बैठक में क्या क्या चर्चा हुआ, क्या क्या लेन देन हुआ, कितना लेन देन हुआ, उसके बारे में लिखना होता है। हमारे समूह में हम लोग 20-20 रुपया के दर से हम लोग बचत वसूली करते हैं। वे बचत वसूली कितने लोग किए, कितने हमारे हाथ में पैसा है, और उसके बाद फिर किस्त और ब्याज। मैम हम लोग जैसे किसी चीज़ के लिए पैसा हम लोग मांग करते हैं तो उसमें हम लोग को एक किस्त बनना पड़ता है, जो कि हम अपना इच्छा अनुसार हम बोल सकते हैं। अगर जैसे हम 1000 लिए तो हम उसको बोल सकते हैं कि हम 2 किस्त में वापस करेंगे या फिर 1 किस्त में वापस करेंगे। उस पर एक किस्त बंधा होता है, जो कि वे किस्त महीना का होता है, 1 महीने का, वह किस्त के अनुसार वह पैसा वापस करते हैं। उस पर नया ऋण मंजूरी, जो कि हम अगर पैसा के मांगना होता है तो हम उसको पैसा मांग करते हैं कि हम लोग को हमको इतना पैसा की जरूरत है, हमको पैसा चाहिए। उस बाद फिर प्राप्त और भुगतान होता है मैम, जो कि हमारे यानी हाथ में कितना पैसा जमा हुआ और कितना बचत हुआ और किस्त और ब्याज में कितना पैसा हुआ और जो कि कितना वितरण होता है। उस पर फिर हम लोग सदस्य में चर्चा भी करते हैं कि हमें आज के बैठक में क्या चीज़ के बारे में चर्चा करना है, जैसे कि किसी के काम के बारे में अगर चर्चा करना हो या फिर स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करना हो कि आज हम लोग को स्वास्थ्य में ऐसा किया, फिर या फिर हम लोग को किसी के काम करना होता है, जैसे कि आज हम लोग को वहाँ पर काम है तो सारे लोग वहाँ जाके काम करेंगे। इस प्रकार हम लोग चर्चा भी करते हैं और अपने स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा करते हैं कि हम लोग क्या क्या काम करना चाहिए और स्वास्थ्य रहने के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। उस बाद फिर अन्य विषय में जो कि हमारे सभी कितने लोग उपस्थित हुए और कौन इस बैठक का अध्यक्ष हुए और कितना हमारे हाथ में पैसा अंतिम बचा, ये सब का अन्य विषय में लिखते हैं। और उस बाद हम लोग कितने सदस्य उपस्थित हुए उसका हम लोग हस्ताक्षर करते हैं और जो जो कि बुक कीपर है वे भी अपने साइड में साइन करती है कि बुक कीपर ये नाम की है। उस बाद बचत पासबुक होता है, जो कि अपने पासबुक में वे लिखा होता है कि कितने कितने पैसा हम लोग को हुआ, इतने सप्ताह में कितना हुआ, आज 20 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, और वे उसमें अपना पासबुक होता है उसमें लिखा होता है कि आप कितना पैसा ले रहे हैं। वे पासबुक अपने घर में ले जा सकते हैं और जो जो दिल्ली पढ़ी लिखी नहीं है वो अपने घर वाला को भी दिखा सकते हैं कि हम इतना पैसा निकाले हैं, हमको इतना इतना दिन में जमा करना है और किस पर कितना कितना डेट में जमा करना है और कितना कितना करके जमा करना है, क्योंकि जो पढ़ी लिखी दीदी वो लोग तो जान जाएगी पर पढ़ी लिखी दीदी नहीं लोग वो लोग अपने घर पे बता के वे जान सकती है कि हमको इतना इतना दिन में पैसा जमा करना है। फिर वह पुस्तक संचालक बताती भी है पर अपने मन की संतुष्टि के लिए वह पासबुक अपना घर ले जाना पड़ता है, फिर उसका हर बैठक में उसको लाना पड़ता है। इस पर 7 रजिस्टर होता है, जो 7 रजिस्टर को हमको यानी पुस्तक संचालक लिखती है बैठक में ही। तो हम लोग को महिला समूह से जुड़ के हम लोग को बहुत सारी लाभ भी मैम कि पहले हम लोग को यहाँ कोई महिला यानी कि एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, गांव में रहते हुए थे, रहते हुए भी एक दूसरे को बात नहीं करते थे, वे अपना काम कर रहे ये अपना काम कर रहे, इस प्रकार सब अपने अपने में रहते हैं। पर जब से हमारे गांव में महिला समूह का ड्राइव चला, हम लोग एकजुट हुए, तब से हम लोग हर रोज एक दूसरे के हेल्प भी करते हैं और एक साथ हर संडे को बैठते हैं। उसके अलावा भी हम लोग 15 दिन के अंदर बैठते थे, अभी कुछ दिन से नहीं बैठ रहे हैं पर बैठते थे और उसमें सभी चीज़ को डिस्कस करते थे कि आपका घर में क्या परेशानी है, आपको क्या चीज़ का कमी है, या आपका घर में ज़्यादा काम है तो हम लोग जाके सभी लोग कर देंगे। इस प्रकार हम लोग उस चीज़ को बात को रखते थे और उसके से हम लोग बात को रखते हुए लगता था कि उनको नहीं करने सकेगी तो हम लोग उनका हेल्प करते थे जाके। इस

0: हम लोग महिला समूह तो एक एक दूसरे से एकजुट हुए। हाँ, हमारे गांव में 8 कुल महिला समूह है मैम। इसमें सभी समूह में 12 से 14, 14-15 मेंबर है। इसमें हम लोग आरा में है 5 और केरम में 3 है। तो इस प्रकार हम लोग गांव में सभी महिलाएं समूह में जुड़े, और समूह में जुड़ने से हमें बहुत सारी लाभ मिली। आज के डेट में जो SLPS के समूह में ही जुड़ी, उन्हीं दीदी लोगों को लाभ मिल सकता है। अगर वे जुड़ी नहीं है तो उनको लाभ नहीं मिलता है। इस प्रकार हम लोग समूह में जुड़ के, ये 20 रुपया तो एक बहाना है मैम कि हम लोग इसको बचत करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एकजुटता होना, गरीबी को दूर करना। हम लोग साथ एकजुट रहेंगे, एक दूसरे के बात साथ बात को रखेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तभी हम आगे की ओर बढ़ सकते। अपनी बात अपने पास रखेंगे तो कभी एक दूसरे को बारे में जान भी नहीं पाएंगे और बता भी नहीं पाएंगे। इस प्रकार हम लोग एक दूसरे को शेयर करना सीखेंगे, तभी हम जैसे बताएंगे तभी दीदी जान सकती है कि आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या चीज़ का जरूरत है। तो हम लोग समूह में जुड़े तब से हम लोग दीदी लोग, पहले तो यहाँ के लोग के पास पैसा नहीं था, तो जो बड़े कार्य करते थे, शादी ब्याह हो गया तो वे लोग जमीन उमीज को बंधक रख देते थे, या फिर अचानक बच्चा लोग को तबीयत खराब हो जाता था तो किसी से पैसा मांगने पर भी वे रहने पर भी बोल देते थे नहीं है पैसा, नहीं देंगे। पर हम लोग जब से समूह में जुड़े तब से हम लोग को जब चाहे, तब रात हो या दिन हो, जब चाहे हम लोग जाएंगे और समूह में कह सकते हैं कि हमको इतना पैसा का जरूरत है, और हम लोग पैसा निकाल से अपना बच्चा को सही टाइम में इलाज करवा लेते हैं। इस प्रकार हमें सभी को जुड़ के बहुत सारी लाभ भी मिली। हम लोग को कहीं बाहर की ड्राइव में भी गए, बाहर बाहर देखे कि महिला में जुड़ के कैसा करना चाहिए। जब से हम लोग महिला में एकजुट हुए, तब अपना से निर्णय लेने भी लगे। हम लोग सबसे पहले महिला मंडल में जुड़ने के बाद सबसे पहले हम लोग निर्णय लिए कि यहाँ जो हम लोग को मम्मी लोग हैं, दादी लोग हैं, उन लोग को पहले हम लोग जो साइन करना नहीं आता है मैम, उसको हम लोग साइन करना सिखाएंगे। बाद दो दो दीदी लोग मिल के उनको साइन करना सिखाएं। यहाँ 3-4 ही दीदी लोग हैं जिनको आँख के प्रॉब्लम से वो साइन करना नहीं चाहती है, न तो बाकी बात दीदी जो अनपढ़ भी है वो लोग भी साक्षर हैं, वे साइन करना जानती है। उस बाद फिर हम लोग बोले चलो हम लोग तो साइन करना सीख लिए, पर जब हम लोग गांव इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, नशा मुक्ति का अभियान चला है, तो हमारे गांव में कितने सारे लोग आते हैं कि नशा मुक्ति अच्छे की ओर ही लोग बढ़े, तो हम लोग क्यों ना और अच्छे की ओर ले जाए हमारे गाँव को, साफ सफाई की ओर। सबसे पहले तो हम लोग महिला मंडल में जुड़ने से हम लोग पहले सोचे कि चलो हम लोग महीना में एक दिन पूरा गाँव का भ्रमण कर दें, पूरा गाँव को साफ करेंगे। फिर बोले नहीं, महीना में अगर करेंगे तो हमारे यहाँ तो घास फूस पेड़ पौधा है ही, उससे पुआल सब हम लोग का रहता ही है, उससे और ज्यादा गंदगी होते रहता है, नहीं हम लोग इसको सप्ताह में करेंगे। सप्ताह के बाद मिले नए, जब हम लोग इसको सप्ताह में करेंगे काहे नहीं, इसको हम लोग थोड़े ही थोड़े ही रोक हर रोज करेंगे तो काहे नहीं साफ हम लोग का गाँव होगा। हम लोग सारे लोग यहाँ हर रोज निकलने लगे, यहाँ तक पुरुष लोग भी निकले, बच्चा लोग भी निकले, और उसके बाद साफ सफाई करने लगे। इस प्रकार हम लोग सभी लोग सोच रहे हैं इसको हम लोग डेली साफ करेंगे तो अच्छा होगा।
1: चलिए, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: कार्यक्रम में हमारी बातें हो रही थी आरा केरम गांव की ग्रामीण महिला बहन सीमा देवी से। श्रोताओं, सचमुच ऐसी महिलाओं से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि हम अपने राष्ट्र, समाज, गाँव और परिवार के विकास के साथ साथ खुद के विकास पर विशेष ध्यान दे सकें। बस जागरूक रहकर सरकार द्वारा दी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए विकास में अपनी भागीदारी निभाएं और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में भी भागीदार बनें। तो श्रोताओं, इस बातचीत के साथ ही हमारे आज के आओ साथ चलें कार्यक्रम का वक्त भी अब यहीं समाप्त होने को है। कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा को आज दें विदा। नमस्कार।

श्रोता मित्रों आप सुन रहे थे आओ साथ चलें, प्रस्तुति नूतन प्रसाद की थी, स्वर सिंधु मिश्रा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आपको बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। 4:35 से सुनेंगे आप सांझ सरगम। शाम 5 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार। युववाणी, चर्चा भारतीय युवा और फुटबॉल, इतिहास में आज का दिन। प्रस्तुत करता है गौरव कुमार पांडे। साथियों, श्रमिक लोक औद्योगिक प्रसारण आप सुनेंगे 5:30 से गंगा दशहरा। स्वस्थ तन के लिए संतुलित जीवन शैली अपनाएं, प्रस्तुति है प्रशांत गौरव की। और शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 कार्यक्रम खेती बाड़ी आप सुन सकते हैं, चर्चा मिट्टी स्वास्थ्य और परीक्षण। भेंट करता होंगे संजीव कुमार लाल। साथ ही हमारी दुनिया आप सुनेंगे 6:30 से चर्चा कामकाजी महिलाओं का दोहरा संघर्ष, प्रस्तुति है संजीव कुमार लाल की। शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार। 7:11 से जिले में आजकल 7:15 आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम उरांव भाषा में, प्रस्तुत करता है प्रदीप कुमार। रात्रि 7:45 प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। और रात के 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनी गंधा। 8:30 सुर्खियों में

रात के 10 बजे सुनहरी यादें और 10:30 से आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम, कलाकार होंगी सबिता राय। ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी। श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

साथियों, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से 4:35 और 30 सेकंड कार्यक्रम सांझ सरगम में हमारे तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। रितेश का नमस्कार स्वीकार करें साथियों।

लेकर हम दीवाना दिल, आप सुन रहे थे फिल्म यादों की बारात में किशोर और आशा भोसले को, संगीतकार राहुल देव बर्मन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सांझ सरगम।

0: पर दिल से प्यारे लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म गरबा में, संगीतकार राहुल देव बर्मन। श्रोताओं, हम सुन रहे हैं कार्यक्रम सांझ सरगम। लेते हैं एक छोटा सा विराम, फिर हाजिर होते हैं।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: श्रोतो, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सांझ सरगम। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में वित्त और वाणिज्य कर विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति और राजस्व संग्रह बढ़ाने पर गंभीर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बजट को सही तरीके से लागू करने और कमाई बढ़ाने के लिए नई तकनीक का उपयोग करने सहित कई जरूरी सुधारों के सुझाव दिए हैं। गिरिडीह नगर निगम के बोर्ड की दूसरी बड़ी बैठक आज नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में पूरी हुई। इस बैठक में राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, मेयर प्रमिला मेहरा, डिप्टी मेयर सुमित कुमार और सभी वार्ड पार्षद शामिल हुए। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रांची के राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल की राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों और कर्मियों के कौशल विकास को बढ़ावा देना और सुशासन को मजबूत करना है। देवघर के नए उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने आज तड़के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण किया है। कार्यभार संभालते ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में आगामी श्रावणी मेले के सफल आयोजन को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत राज्य के 50 छात्रों का एक दल मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गया है। इन छात्रों को धनबाद स्थित IIT ISM से IIT इंदौर भेजा गया है, जहां वे वहां की संस्कृति, शिक्षा

0: और परंपराओं को करीब से समझेंगे। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में हुए जमीन विवाद और गोलीबारी में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने आज दोपहर अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कार्रवाई की जानकारी दी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: साथियों, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम के 5:02 हुए हैं। कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे। प्रस्तुत करता है गौरव कुमार पांडे और आज इस कार्यक्रम को पेश करेंगे उदय और श्रेया।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और पॉजिटिविटी से भरे होंगे। तो आ जाइए रेडियो के करीब, क्योंकि आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवानी। आज मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त श्रेया,
1: और मैं उदय,
0: और आपको हमारे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, यूँ तो हर दिन खास होता है, लेकिन आज का दिन और भी खास है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड फुटबॉल डे। दोस्तों, फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों की भावना है। मैदान में जब गेंद घूमती है तो दिलों की धड़कन तेज हो जाती है।
1: दोस्तों, फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो भाषा, संस्कृति और देश की दीवारों को तोड़कर लोगों को एक साथ जोड़ देता है। चाहे बच्चे हो या बड़े, घर को किसी फुटबॉल को देखकर उसका अलग जुनून मिलता है। दोस्तों, फुटबॉल की शुरुआत लगभग 2000 साल पहले मानी जाती है, लेकिन आधुनिक फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और आज ये दुनिया का लोकप्रिय खेल बन चुका है।
0: बिल्कुल उदय, और जब बात फुटबॉल की हो और हम महान खिलाड़ी का नाम जैसे लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या नेमार जूनियर का ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन खिलाड़ियों के मेहनत, टीम वर्क और सेल्फ कॉन्फिडेंस ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है।
1: फुटबॉल के बारे में एक और खास जानकारी बता दें जो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी है, वो है स्टेमिना। गेम के दौरान प्लेयर्स 10 से 12 किलोमीटर दौड़ते हैं, जो उनकी फिटनेस का बेहतरीन एग्जाम्पल है। और सबसे खास बात, फुटबॉल के लिए आपको ज़्यादा इक्विपमेंट की नहीं चाहिए, चाहिए तो बस एक गेंद और थोड़ा सा मैदान।
0: बिल्कुल दोस्तों, एक समय था जब भारत में क्रिकेट का क्रेज काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन आज फुटबॉल भी युवाओं में लोकप्रिय होते जा रहा है। इसका सबसे बड़ा श्रेय उन मेहनती खिलाड़ियों को जाता है दोस्तों, जो जुनून के साथ मैदान में खेलते हैं।
1: और बात फुटबॉल की हो ही रही हो और महान खिलाड़ी सुनील छेत्री की ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने भारत में फुटबॉल को एक नया दर्जा दिलाया है।
0: बिल्कुल दोस्तों, हम युवा आजकल अपना अधिक समय मोबाइल, सोशल ऐप्स या डम स्क्रॉलिंग में बिता देते हैं। हम ऐसे खेलों के प्रति थोड़ा झुकाव लाना चाहिए, और इससे कई बेनिफिट्स भी होती है। आप सिर्फ फिजिकली फिट नहीं रहते, बल्कि आपका दिमाग भी एक्टिव रहता है। साथ ही अगर फुटबॉल को एज अ करियर चूज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी काफ़ी स्कोप है दोस्तों।
1: साथ ही भारत में अब फुटबॉल के लिए कई लीगल टूर्नामेंट्स भी होते हैं, और कई सरकारी संस्थान भी युवाओं को खेल के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि एक स्वस्थ युवा ही देश का भविष्य बनता है और निर्माण करता है।
0: तो दोस्तों, आपके अंदर अगर फुटबॉल का जुनून है तो अपने सपनों को मैदान तक ज़रूर लाइए, क्योंकि हर बड़ा खिलाड़ी छोटे मैदान से ही शुरुआत करता है। और एक प्यारे से गीत से पहले आप ये ज़रूर याद रखें कि जीत सिर्फ ट्रॉफी की नहीं होती, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की भी होती है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे समर्पण का।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, युवानी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम अपने कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं बेहद ही खास विषय पर, इतिहास में आज का दिन के बारे में। दोस्तों, 25 मई 1961 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक ऐतिहासिक भाषण में दशक के अंत तक इंसान को चांद पर सुरक्षित रूप से भेजने और वापस लाने की अमेरिकी लक्ष्य की घोषणा की थी।
4: दोस्तों, साथ ही 1977 में सेंचुरी फॉक्स ने पहली बार स्टार वॉर्स फिल्म रिलीज़ की थी, जिसने आगे चलकर पॉप संस्कृति और सिनेमा जगत में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया था।
3: दोस्तों, 25 मई 2008 में नासा का फिनिक्स मार्स लैंडर सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था, जिसका उद्देश्य लाल ग्रह पर पानी की मौजूदगी और सूक्ष्म जीवों के अनुकूल वातावरण की खोज करना था।
4: दोस्तों, साथ ही 25 मई 2011 को 25 वर्षों तक प्रसारित होने वाली बेहद प्रभावशाली अमेरिकी टेलीविजन कार्यक्रम द ओपरा विनफ्रे शो का अंतिम एपिसोड प्रसारित किया गया था।
3: दोस्तों, बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा, पर आइए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों, आज के भाग दौड़ भरी भरी ज़िंदगी में अगर हमारे आसपास मौजूद युवा से सवाल करें कि उनमें से कितने स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, तो शायद ही कुछ लोग एग्री करें।
1: लेकिन क्या आप जानते हैं कि थोड़ा सा खेल कूद हमें कितनी सारी परेशानी से बचा सकता है? इससे न सिर्फ आपका शरीर फिट रहेगा, बल्कि दिमाग भी तेज रहता है। चाहे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन या महज रनिंग और साइकिलिंग हमें स्वस्थ रहने में काफ़ी मदद करता है।
0: बिल्कुल, ये हमें अनुशासन, टीम वर्क और आत्मविश्वास भी सिखाते हैं। मैदान में हार जीत तो होते रहती है दोस्तों, मगर असली जीत होती है खुद से।
1: दोस्तों, अगर आप सिर्फ 30 मिनट निकालकर फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करें तो शरीर में कई ऊर्जा आती है। दोस्तों, भारत में स्पोर्ट्स का क्रेज बढ़ रहा है और ऐसे में हम थोड़ा सा समय खेल को ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, हमें खेल के साथ साथ अपने सड़क सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम युवा हैं और हमारी रफ्तार तेज है, पर ये तेज रफ्तार कहीं हमें नुकसान की ओर ना ले जाए। इसलिए हमेशा सड़क पर चलते समय अपनी स्पीड लिमिट का ध्यान रखें, साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन करें।
0: बिल्कुल दोस्तों, हम युवा जो हैं वो रफ्तार के काफ़ी ज़्यादा प्रेमी होते हैं, मगर कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ दुर्घटना ऐसी होती है जो हमें लेसन सिखा ही जाती है। तो आप खुद का भी ख्याल रखें और अपने साथ बैठने वाले पायलन का भी ख्याल रखें।
1: दोस्तों, सिर्फ सामने वालों का ख्याल रखना ही जरूरी नहीं है, रोड पे चल रहे जीव जंतुओं का भी हमें ख्याल रखना है, क्योंकि वो भी हमारी तरह जीवित है और उनका भी ख्याल रखना हमारा फर्ज है। और दोस्तों, इसी बात के साथ अब अपने दोस्त उदय
0: और श्रेया
1: को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

साथियों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 5:30 होने वाले हैं। आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रमिक लोक। प्रस्तुत करता है प्रशांत गौरव और इस कार्यक्रम को पेश करेंगी आज आकांक्षा और प्रीति कुमारी।

0: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम श्रमिक लोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी जानकारियों के साथ आज मैं हूँ प्रीति और मेरे साथ है आकांक्षा।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रमिक साथियों को आकांक्षा का भी नमस्कार। दोस्तों, गर्मी तो बहुत बढ़ती ही जा रही है और ऐसे में अपना ध्यान आपको रखना है और खूब सारा पानी पीना है। और प्रीति, साथ में आपको भी मेरा नमस्कार।
0: चलो नमस्कार, ठीक है। और जैसे कि तुमने पानी पीने की बात की, तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि पानी पीजिए भी और पानी बचाइए भी।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि गर्मी में वैसे ही पानी की किल्लत हो जाती है, तब जल संरक्षण का महत्व जो है वो हमें समझ में आता है।
1: बिल्कुल, वैसे दोस्तों हम भारत के लोग हमेशा से ही जल के महत्व को समझते हैं, तो इसलिए यहाँ नदियों की पूजा भी हम करते हैं ना प्रीति, और जिसमें पहला नाम आता है गंगा का।
0: बिल्कुल सही कहा दोस्तों, गंगा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी भारत की जीवन रेखा मानी जाती है, और इसलिए माँ गंगा के धरती पर अवतरण की तिथि को हम गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं।
1: बिल्कुल, और माना जाता है कि गंगा का जल पवित्र पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, इसलिए यह पर्व अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। साथियों,
0: गंगा दशहरा का पर्व केवल पूजा और स्नान तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह हमें गंगा की स्वच्छता और संरक्षण का संकल्प लेने की भी प्रेरणा देता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने प्रीति, गंगा दशहरा भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपरा का महत्वपूर्ण पर्व है, और यह पर्व हमें भक्ति, सेवा, दान और प्रकृति के साथ उसका सम्मान का भी संदेश देता है। माँ गंगा भारतीय जीवन और संस्कृति की आत्मा है।
0: तो चलिए आज इस पावन दिवस पर हम भी संकल्प लें कि हम गंगा की स्वच्छता और संरक्षण के प्रति गंभीर प्रयास करेंगे।
1: बिल्कुल दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें और इसके लिए हमेशा प्रयासरत भी रहें, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है संतुलित जीवन।
0: बिल्कुल सही कहा, और जब हमने बातें की हैं गंगा पर इतनी सारी, तो मुझे लगता है कि माँ गंगा के ऊपर
1: पहले
0: गीत
1: हम लोग
0: सुन लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, आगे बढ़ने से
0: सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार।

0: Reporting.
1: श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। दिल्ली से विशेष कार्यक्रम के लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र।

0: practitioners. His advocacy efforts
1: Shri
0: have borne fruit.
1: Haricharan Shaikia, Kala Satriya Nitya.
2: Satriya, Assam ki ek suprasiddh kala. Aur हरिचरण शैकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं, वीर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रिय कला का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते जी, आप
0: सत्रिया डांस बिफोर Prime Minister and Second President Dr. Sarvepalli Radhakrishnan also. He performed the Bhargeet with Mani Ramga and Mokhtar at All India Radio in 1948.
1: Professor Vempati Kutumb Shastri
2: 86 साल के शास्त्री जी
1: साहित्य एवं शिक्षा
2: विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का, और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हुए।
0: प्रोफेसर वेम्पटी कुटुंब शास्त्री has authored and edited 15 books and more than 50 research papers. He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
1: Professor Shafi Shauk साहित्य एवं शिक्षा
2: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है। प्रोफेसर शफी शौक
0: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
1: श्री बलदेव सिंह खेल हॉकी कोच
2: बलदेव सिंह जी ने बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी इस राष्ट्र को दिए हैं। एक अनुभवी कोच है और आज इन्हें मिलता हुआ पद्मश्री और ये तालियां इस बात का प्रमाण कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।
0: श्री बलदेव सिंह जी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग द शहबाद मारकंडा हॉकी नर्सरी इनटू वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोडक्टिव सेंटर्स फॉर हॉकी
1: श्री यमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत कला नट संकीर्तन उनके पुत्र श्री यमनाम बिशन भोर सिंह
2: आप मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे और बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे सम्मानित होते हुए यमनाम यात्रा सिंह
0: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
1: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan Evam Engineering.
2: Ashok ji ne Bharat mein basmati chawal ki kheti ka kayakalp karne mein bahut bada yogdan diya hai aur is contribution ke liye आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का
0: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 पीएचडी एंड 5 एमएससी स्टूडेंट्स मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स
1: श्रीमती शिव शंकरी साहित्य एवं शिक्षा
2: अबारी श्रीमती शिव शंकरी जी की आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया और ख़ास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में और ख़ासतौर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है 30 से ज़्यादा उपन्यास 40 से ज़्यादा लघु उपन्यास 100 से ज़्यादा लघु कथाएं 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने
0: Shrimati Shivshankari completed her Bachelor of Science degree as a university rank holder, reflecting her early academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers

0: who were recorded in her own voice from the archives of the U.S. Library of Congress.
1: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
2: Sridhar ji, Akashwani ke up maha nideshak rahe aur vigyan ka ek lamba serial inhone banaya jo kisi bhi desh mein bana hua sabse zyada bada serial tha, vigyan serial.
0: Dr. Sridhar is in association with the National Council for Science and Technology Communication, Department of Science and Technology, developed the longest radio science series for children titled The Human Evolution, Manav Ka Vikas, broadcast in 18 Indian languages simultaneously through 200 radio stations. He has also played a central role in launching Gyan Darshan group of channels, the first 24-hour educational television channel.
1: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kala Azar.
2: Aap Kashi Hindu Vishwavidyalay ke Institute of Medical Sciences mein medicine ke manat professor hain. Sankramak rogon khas taur par visceral leishmaniasis kala azar mein aapne bahut karya kiya hai.
0: Professor Sundar is ranked at the top of the world in the field of leishmaniasis and kala azar from the year 2015 to date. He has published extensively in academic journals including NEJM and
1: Dr.
0: The Lancet,
1: S. G. Sushil Amma, Samaj Seva.
2: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और खास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है. 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफेद साड़ी इन्होंने पहनी है और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई.
0: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
1: श्री एन स्वामीनाथन, कला भक्ति संगीत.
2: तंजावूर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है.
0: He became a master of the art and served as Othuvar in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
1: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurved.
2: Dr. Thakral, Ayurvedic Paddhati ke Shalya Chikitsak hai aur Bharat mein Kshar Sutra Chikitsa ke Madhyam se कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन भी आगे बढ़ाई है.
0: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव्ड टू सैन फ्रांसिस्को से इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन. ही वाज इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो.
1: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी.
2: ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था. डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं. पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमन कुमार त्रिवेदी.
0: डॉक्टर त्रिवेदी सिंस द लास्ट 5 years ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल इनिशिएटेड अ प्रोग्राम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज.
1: श्री अरविंद वैद्य, कला थिएटर.
2: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच, हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है. काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ है.
0: Shri Vaidya founded the Natya Sampada, his own production company, through which he produced, directed and acted in more than 75 full-length plays. Each work carried the quiet weight of dedication, gathered

0: नारायण व्यास, पुरातत्व विज्ञान।
1: डॉक्टर नारायण व्यास विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है। खास तौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है।
2: Dr. Vyas was associated with the National Archives of Indian Historical Record Committee, domain expert member in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Award from the government of Madhya Pradesh in
0: 2019. Professor Gambhir Singh Yonzan, Sahitya evam Shiksha.
1: Gambhir Singh ji, Darjeeling पहाड़ियों के एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्री, शिक्षाविद, पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है।
2: प्रोफेसर योनजोन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग। A passionate advocate of scientific temper and environmental awareness, he led a six-year conservation movement that was a huge, huge success.
0: Shri Halley Var, Samaj Seva.
1: अब बारी हैली वार जी की। आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम हैं।
2: Shri Ward has spent more than 50 years nurturing and building the iconic living root bridges of the East Khasi Hills. Since the age of 10, he has meticulously guided the aerial roots of the Ficus elastica tree to create durable living structures. His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
1: और अब सचिव महोदय आते हुए, चूंकि ये अंतिम सम्मान था आज का, और राष्ट्रपति,
0: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। धन्यवाद महोदय।

0: can see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: There is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: So please pay your attention, please. I request all the award winners to move towards your right side. The second part of this ceremony.
1: आकाशवाणी से उसका आंखों देखा हाल भी सुनना ना भूले. तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र कमल सिंह और हेमराज मीणा ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस नमस्कार
3: अभी आप राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे विवरण दे रहे थे महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया

0: जीवन शैली की।
1: बिल्कुल। और संतुलित जीवन शैली तभी बनेगा जब हम अच्छे से खान पान करेंगे, यानी समय पर जागना है, समय पर सोना है, हर काम जो है ना वो समय पर करना है, समय पे हमें भोजन करना है और नियमित हमें जो है ना व्यायाम करना है।
0: बिल्कुल, और अपने आप को अपडेट रखिए, भोजन भी संतुलित होना चाहिए, जैसे मौसमी फल, दालें, अनाज। कहने का मतलब है हर वो चीज जो आपके शरीर के लिए जरूरी है आहार में जरूर शामिल करें। साथ ही थोड़ा समय अपने लिए निकालें, वो करें जो आपको अच्छा लगता है, इससे आप तनाव से दूर रहेंगे और जिंदगी का आनंद ले पाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा होता है ना आकांक्षा कि हम काम तो करते रहते हैं लेकिन काम में अपने आप को
1: भूल जाते हैं।
0: हम ये भूल जाते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या करना चाहिए,
1: हम दूसरे के जीवन पर आश्रित हो जाते हैं, यानी हम अपना खुद का जो जीवन शैली है ना वो बिल्कुल खत्म कर देते हैं।
0: तो अपने लिए जिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करें। कई बार होता है कि किसी की हॉबी होती है बहुत दूर दूर घूमना,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो आप समय निकालें घूमने फिरने चले जाएं। या अच्छा खाना बनाना भी हॉबी होती है तो समय निकाल कर
1: अपने लिए कुछ स्वादिष्ट खाना बनाएं, बिल्कुल
0: खाए पिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें तनाव से दूर रखती हैं। और आज के समय में जैसा माहौल है, काम का जो प्रेशर होता है, हम सभी तनाव में चले जाते हैं और हमारा जो सेहत है ये खराब हो जाता है। तो सेहत को अच्छा रखने के लिए अपने आप को अच्छा रखें, अच्छा खाना खाएं और खुश रहें।
1: बिल्कुल सही कहा आपने प्रीति। और प्रीति, अब वो वक्त हो चला है अपने साथियों से विदा लेने का, तो अपनी दोस्त आकांक्षा
0: और प्रीति को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोक, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम के 6 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। देवघर एम्स ने आज अपना 8वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया। समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सांसद निशिकांत दुबे शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने एम्स की विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में वित्त और वाणिज्य कर विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति और राजस्व संग्रह बढ़ाने पर गंभीर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बजट को सही तरीके से लागू करने और कमाई बढ़ाने के लिए नई तकनीक का उपयोग करने सहित कई जरूरी सुधारों के सुझाव दिए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल रूप से बदले हुए उस वीडियो को फर्जी बताया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि सभी आधार कार्ड धारकों को इलेक्ट्रिक साइकिलें मिलेंगी। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री और सरकार ने कोई ऐसी घोषणा नहीं की है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रमा खलखो ने आज धनबाद के सर्किट हाउस में जिला महिला कांग्रेस कमेटी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में संगठन को मजबूत करने और आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा हुई। प्रवीण कुमार प्रकाश ने खूंटी जिले के 25वें उपविकास आयुक्त के रूप में आज पदभार ग्रहण किया। उन्होंने निवर्तमान डीडीसी आलोक शिकारी कच्छप से कार्यभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के बाद नए डीडीसी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। गढ़वा जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और 44 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आम जनता को लू और तपती धूप से बचाने के लिए राज्य सरकार के मुख्य सचिव के निर्देश पर जिले भर में पानी की पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 6:02 हुए हैं, कार्यक्रम सुनेंगे खेती बाड़ी। प्रस्तुत करता है संजीव कुमार लाल।

खेती बाड़ी सुनवाइया भाई बहन मन के पूनम बहन कर जोहार और सबकर स्वागत भी है। तो हाल का खबर तो सब बहुत बढ़िया है, मुदा गत्तर में कटी खूब अगर बीमारी रह ले मन ठीक नहीं लगेला। और समय कर साथे आदमी कर गतर में तो नाना रकम कर जे विटामिन है चाहे जे पोषक तत्व है से मन कम होते जाएला से चलते बीमारी भी घर करे लगेला। और ओहे नियर हमरे देखीला कि खेती जे हमरे करीला जे हमर खेत है उकर में भी खेती कर कर के हमरे उकर जे कुछ भी पोषक तत्व मन है से मन के हमरे हमर जे पौधा मन है से मन उके बंजर बनाए देवे ना और उठकर उर्वरा शक्ति जे है से कम होते जाएला। और से चलते हमरे के माटी कर जांच कराए बहुत जरूरी है, कहे कि माटी कर जांच करवाए कोई बहुत बड़ बात नखे, आसानी से माटी कर जांच हमरे करवाए सकीला जेकर में है कि खेत में चार पांच ठाव में घास के हटाए के और उकर में वी आकार कर 6 इंच कर गाढ़ा करके और उकर से किनारी किनारी कर माटी के ले के हमरे उ माटी के जे सैंपल वाला जे बैग रहेला सिकर में लगाए के हमरे उके जांच लगिन हमरे दे सकेला। और माटी कर जांच कर एक बहुत जरूरी है, इकर से खेत कर जे उर्वरा शक्ति है सिकर हमरे के जानकारी भेटाएला और कौन खाद के कतई मात्रा में देवेक है सिकर भी हमरे के पता चलेला और फसल कर सही पैदावार लगिन हमरे के माटी जांच करे कर बहुत जरूरी है। और माटी कर पीएच कर भी इकर में पता हमरे के चलेला जेकर से खेती हमरे मन बढ़िया से कर सकेला और जे उपज है से बहुत बढ़िया ढंग से हो सकेला। तो हमरे के समय समय पर अगर जे खेत में बढ़िया उपज नहीं हुआ थे तो हमरे के माटी जांच सबसे पहले करवाए लेवेक है और जे कुछ भी उकर जांच में उकर कमी बेसी भेटा थे से कर हमरे के खाद मन के फिर प्रयोग करेक है और जे बगरा मात्रा में है तो उखो बताबें कि कृषि वैज्ञानिक मन की उकर में हमरे के माटी में का करेक है जेकर से हमर जे पैदावार है से बढ़िया ढंग से हो सके। तो सुनवाइया भाई मन बातचीत तो हमरे करते रहा बेखान तो हमरे और कही रही लेकिन हमरे गोटे कृषि गीत हमरे सुन लेती शुरू में इग्नेश कुमार और संगी मनकर गावल गीत है।

0: बढ़िया कृषि गीत रहे इग्नेश कुमार और संगी बनकर गावल रहे। और आगे हमरे एक जानकारी करब, जैसे हमें शुरू में हमरे बात कर ली कि जे हमर जे खेत है ओकर माटी कर जांच अगर हमरे करवाब तो खेती भी बढ़िया होगी। तो माटी कर जान है हरा खाद, तो कान यार हमरे माटी में हरा खाद कर प्रयोग करके बढ़िया उपज हमरे पाए सकीला, सेकर बारे में बताबें डॉक्टर सुधीर कुमार और बतियाबें संजीव कुमार लाल।
1: किसान साथियों जोहार नमस्कार। किसान साथियों, मिट्टी की उर्वरा शक्ति

0: बनी रहे ताकि आपकी पैदावार अच्छी हो, इसके लिए हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, गोबर खादों का हम प्रयोग करते हैं अपने खेतों में, ताकि मिट्टी की पोषक तत्व बनी रहे। और यदि मिट्टी की पोषक तत्व स्वस्थ रहेगी, मृदा हमारा स्वस्थ रहेगा, तभी हम अच्छे तरीके से फसल की उम्र ले पाएंगे, अच्छे तरह से हम फसल को बढ़वार कर पाएंगे और बढ़िया मुनाफा कर पाएंगे। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि मिट्टी की जान है हरी खाद। हरी खाद के द्वारा भी हम मिट्टी की उर्वरक शक्ति को काफ़ी अच्छे तरीके से हम बढ़ा सकते हैं और बढ़िया फसल का हम चयन कर सकते हैं और बढ़िया पैदावार ले सकते हैं। तो हरी खाद हम अपने खेतों पर ही कैसे तैयार करें, क्या विधियां हैं और हरी खाद क्या है और हरी खाद की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है और कैसे हम हरी खाद अपने खेतों पर उगाएं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं हमारे साथ डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, आप सहायक प्राध्यापक सहकनीय वैज्ञानिक हैं विरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में। डॉक्टर साहब स्वागत है किसान वाणी कार्यक्रम में।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, कहते हैं ना कि मिट्टी की जान हरी खाद है, हरी खाद की क्या उपयोगिता है और ये क्या है और मिट्टी के लिए क्यों जरूरी है?
1: देखिए ऐसा है कि आज का जो विषय है हरी खाद, ये बोलने में बड़ा छोटा शब्द है लेकिन हरी खाद वर्तमान समय की मांग है और हमारे देश की किसानों को यदि उनकी इनकम को बढ़ाना है और रसायन से मुक्त करना है तो इसके लिए हरी खाद का प्रयोग करना है। हरी खाद एक ऐसी खाद है जो किसी बाज़ार में नहीं मिलती है और न ही इसे किसी फैक्ट्री में बनाई जाती है। ये किसान के खेत में एक फसल उगाई जाती है जो दलहनी होती है और जिसे 40 से 45 दिन या 50 दिन के बाद उसी मिट्टी में दबा करके सड़ा करके खाद बना दी जाती है। और हरी खाद के बोलने का मतलब है कि जो हमारा मानसून का समय शुरू होता है उस समय दलहनी फसलों को लगाना है और उसी खेत में उसको मिट्टी में दबा देना है जिससे वो सड़ गल करके नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है और हरी खाद का काम करती है। इसमें हमें सावधानी ये रखना है कि वैसी फसलों का चयन करना है जो दलहनी हो, दूसरा वैसी फसल होनी चाहिए जिसकी बढ़वार ज़्यादा हो तथा वैसी फसल होनी चाहिए जिसकी तना शाखा या पत्ती की संख्या ज़्यादा हो तथा वैसी फसल होनी चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा गांठ बनाए और गांठ जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम या मिट्टी में नाइट्रोजन जमा करने का काम करता है। साथ ही ये फसल सूखा और अवधि होना चाहिए ताकि यदि बारिश नहीं भी हो तो खेत में सूखे नहीं और उस स्थिति में भी अपने आप को खड़ा करके मिट्टी में ज़्यादा ज़्यादा नाइट्रोजन बचाने का काम करे तथा एक कीट एवं बीमारी प्रतिरोधी भी होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें जो हो ऐसे गुण होना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे फसल को प्रभावित न करे या हानि नहीं पहुँचाए। इसके साथ ही हरी फसल जो दलहनी फसलें होती है इसकी बीज दर ज़्यादा होती है जिसके कारण ये क्या करते हैं कम से कम खरपतवार को जमने देते हैं या मिट्टी खाली नहीं होने के कारण या ढके होने के कारण वहाँ पे खरपतवार या हानिकारक जो होता है घास जर्मिनेट नहीं करते हैं या उगते नहीं हैं जिससे किसान भाइयों को आगे चल के खरपतवार से भी छुटकारा मिलता है।
0: जी, अब हरी खाद का जब हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं और हरी खाद हम लगाना चाहते हैं तो किस प्रकार इसके लिए हम फसल का चुनाव करें और बुआई का उपयुक्त समय कौन सा हो जाता है डॉक्टर साहब?
1: जैसा कि पहले भी हमने बताया कि हरी खाद का चयन करते समय मुख्यतः हमको ये ध्यान देना है कि यदि मेरा खेत वर्षा आधारित खेत है यानी कि हमेशा बरसात की खेती पर हम निर्भर करते हैं, बारिश पर निर्भर करते हैं, उस स्थिति में हमें जो है ढैंचा का प्रयोग करना है क्योंकि ढैंचा जो होता है बारिश सहन करने की क्षमता रखता है और साथ में ये हमारे झारखंड राज्य के लिए सबसे अच्छी हरी खाद मानी जाती है। इसके अलावा यदि ढैंचा नहीं करना है तो वहाँ पर मूंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, उड़द का प्रयोग कर सकते हैं या वहाँ पे जो होता है लोबिया का भी फसल का चयन कर सकते हैं। और जहाँ लगाने की बात है तो हरी खाद लगाने का सबसे उपयुक्त समय होता है अप्रैल का महीना और मई का महीना, या ये भी कह सकते हैं कि यदि अप्रैल में किसी कारणवश नमी खेत में नहीं थी तो नहीं लगा पाए हैं हरी खाद तो वहाँ पे आप मई में या मानसून आने के बाद जैसी मानसून आता है उस समय आप हरी खाद को लगा सकते हैं। हरी खाद यानी कि ढैंचा को खेत में आप लगा सकते हैं। इसके लिए क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले जो आपका खेत में नमी होना चाहिए, नमी यदि नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था है तो आप खेत को पटवन कर लें। पटवन करने के बाद उसमें क्या करना है कि भूमि को यानी मिट्टी को कम से कम 2 से 3 बार जुताई कर लें। जुताई करने के बाद उसमें जो है मिट्टी पट्टा लगा के बराबर कर लें और जो ढैंचा या सनई का जो बीज है उसको जो है खेत में मिला करके कवर्ड कर दें। उसके बाद जमने के बाद इसको जो है आगे हरी खाद के लिए प्रोसेस करनी होती है।
0: जी डॉक्टर साहब, हरी खाद का हमने फसलों का चयन कर लिया, लगा लिया, और जब हम इसको खेत में दें तो कौन कौन सी विधियाँ हैं? और डॉक्टर साहब, जो सबसे बड़ी बात हम आपसे जानना चाहते हैं किसानों के लिए कि हरी खाद से मिट्टी को किस प्रकार फायदा पहुँचता है?
1: देखिए, हरी खाद मिट्टी में देने की 2 विधियाँ हैं। एक विधि होता है कि जिस खेत में हमको हरी खाद का प्रयोग करना है उसमें मूंग, ढैंचा, बरसीम, लोबिया के फसल को लगा देना है। लगाने के लिए क्या करना है कि जो हमारा खेत तैयार हो गया, तैयार होने के बाद जो होता है 60 से 80 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करना है। उसके बाद वो जब जम जाएगा तो वहाँ पे 50 से 60 दिन में उस खड़ी फसल को रोटावेटर लगा करके या ट्रैक्टर लगा के उसी खेत में दबा देना है। दबाने के बाद उसमें मिट्टी जब ऊपर नीचे हो जाएगा या मिट्टी के साथ दब जाएगा, वहाँ पर बरसात हुआ पानी या सिंचाई के द्वारा पानी भर देना है। भरने के बाद वो जो होता है 7 से 10 दिन में सड़ना शुरू हो जाएगा और 20 दिन में पूरा सड़ करके खाद बन जाता है। और खाद जो बनेगा वो प्रकृति खाद है जिसमें किसी तरह का रसायन का अवशेषण नहीं है या रसायन मिक्सचर नहीं है। और वहाँ पे क्या होता है कि जब वो पूर्ण रूप से सड़ जाएगा तो कम से कम जो होता है कि 60 से 70 टन के बराबर जो होता है डिकम्पोज करने का काम, या 60 से 70 टन जो होता है जीवांश की मात्रा को बढ़ाता है। यानी कि कह सकते हैं कि रसायन की भाषा में कम से कम 5 से 7 बोरा यूरिया की बचत होती है 1 हेक्टेयर में। इसके अलावा दूसरी विधि जो है कि यदि हमारा उस खेत में हरी खाद नहीं लगाना है तो जो हमारे हरी खाद के फसल होते हैं, जैसे आप बताए थे मूंग या लोबिया या सनई बताए, उसकी पत्ती को या उसके जो अवशेष हैं दूसरे खेत से ला करके वहाँ पे ढक देना है और मिट्टी के साथ पलट करके उस खेत में जो है इनकॉर्पोरेट करना है या सड़ा गला देना है।
0: जी, तो इसके बहुत आर्थिक लाभ भी है, आपको जो रासायनिक खाद है उसके प्रयोग से भी बच जाते हैं और जो अतिरिक्त रूप से जो आपको आर्थिक भार पड़ता है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। अपने खेतों में ही हरी खाद हम बनवा सकते हैं और खेतों में ही उसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई प्रायः रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं और जब रासायनिक खादों का हम उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसमें कमी आने लगती है।
1: बिल्कुल
0: जी, तो हमारे साथियों को क्या कहेंगे साहब कि हरी खाद का उपयोग करें, मिट्टी को सेहतमंद बनाएं, लागत घटाएं और अपना लाभ बढ़ाइए?
1: किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि हरी खाद एक प्राकृतिक खाद है, तो प्रकृति खाद होने के कारण इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला होता है कि जो हम खाद को मिट्टी में डाल रहे हैं वो सड़ेगा, गलेगा तो वहाँ जीवांश की मात्रा बढ़ाएगा यानी कार्बन की मात्रा बढ़ेगा। जब कार्बन की मात्रा बढ़ेगा उस खेत की उपज क्षमता बढ़ेगी, जल धारण क्षमता बढ़ेगा, उसमें जो फसल लगाएंगे उसकी क्वालिटी गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा उसमें किसी तरह का जो है खर पतवार का प्रकोप नहीं होगा। इसके अलावा मिट्टी की जब स्वास्थ्य सुधर जाएगी तो किसान की स्थिति भी सुधरेगी, क्योंकि मिट्टी से ही जो फसल का उत्पादन बढ़ता है। इसलिए हमारा सुझाव होगा किसान भाइयों, आप अपने खेत में हरी खाद का प्रयोग जरूर करें, इससे फायदे ही फायदे हैं, घाटा बहुत कम है।
0: जी किसान साथियों, हरी खाद के बहुत सारे फायदे हैं और हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि मिट्टी की जान है हरी खाद, और मिट्टी को ये सेहतमंद बनाता है। आप रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव भी आते हैं और जो पैदावार होती है उसका भी उसमें प्रभाव दिखता है। और आजकल आप जान रहे हैं बीमारियाँ कितनी बढ़ रही हैं रासायनिक खादों का, हम रासायनिक दवाओं का हम उपयोग करते हैं और स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। तो अपने खेतों में ही हरी खाद आप लगाएं। कौन से फसलों का चयन करना है डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से बताया, भूमि की तैयारी कर लीजिए और कम खर्च में आपको वहीं पर एक खाद मिल जाता है और आपको आर्थिक लाभ भी मिलती है, फसल भी बढ़िया आप लगाते हैं और खाद से, बाहर के खाद से आपसे उससे आपका बचाव हो जाता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि बड़ी अच्छी आपने बात बताई कि हरी खाद कैसे लगाएं और कैसे अपने खेतों में इसका उपयोग करें। आज आप इस कार्यक्रम में आप बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक वर्षा कृषि विश्वविद्यालय किसानों से आप रूबरू हैं, आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।

इखन हमरे बहुत बढ़िया जानकारी कर ली कि माटी कर जान है के हरा खाद जेकर में कि ढांचा होलक चाहे फिर उरीद होलक चाहे मसूर होलक ये सब के लगाए के हमरे हरा खाद बनाए सकेला और उकर से हमर माटी कर उपज और बढ़िया ढंग से हो सकेला। इकर बारे बतात रहे डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह और बतियात रहे संजीव कुमार लाल। तो अब हमरे कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए गोटे कृषि गीत हमरे सुनब देवदास विश्वकर्मा और संगी बनकर गावल है।

और हमरे किसान भाई बहन मन कते मेहनत हमरे करेला और हमरे देखेला कि जब उकर उपज जब बढ़िया होवेला तो मन कते खुश रहेला हमर, और मन भी खुश रहेला, और हमरे जे खेती करेला उकर से अगर मुनाफा होवेल तो और भी हमर मन खुश रहेला और परिवार भी हमर बहुत बढ़िया चलेला। लेकिन उकर से पहले हमरे के चाही कि जैसे एखन हमरे कुछ देर पहले हमरे बात करत रही कि माटी के जान है के हरियर खाद, और ई जे खाद है वो हमरे आसानी से हमरे जे मई महीना में है अप्रैल में है अगर उके हमरे बुन देवा थी तो और भी बढ़िया रही, जैसा नहीं कहे ना जैके ढैचा भी कहे ना उके हमरे अगर बुन देवा थी तो उके फिर जुताई करके फिर उके हमरे अगर माटी में उके बढ़िया ढंग से अगर हमरे उके मिलाए दे और उस साइड के अगर माटी में मिल के वो बढ़िया खाद बन जाई और उकर से और भी बढ़िया उपज हुई और उसन में अगर बढ़िया खेती हुई तो किसान भाई बहन बनकर चेहरा में जो मुस्कान आवी सके तो हमरे देख के हमर मन भी हरियर हो जाए। तो वो जे उमन कर मन कर जे खुशी है से उमनक खेत में दिसेला और बढ़िया ढंग से हमरे के खेती भी करे है और उत्साह भी बढ़ाए है। हमरे देखेला कि एखन जे भी रासायनिक खाद कर जे हमरे उपयोग करेला से चलते हमर शरीर में भी उकर गलत प्रभाव पड़त है। उपज तो बढ़िया हुआ थे लेकिन सब्जी मन भी बगरा देरी तक नहीं रह सकेला और बगड़ जाएला सब्जी मन। उके अगर हमरे फ्रिज में भी रख देवा थी होलो दूसर दिन देखा कि उगो गल जाई, लेकिन अगर हमरे गोबर खाद कर केचुआ खाद कर उपयोग अगर करके अगर हमरे खेती करेला तो हमरे देखेला कि उस सब्जी मन कर स्वादो बढ़िया रहेला और वो बगरा दिन तक उके हमरे रख भी सकेला और उकर से हमर जे स्वास्थ्य है वो भी बहुत बढ़िया रहेला। तो जे किसान भाई बहन बहन मन है से मन अगर गोबर खाद कर अगर उपयोग करवाए तो बहुत बढ़िया रही, और साथे साथे केचुआ खाद मन भी घरे में हमरे बनाए सकेला जे हमरे तो छगरी पटरू घरे में हमरे रखीला। अगर हमरे खेतीहर है तो हमरे मन पशुपालन में भी हमरे जोर देवेला, मुर्गा मुर्गी होलक चाहे पशुपालन तो हमरे बढ़िया से खाद भी हमरे बनाए सकेला। तो बातचीत तो होते रही और कार्यक्रम के आगे भी बढ़ाए है तो खेती बाड़ी करबे रहिए से रहला और अब हमरे और करेला हमारी दुनिया कार्यक्रम कर। तो हमारी दुनिया कार्यक्रम में जे भी सुनवाइयाँ हमारी दुनिया कार्यक्रम के हैं सब भाई बहन मन के फिर से स्वागत है। तो हमरे देखेला कि एखन कर समय में परिवार के बढ़िया ढंग से चलाएक लगिन और परिवार के बढ़िया और छुआ पुता मन के भी बढ़िया ढंग से शिक्षा दीक्षा देवक लगिन। पति के खाली कमाले नी पूरा होएला, उकर में घरनी के हो कमाएक बहुत जरूरी रहेला। पति पत्नी अगर मिल के दुयो काम करत हैं तो घर भी बढ़िया चली और छुआ मत पुता मन के जे भी हमार शिक्षा लगिन जे पैसा कौड़ी कर जरूरत होवेला से कर भी जोगाड़ बढ़िया समय से हो जावेला। लेकिन पत्नी के चाहिए कि अगर हमरे पत्नी के समय देवब तबे वो भी पैसा कमाएक लगिन दुई पैसा कमाएक लगिन वो बाहर निकली। और एखन कर तो ऐसा समय है कि पति पत्नी अगर नहीं कमाते हैं तो परिवार चलाए कटिक मुश्किल भी हो जाएला का। लेकिन कि महंगाई भी हर तरह से बढ़ भी जाए है से कर चलते दुयो कर सहयोग से है जे परिवार है से कर गाड़ी बढ़िया ढंग से चल सकेला। लेकिन हमरे के समझदारी भी होवे चाहिए जे परिवार में और भी जे भी सदस्य हैं चाहे उकर में हमार परिवार में जे भी हैं माए बाप हैं चाहे फिर पति के भी ई नखे सोचे कि नहीं ई तो औरत कर है काम है के और वो है करी खाना बनाए उकरे काम है के और लुगा धोए भी उकरे काम है के छुआ मन के पढ़ाए लिखाए उमन के पढ़ुआ एक सांझ बेरा हाथ गोड़ धुआ एक मालिश करे एक सब चीज अगर घरनी के रहे काम है ईसन करके अगर काम के अगर हमरे बंटवारा कर देवा थी तो उकर से का हुई कि जे पत्नी है से घर में है फसल रह जाई और वो बाहर कर काम के नहीं कर पा रही। तो समझदारी यह में है परिवार वाला मन के चाहे पति कर भी कि उकर हमरे सहयोग करे और सहयोग कर ले का हुई कि दुई

0: भी आवी और परिवार बढ़िया ढंग से चली। और हमरे देखिएला कि जे घर में माए बाप हैं तो छुआ मनकर परवरिश बहुत बढ़िया से हो जाए। दादा आजा आजी जे के हमरे कहिला कल गिन की छुआ मन आजा आजी से है बहुत बढ़िया से रहना और उमन उकरे से संस्कार भी सीखेना और संस्कार सीखेना और आगे चल के उसन छुआ मन बहुत बढ़िया उमन के संस्कार भेटाएला और बढ़िया उमन करेना। तो परिवार के अगर मिलजुल के रहबें और पत्नी के अगर बढ़िया सहयोग रही तो बढ़िया आमदनी भी घर में हुई और परिवार बढ़िया ढंग से चली। तो बातचीत तो हमार होते रही लेकिन कार्यक्रम के भी आगे बढ़ाएक है तो आगे हमरे गोटे फिर हमरे गीत सुन लेती जेकर में कि पंच परगनिया लोकगीत है राजेंद्र प्रसाद और संगी मनकर गावल गीत है।
1: मोर पंच परगनिया कविता

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
4: तो एखन हमरे पंच परगनिया में गोटे जानकारी करब कि पंच परगनिया भाषा में स्वरचित कविता के बारे में बताबे राजकिशोर सिंह।
5: मोर पंच परगनिया कविता, गागुलिया घाटे एक धो आरो जाल फेंकब, गागुलिया घाटे एक धो आरो जाल फेंकब, झालुमालुक रूप धरी घट बारी आनक, झालुमालुक रूप धरी घट बारी आनक, अति जतने आनब मा मनसाग बारी, अति जतने आनब मा मनसाग बारी, दूध लावा देके मायक जागाब जागरी, दूध लावा देके मायक जागाब जागरी। बधय बधय चांद राजाक पूजा पाए के थिर करलय मन, बधय चांद राजाक पूजा पाए के थिर करलय मन, नाग देवी के बिछलाय के

और बढ़िया गीत कर साथे बेरा भी हिया सिरा थे, तो हमरे के चले के चाहिए तो हम बताए देवा थी कि ई कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लाल कर। तो सुनवाइया भाई मन चलत थी जोहार।

श्रोत आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया, हम बोल रहे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 7 बजे सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, उससे पहले सुनते हैं कुछ विज्ञापन संदेश।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोतो, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी की रांची केंद्र से, शाम के 7 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
8: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा, अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की वित्त और जल संसाधन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए तकनीक के उपयोग पर दिया जोर। देवघर एम्स का 8वां स्थापना दिवस सम्पन्न, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सांसद निशिकांत दुबे ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सराहा। मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में अगले 2 दिन आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी, कई हिस्सों में लू का भी प्रकोप। और रांची में चल रही राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन, अब तक 12 एथलीटों ने पक्का किया कॉमनवेल्थ गेम्स का टिकट। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें 2 को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री दिए गए। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला, जिसे उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने लिया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण मिला। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण और महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से नवाजा गया। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में 2 उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें संपन्न हुई। पहली बैठक में वित्त और वाणिज्य कर विभाग के साथ राज्य की वित्तीय स्थिति और राजस्व संग्रह बढ़ाने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बजट को सही तरीके से लागू करने और कमाई बढ़ाने के लिए नई तकनीक का उपयोग करने के सुझाव दिए। वहीं दूसरी बैठक में जल संसाधन विभाग की संचालित योजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं और पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने जैसे कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी काम समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। देवघर एम्स ने आज अपना 8वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया। समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सांसद निशिकांत दुबे शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने एम्स की विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना की। इस अवसर पर चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टरों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। इससे पहले भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने आज देवघर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल बांग्लादेशियों को भारत का वोटर बनाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ऐसा कभी नहीं होने देगी।
9: कांग्रेस और जेएमएम बांग्लादेशी को वोटर ही बनाने का प्रयास करते हैं, कामयाब नहीं। ममता बनर्जी जी इसी तरह से दौड़ती रही। कल डायमंड हार्बर मॉडल किस तरह से फ्लॉप हुआ, आपने देखा कि 1,00,000 से ज्यादा जो है पाल्टा का विधानसभा ने दी। और इस बार जो कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ बसाने का प्रयास और जेएमएम दोनों ने सुना।
8: गिरिडीह नगर निगम के बोर्ड की दूसरी बैठक आज नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार

0: की अध्यक्षता में पूरी हुई। इस बैठक में राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, मेयर प्रमिला मेहरा, डिप्टी मेयर सुमित कुमार और सभी वार्ड पार्षद शामिल हुए। मौके पर नगर विकास मंत्री ने कहा कि शहर के विकास के लिए अधिकारियों और जनता के प्रतिनिधियों के बीच तालमेल होना बहुत जरूरी है।
1: निगम की आज दूसरी बैठक निगम के सभागार में हुई। तमाम सम्मानित वार्ड पार्षद उपस्थित हुए। शहर की विभिन्न समस्याओं के बारे में समग्र चर्चा हुई और इस चर्चा के फलाफल में गिरिडीह को और बेहतर और सुंदर और विकसित बनाने की दिशा में निगम और निगम के तमाम साथी प्रयास रहे।
0: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रांची के राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल की राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी अधिकारियों और कर्मियों के कौशल विकास को बढ़ावा देना और सुशासन को मजबूत करना है। मौके पर मंत्री ने कहा कि इस डिजिटल लर्निंग और लगातार ट्रेनिंग के माध्यम से सरकारी योजनाओं को जमीन पर बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोहरदगा के सलगी चूल्हापानी में आज दामोदर महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दामोदर नदी के उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि प्रकृति की गोद में आकर उन्हें बहुत खुशी मिल रही है। राज्यपाल ने इलाके की पुरानी संस्कृति और धार्मिक पहचान को बचाने पर जोर दिया।
2: बल्कि जीवनदायिनी शक्ति है। दामोदर स्वयं भगवान कृष्ण का नाम है, इसलिए इस नदी के प्रति हमारी श्रद्धा केवल परंपरा नहीं बल्कि इससे हमारा एक गहरा आध्यात्मिक संबंध भी है।
0: केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत राज्य के 50 छात्रों का एक दल मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गया है। इन छात्रों को धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएम से आईआईटी इंदौर भेजा गया है। आईआईटी आईएसएम के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को वहां की संस्कृति, शिक्षा और परंपराओं को करीब से समझने का अवसर मिलेगा।
3: इसका मेन एम ये है कि डिफरेंट स्टेट को जाके उसका कल्चर के बारे में, उसका एक्टिविटी के बारे में झारखंड बच्चों को पता हो, एंड वो एक्वेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरमिक्सिंग इन द सोसाइटी। 50 बच्चे यहीं से जाए।
0: प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रमा खलखो ने आज धनबाद के सर्किट हाउस में जिला महिला कांग्रेस कमेटी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में संगठन को मजबूत करने और आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा हुई। रमा खलखो ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भी सरकार परिसीमन का बहाना बनाकर इसे टाल रही है। राज्य सरकार ने ईद उल जुहा यानी बकरीद के अवसर पर घोषित सरकारी छुट्टी की तारीख में बदलाव की अधिसूचना जारी की है। अब राज्य सरकार के सभी कार्यालयों और संस्थानों में 28 मई को बकरीद की आधिकारिक छुट्टी रहेगी। इससे पहले यह अवकाश 27 मई को तय किया गया था। गिरिडीह पुलिस ने खंडोली मोड़ से अपहृत तस्लीम अंसारी को 24 घंटे में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जंगल से सुरक्षित छुड़ा लिया है। एसपी डॉ. विमल कुमार ने बताया कि अपराधियों ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने एसआईटी गठित कर 5 अपहरणकर्ताओं को गाड़ी और मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और अब मौसम का हाल। राज्य में मौसम का दोहरा रूप देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गुड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। दूसरी ओर राज्य के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। डाल्टनगंज 44 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म शहर।

दर्ज किया गया। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में चल रही राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने नया इतिहास रच दिया है। शानदार प्रदर्शन के दम पर गुरिंदर सिंह, अनिमेश कुजूर, रवीना और सीमा सहित कुल 12 एथलीटों ने अब तक आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस बीच आज महिलाओं के 500 मीटर दौड़ में रिलायंस की सीमा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। पुरुष वर्ग की दौड़ में कर्नाटक के शिवाजी परशुरामम्मा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। लखनऊ में आयोजित दूसरी अखिल भारतीय बैडमिंटन और टेबल टेनिस क्लस्टर प्रतियोगिता में झारखंड पुलिस के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल दिखाते हुए राज्य के लिए कई कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा। अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की वित्त और जल संसाधन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए तकनीक के उपयोग पर दिया जोर। देवघर एम्स का 8वां स्थापना दिवस संपन्न। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सांसद निशिकांत दुबे ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सराहा। मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में अगले दो दिन आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। कई हिस्सों में लू का भी प्रकोप। और रांची में चल रही राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन। अब तक 12 एथलीटों ने पक्का किया कॉमनवेल्थ गेम्स का टिकट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इस अंक में आप सुनेंगे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे रांची संवाददाता।
1: राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची में आयोजित दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति और उनके प्रतिनिधि मंडल ने हिस्सा लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अक्सर देखने को मिलता है कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पाने के लिए आज भी झारखंड के युवाओं को दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। अपने संबोधन में राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन और शैक्षणिक कैलेंडर के सही तरीके से अनुपालन पर ध्यान देने को कहा। रांची के सीसीएल सभागार में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। मेले में केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों के लिए चयनित 132 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। कार्यक्रम में रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। रांची में आयोजित रोजगार मेला में सबसे ज्यादा 103 नियुक्तियां रेलवे सेक्टर में मिली। इसके अलावा डाक विभाग, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और भारतीय खाद्य निगम समेत कुछ अन्य विभागों से जुड़ी नियुक्ति पत्र युवाओं को दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं पर देश ने विश्वास किया है, आगे चलकर इन्हें अपनी जिम्मेवारियों का बखूबी निर्वहन करना होगा।
2: आज 19वें बाल में 51,000, मतलब देश के प्रधानमंत्री युवाओं को आगे बढ़ाना, और जिस तरह 51,000 लोगों का 47 स्थानों पर नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, वो भी सौभाग्यशाली है कि उनको नियुक्ति पत्र कोई डाक से नहीं मिल रहा है, कोई पोस्टल स्पीड पोस्ट से नहीं मिल रहा है, उनको नियुक्ति पत्र दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दे रहे हैं, और नियुक्ति पत्र पर प्रधानमंत्री की फोटो है। यह सौभाग्य है, जीवन भर के लिए उनके लिए एक एसेट है कि हमको नियुक्ति

0: पत्र देश के प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है।
1: आनंद मार्ग प्रचारक संघ की ओर से रांची में गुरुदेव आनंद मूर्ति का 105वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया।
2: परम आराध्य गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी का जन्मदिवस 105वां जन्मदिवस हम लोग मना रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। सुबह से अभी तक जो है हम लोग उनका जन्मदिवस मनाए, अभी हमारा शोभा यात्रा निकला है, उसके बाद से यहाँ पर बहुत तरह के कल्चरल प्रोग्राम होंगे, बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा, तब नारायण सेवा होगा, नारायण सेवा के बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा।
1: इस मौके पर संस्था के धर्म प्रचार सचिव विजयवर्धन ने बताया कि विश्व के 180 देश में गुरुदेव आनंद मूर्ति के सेवा कार्य और प्रचार प्रसार वर्तमान समय में चल रहे हैं।
3: आनंद मार्ग ग्लोबल संस्था है, ये 180 देशों में फैला हुआ है और इसको यूएनओ के द्वारा भी स्वायत्तता प्राप्त है और ये अपने सेवा क्षेत्र के लिए ही पूरे विश्व में माना जाता है आज गुरुदेव।
1: गौरतलब है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन 1921 में गुरुदेव आनंद मूर्ति का जन्म हुआ था, जिसे संस्था की ओर से आनंद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची।
4: अभी आप सुन रहे थे रांची जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

श्रोता सुन रहे थे जिले में आजकल। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 7:15 हुए हैं। आदिवासी अखड़ा उरांव भाषा में आप सुनेंगे, प्रस्तुत करता है प्रदीप कुमार।

0: नीम में लगदर आदिवासी अखड़ा एन हिकदन बिना लकड़ा
1: अरा एन हिकदन के मंजु बखला निमन हुरमारीन एम है तरती मोजरा तब बिना तिंगे नीन एकासे रह दी इतना तो बिड़ना चिच लिखा हिबड़ा लगी है मला
0: हाँ दई एनगा कोड़ेम रे एन बहरी उर्खनाती लगी का चपटा ओला लगी है मला
1: हाँ हाँ
0: जिया का एक एक अड्डा नू रा अबिद्दी
1: मानी बादी अकू पद्दा खिपनो आलर बालगनर का ई चान अजम लू लगा लगी तो नींद तिंगे लू एकासे लगी
0: हाँ मंजे दे एका बीरी बग्गे कुड़ना ताका तागरी अरा नाम बग्गू बेड़ा गुटी बहरी रादा थले आ बीरी नमह काया बग्गे कुड़ी काली खने लू लगी काली
1: अच्छा अच्छा
0: लू लगना की एन्ने लेखा लक्षण मनी एकासे का कुकनुंजना कुकगी घुमरारना पुतुरना घड़ी घड़ी आमोन का लगना गुट्टा काया चिच हेबड़ना लेखा कुड़ी काली
1: हाँ बिना कैनु बिरा आले नलख नंते नंते खल्ले नो कुक घुमरनार ना थी उकनर कानर चाहे तो खतरनार कानर
0: मानिम ईदिम हुरमिती खतरनाक मनी आंगे बचाओ नन्ना कई चाड़ रही
1: तो बिना तिंगे इंदिर इंदिर सावधानी उइना चाड़ रही ईयानु
0: अजम से बक अथर ई मंजुदे
1: तिंगे अंती
0: लोहाड़ी 12 बजे ती 3 बजे गुटी बाहरी माल उरखना चाहिए अम्मे बग्गे उन्ना चाहिए
1: अच्छा
0: नीदी कुल मलार आना चाहिए बहरी काना बिरी कुकन किचरी अरा गमछा ती छपरना चाहिए सूती किचरी अरा ढोरंग ढोपो किचरी अतना चाड़ रही
1: अच्छा बिना उनका कथा तिंगे आले सत्तू दही मठा अरा खुट्टा घी शरबत उन्ना इंदिर ईद मानिम कथा तली
0: अरे दई ईद तो अजम दो कथा तली सत्तू का

अक्कुर और उन्टा डंडी मिनोत राइसन उराव और असंगियर की पाड़का डंडी पसंद नंज करानर रांची मुराबादी थी शांति जीता सुशीला अरविंद सतीश सरिता खुशबू अरा पंकज।

0: संगियरो बेड़ा मंजा के रानी महती विदा हो ना गई तो निमंती गोहरार्दन का इन्नेला बग्गू अम ओना बिड़नाती बछरा अरा एड़पा ता मंडी अमखिन ओना
1: स्वस्थ रहा सुरक्षित रहा दो माखा।

0: श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा उराव भाषा में मंजू और वीणा के साथ। प्रस्तुतकर्ता थे प्रदीप कुमार। आकाशवाणी के हम रांची केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 7:45 हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से बुनियाद कार्यक्रम लेकर हंसते खेलते आपके घर आंगन में आ गया। हंसना खेलना इसलिए जरूरी है कि उससे आप खुश रहेंगे और पॉजिटिव सोच रखेंगे और इसी सोच के साथ बुनियाद कार्यक्रम को सुनेंगे, जिसमें हम नए नए कोर्सेज की आज चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से, पिछले एपिसोड में हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, जी हाँ, इसके बारे में बताया था। बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बताया था। इसके अलावा एक कोर्स और है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। और हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे, लेकिन उससे पहले दो बातें हम कर लें। बहुत सारे फोन कॉल्स आए जब हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बातचीत की थी। हाँ, डॉक्टर नीरज से हमने बातचीत की थी और जानकारियां दिलवाई थी। पूरे बिहार से फोन आया वैसे युवा साथियों का जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया था। अच्छा लगा, सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सोमवार के दिन बने रहना होगा इसी समय इसी मीटर पर। एकदम आपके लिए खोज कर ऐसे कोर्सेज को हम लाएंगे और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में ये कोर्सेज इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं आप युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए। जी हाँ, और तीन कोर्सेज हम बार बार कह रहे हैं, हमने बातचीत कर ली है बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी पर। ढेर सारे फोन आए हैं, सारे सवाल हमने रखे हैं। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एक नया कोर्स है, और आज जिस पर चर्चा करेंगे वो है फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, इस पर आज चर्चा करेंगे, विशेषज्ञ को बुलाएंगे। लेकिन फिर भी हम बार बार कहते हैं, राजेश बार बार कहता है कि भैया, छोटे छोटे भाई, बड़े बड़े भाई, बड़े बड़े चाचा, बड़े बड़े दादा, अब

0: 9900284318990 और एक वेबसाइट भी है www.gnsu.ac.in। ढेर सारे फोन कॉल्स आते हैं कि बहुत सुलभ कर दिया, अब सुनते सुनते जानकारियां मिल जाती हैं। किसी दूसरे माध्यम में तो पढ़ना पड़ता है, काम छोड़ना पड़ता है, और ये तो काम करते करते बाजा बज रहा होता है और जानकारियां मिल जाती हैं। धन्यवाद आपका कि आप इतना कंसर्न हैं इस कार्यक्रम से, क्योंकि हम आपके फायदे की बात करते हैं। बहरहाल चलिए आज बातचीत करते हैं फिजिशियन, हाँ, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, इस विषय में क्या पढ़ाई है, कितने दिन की पढ़ाई है, रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में अगर इसे इंट्रोड्यूस किया गया है तो क्या सिस्टम है, सारी चीजों पर बात करेंगे। चलिए आज के अतिथि से सबसे पहले जानते हैं उनका परिचय।
1: नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार, डायरेक्टर नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुहा।
0: उम्मीद है आप ठीक से होंगे। एक व्यक्तिगत सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। उस जमाने में, हाँ, ये कोर्स जो है ना, न कोविड था न कुछ और चीजें थी, तो इस तरीके के कोर्सेज को चुनने के लिए आपको किसने प्रेरित किया, क्या सोच थी उस समय?
1: नहीं, वो तो मैं बचपन में जब क्रिकेट देख रहा होता था या कोई भी स्पोर्ट्स देख रहा होता था, तो जैसे किसी खिलाड़ी को चोट लगी तो मैं देखा कि कोई जना आया, उसने कुछ लगाया, करा एक्सरसाइज, कुछ कराई, नौ खिलाड़ी वो फिर से खेल रहा है। तो उस वक्त मुझे लगा कि ये क्या है, तो पता चला कि ये फिजियो है। तो फिर मेरा उस वक्त से थोड़ा सा इंक्लिनेशन आया कि इस कोर्स के प्रति, कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए, और फिर जाके फिर मैंने ये कोर्स।
0: नीरज जी, जमाना बदल गया, बहुत पानी बह गया, हाँ, आज टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, और टेक्निकल पढ़ाई के विषय में क्या कहना चाहिएगा आप?
1: क्योंकि अब हर कोई चाह रहा है कि हमें इमीडिएटली पढ़ाई के बाद कुछ ना कुछ तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, और इसके लिए टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन, उसी के बाद ही हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे।
0: टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन फॉर जॉब, फॉर ए बेटर फ्यूचर, है ना? इसीलिए कहते हैं भैया टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, इधर उधर मत तको। इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ अगर आपने किया है तो हेल्थ सेक्टर में टेक्निकल पढ़ाई की भरमार है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, और आज चर्चा करने जा रहे हैं बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, हाँ, इस विषय में क्या, कहाँ, कैसे हो सकता है, कुछ भी बताएंगे। बहरहाल नंबर एक बार बताएं, फिर डॉक्टर नीरज से हम पूछेंगे बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के बारे में। नंबर नोट करें 9431899002 और 1800121001। डॉक्टर नीरज बताइए, हाँ, हमारे सुनने वालों को, युवा साथियों को, उनके माता पिता को बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज के विषय में।
1: हाँ, ये बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज ये 4 साल का कोर्स है, और इसमें जिस 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। ये एक बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव है MBBS का। जैसे इस कोर्स को करने के बाद जो फिजिशियन एसोसिएट होते हैं वो पेशेंट की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये दोनों काम करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजिशियन। यानी इनका काम है फिजिशियन को एसोसिएट करना, यानी फिजिशियन को असिस्ट करना। कई दफा ऐसा होता है, बहुत सारे दूर दराज के सेंटर होते हैं जहां पर प्रोफेशनल या हाईली प्रोफेशनल जो फिजिशियन की पहुंच नहीं हो पाती है, तो वैसे दूर दराज के सेंटर में, कम्युनिटी सेंटर्स में, ये फिजिशियन एसोसिएट अपना रोल अदा कर सकते हैं, जहां वो छोटी मोटी बीमारियों के लिए पेशेंट को देख के उनकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, और कंसल्ट करके जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं, जिस फिजिशियन के अंडर वो काम कर रहे हैं, उनसे कंसल्ट करके उनको वो इलाज भी दे सकते हैं।
0: कितने सीटों के साथ आपने इसकी शुरुआत की है इस यूनिवर्सिटी के अंदर?
1: ये हमने अभी 30 सीटों के साथ स्टार्ट किया है।
0: क्या एलिजिबिलिटी है?
1: हाँ, इसकी एलिजिबिलिटी है 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 45% मार्क्स एग्रीगेट।
0: कैसे बच्चे आ सकते हैं?
1: नहीं, जो बिल्कुल जो अपने सोसाइटी के लिए अपने समाज के कल्याण के लिए और

0: पेशेंट वेलफेयर के लिए जिनका मोटो है कि वो चाहते हैं कि हम समाज का कल्याण करें, हम पेशेंट का कल्याण करें, वो बच्चे इसमें एडमिशन लें, क्योंकि इसका मेन उनका रोल है पेशेंट वेलफेयर, पेशेंट ट्रीटमेंट, पेशेंट केयर।
1: अपॉर्चुनिटीज पढ़ने के बाद
0: इनकी अपॉर्चुनिटीज इतनी हाई डिमांड बढ़ी हुई है कि भारत में जैसे हम सबको पता है, आप लोग न्यूज़पेपर में भी, हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं कि डॉक्टरों की कमी है और अस्पतालों में इसलिए ट्रेंड फिजिशियन एसोसिएट की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक रिसेंट डेटा कहता है कि अभी तक 28% इनकी डिमांड बढ़ी है फिजिशियन एसोसिएट की हमारे अस्पतालों में। साथ ही मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों, इमरजेंसी सेवाओं और डायग्नोस्टिक सेंटरों में भी 90% तक संभावना है प्लेसमेंट की। और साथ ही साथ इनकी विदेशों में भी ऑप्शन है, जैसे इनकी यूके, यूएसए जैसे देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने की बहुत ही अच्छी संभावना है।
1: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूं राजेश और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर नीरज। जानकारियां दी जा रही है, एक नया कोर्स आया है, सिर्फ 30 सीट है, ओनली 30 सीट्स है, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज का, इसके बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। टेक्निकल पढ़ाई बार बार कहते हैं, जैसे पिछले एपिसोड में हमने बताया था आपको, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। ढेर सारे सवाल आए हैं, आने वाले सोमवार के दिन हम उसका उत्तर देंगे। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के विषय में आने वाले सोमवार को एकदम बताएंगे ही बताएंगे। फिलहाल आइए जानते हैं डॉक्टर नीरज से, जहां 30 सीट ही आया है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। सबसे पहले नंबर बता दें एक बार, 9431899002 और 1800121005। हाँ डॉक्टर नीरज, नया कोर्स आया है, हाँ सारा कुछ नया नया है, बच्चे नए होंगे, सब कुछ नया होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या तैयारी है आपके यहाँ ओवरऑल?
0: फिजिशियन एसोसिएट के लिए हमारे पास ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सारे अवेलेबल, जो हमारे पास क्लासरूम चाहिए वो हमारे पास है, जो लैब चाहिए वो हमारे पास है। इसके अलावा क्लिनिकल पेशेंट प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास अपना हॉस्पिटल NMCH हॉस्पिटल है, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो 1200 बेडेड हॉस्पिटल है लगभग, वहाँ हमारे बच्चों का हैंड्स ऑन एक्सपोजर होने हम कराएंगे हमारे बच्चों का। क्लासेस कराने के लिए टीचर्स के लिए हमारे पास अपने फिजिशियन एसोसिएट टीचर प्रोफेशनल्स हैं, साथ ही साथ जो मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास मेडिकल फैकल्टी, मेडिकल टीचर्स हमारे पास। चूंकि आपको पता है कि हमारा गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत ही बड़ा कैंपस है, इस कैंपस के अंदर हमारे पास सारी बेसिक सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, साथ ही साथ स्टाफ टीचर और उनके लिए भी एकोमोडेशन है, फ्लैट्स हैं, क्वार्टर्स हैं, और जो भी बेसिक नीड की जरूरत होती है सब हमारे कैंपस के अंदर मौजूद।
1: डॉक्टर नीरज, बहुत बहुत पहले तो बधाई कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और हमें पता है कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में जब तक पूरी तैयारी नहीं होती कोई कोर्स शुरू नहीं किया जाता। लेकिन एक सवाल हम बच्चों की तरफ से पूछना चाहते हैं कि बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल पढ़ाई, अंग्रेजी में बातचीत, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी जो लेकर आते हैं और यहाँ आकर, क्या उन बच्चों के झिझक को आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में तोड़ने के लिए कोई व्यवस्था, उनकी अंग्रेजी या कोर्सेज के बारे में जानकारी, या उनके ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कोई सिस्टम?
0: नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है सर आपने। नहीं, हमारे यहाँ हम लोग जैसे बच्चे हमारे एडमिशन होता है तो शुरू के एक महीने हम उनका सिर्फ इंडक्शन प्रोग्राम चलाते हैं, ताकि उनको हम इस कोर्स के बारे में अवगत कराएं। हम सिलेबस स्टार्ट नहीं करते हैं शुरुआत में, पहले हम कोर्स को अवगत कराते हैं, ब्रिज कोर्स काइंड यू आप कह सकते हैं, कि अभी चूंकि जस्ट वो इंटर पास करके इस प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन के कोर्स में आए हैं, तो उसका जो गैप है उसको हम लोग फुलफिल करते हैं। रहा बात इंग्लिश का, तो हमारे यहाँ के जितने भी टीचर हैं वो डुअल मोड में पढ़ाते हैं, दोनों मोड में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश, कम्युनिकेशन इंग्लिश की क्लासेस भी लगाते हैं बच्चों के लिए। और हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं सर, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं जब वो फर्स्ट ईयर में यहाँ आते हैं तब उनका उनसे आप पूछेंगे, जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनका क्या स्टैंडर्ड या क्या लेवल रहता है, और अभी उनका आप देखेंगे लेवल और स्टैंडर्ड, तो पीरियोडिकली दे आर इम्प्रूविंग देमसेल्व्स। और इस पे हमारे टीचर हम लोग बिल्कुल मिलजुल कर काम करते हैं, और हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि हमें बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है।
1: थैंक यू प्रोफेसर नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आप सबों के गाइडलाइन में जो बच्चे आएंगे, 30 बच्चे आएंगे, उनका सही मार्गदर्शन होगा, सही पढ़ाई होगी और करियर की नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी। अभी हमारी बातचीत चल रही थी बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, ये एक नया कोर्स आया है, इस पर सिर्फ 30 सीट है इंटरमीडिएट बायोलॉजी के लिए। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो नंबर डायल करें, टोल फ्री नंबर 1-800-121-0051 और दूसरा नंबर है 9431899002, ये नंबर है। और अगले एपिसोड में हम बताएंगे एक नया कोर्स आया है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसके विषय में तो ढेर सारी संभावनाएं हैं टेक्निकल पढ़ाई में। युवा साथियों सोचिए, विचारिए और निर्णय लीजिए, फोन से बात कीजिए। फिलहाल थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: श्रोता बंधु आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। रात के 8 बजे हैं, पेश है कार्यक्रम रजनी गंधा। आपके साथ है रितेश। हमारे तमाम श्रोताओं को मेरा अभिवादन, नमस्कार।

जिंत ले गया। अनुराधा पोडवाल को आप सुन रहे थे फिल्म आपके साथ में। अगला नगमा हमने लिया है फिल्म एक दूजे के लिए से।

0: लता मंगेशकर और साथियों को सुन रहे थे आप राम तेरी गंगा मैली में, संगीतकार गीतकार रविंद्र जैन। श्रोताओं, कार्यक्रम रजनीगंधा में लेते हैं एक छोटा सा विराम, फिर हाजिर होते हैं।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov

0: www.mobilepay.in पर। घर सूर्य घर।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार।
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार।
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम रजनी गंधा में। फिल्म बैराग में सुनते हैं लता मंगेशकर को।

लोफर फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। रजनीगंधा कार्यक्रम यही संपन्न होता है साथियों, रितेश आपको करता है।

0: नमस्कार। सोता हूं हम बोल रहे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। पेश है सुर्खियों में,
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत दौरा, भारत अमरीका संबंधों को नई मजबूती पर। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत पिनाक रंजन चक्रवर्ती। पिनाक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार
2: पिनाक जी, एक बेहद अहम दौरा है अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत में, और भारत अमरीकी संबंधों को नई मजबूती देने पर बेहद जोर दिया जा रहा है। आइए इस महत्वपूर्ण चर्चा को आरंभ करने से पहले भारतीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर के शब्द सुने।
4: आई थिंक वेयर द यूनाइटेड स्टेट्स इज कंसर्न्ड, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन वेरी फोर्थराइट इन पुटिंग फॉरवर्ड इट्स फॉरेन पॉलिसी आउटलुक एज अमेरिका फर्स्ट। Now, where we are concerned, we have a view of India first. So both of us are obviously driven by our respective national interests. There will be many areas where our national interests are in harmony and we work together, which is why we have a strategic partnership.
2: पिनाक जी, एस जयशंकर जी ने कहा कि अमेरिका फर्स्ट की तरह ही भारत इंडिया फर्स्ट के बारे में सोचता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह बहुत साफ कर दिया है कि अमेरिका फर्स्ट की जो उनकी नीति है वो सर्वोपरि है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
5: देखिए, हर एक देश अपनी जो इंटरेस्ट है उसको सबसे नेचुरली प्रायोरिटी देती है। अब उसमें ऐसा होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कभी, अच्छा ठीक है आप ये करिए तो हम ये करेंगे। पर जो ट्रंप साहब ने नीति अपनाई है वो थोड़ा सा और पिछले प्रेसिडेंटों से थोड़ा सा हटकर, क्योंकि वो उस पर ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं कि अमेरिका को क्या फायदा है, वो सबसे पहले वो देख रहे हैं। भारत भी हमेशा देखता है कि भारत का क्या फायदा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि भारत और अमेरिका के संबंध काफी मजबूत है, काफी गहराई है, पर हमारे डिफरेंसेस भी हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल है, पावर इक्वेशन जो होता है वो अलग अलग है, लोग डिफरेंट हैं, उनकी सिस्टम अलग है, वो डिफरेंट पीपल हैं, तो इसमें तो होता ही है, डिफरेंसेस तो होंगे ही, ये नॉर्मल होता है। तो इसीलिए हम लोग बातचीत करते हैं, डायलॉग करते हैं, उसमें से जब कुछ मुद्दा निकलता है इस पे दोनों तरफ राजी होते हैं तब आगे बढ़ती है बात।
2: जी पिनाक जी, आइए सुनते हैं अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के शब्द।
6: एंड वन ऑफ दोज रिलेशनशिप्स दैट आई एम सो एक्साइटेड अबाउट गोइंग इनटू द 21st सेंचुरी गिवन द चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ दिस न्यू एरा इज इंडिया। इट्स वन ऑफ दोज कंट्रीज दैट आई नो दैट वी हैव दिस वेरी वैल्यूएबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद एंड वी शेयर सो मेनी वैल्यूज एंड सो मेनी कॉमन इंटरेस्ट्स। एंड सो ऑब्वियसली आई ट्राई टू गेट अराउंड द वर्ल्ड, आई विल ट्राई टू गो टू अदर सेलिब्रेशंस ऑफ आवर 250th बर्थडे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑल्दो आई डाउट एनी विल हैव अ प्रोडक्शन लाइक दिस वन, बट I want you to know that part of my visit here is also to reinforce how important this relationship is, how exciting it is, and how many opportunities we have to do things together. If I think about all of the key issues and all of the key opportunities of the modern economy, India and the United States together are perfectly positioned to work together on these issues to achieve a better life for the people of the United States, for the people of India, and frankly for the people of other countries working together as well.
2: पिनाक जी, मार्को रूबियो ने कहा कि न सिर्फ अमेरिका और भारत के लोगों के लिए बल्कि विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी में रहने वाले लोगों के लिए भी भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो उन सब के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी पार्टनरशिप्स अमेरिका की हैं उनमें भारत की पार्टनरशिप को अमेरिका बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है और समझता है कि 21वीं सदी में आगे बढ़ते वक्त भारत अमेरिका के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। आप क्या कहेंगे इस पर?
5: स्टेटमेंट में तो काफी चीजें उन्होंने कही जो अच्छी हैं, पर उसका जो नतीजा अगर असली निकालना है तो वो नेगोशिएशन से ही निकलेगा। जैसे हमारे ट्रेड नेगोशिएशन अभी चल रहे हैं तो उसका क्या होगा, फाइनली उसका रूप क्या होगा, वो देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये जो बातें सेक्रेटरी रूबियो ने कही क्या उसका कोई झलक उसमें दिखाई देता है, ये हम लोग एसेस करेंगे, क्योंकि कहना एक बात है और इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अमरीका और इंडिया के संबंध जो है वो नेचुरली इन्फ्लुएंस करेगा बहुत लोगों को, हमारे

0: को तो करेगा ही, उनके देश को करेगा और बाकी देशों को भी करेगा, क्योंकि बड़े बड़े देश हैं जो मिलिट्री और इकोनॉमिकली राइज कर रहे हैं। अमेरिका तो है ही मिलिटरली और इकोनॉमिकली सबसे पावरफुल कंट्री, और इंडिया का भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो भार है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो हमारे संबंध है ये इन्फ्लुएंस करेगा, दुनिया को करेगा, रीजन को करेगा और दोनों मुल्कों को करेगा।
1: पिनाक जी, कई बार कोशिश की गई कि व्यवसाय की डील क्रैक की जाए, ट्रेड नेगोशिएशन किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, पर अब तक ये मुमकिन नहीं हो पाया है। साथ ही साथ मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि रशिया पर लगे जो सैंक्शंस हैं, जितनी भी पाबंद हैं, वो इंडिया की तरफ टारगेट नहीं किए गए हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि हम रशिया के खिलाफ तो हैं लेकिन भारत और रूस के जो संबंध हैं उनके खिलाफ नहीं है। ये बात कितनी सच है और असल में प्रैक्टिकली कितना ज्यादा हम देख पा रहे हैं कि इसका असर इंडिया यूएस के रिलेशंस पर पड़ रहा है?
0: इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि सैंक्शंस का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर तो पड़ ही रहा है
1: जी,
0: क्योंकि हम लोग उसके साथ बिजनेस करते हैं, हमारी मिलिट्री रिलेशनशिप है और फिर तेल खरीदते हैं क्योंकि वो हमको सस्ते में मिल रहा था तेल। तो ये कहना कि ये इंडिया के खिलाफ नहीं है शायद कुछ हद तक सही है, पर बात तो ये है जो भी रशिया के साथ तेल खरीदता तो सबको इफेक्ट किया है, उसमें इंडिया भी है। तो हम तो उस नजरिए से देखेंगे कि हमको क्यों इफेक्ट हो रहा है, आप ऐसी नीतियां क्यों अपना रहे हो जिसमें हमें इफेक्ट हो रहा है। एक स्तर पर आप कहते हो जैसे रूबियो साहब ने कहा कि हम बहुत बड़े दोस्त हैं, पर दोस्त के खिलाफ इस तरह का एक्शन मतलब डायरेक्टली ना ले पर इनडायरेक्टली तो फर्क पड़ रहा है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही काम होना चाहिए। ये सैंक्शंस वगैरह जो है ये टेम्पररी है, कभी कभी वो उठा देते हैं फिर कहते नहीं हम फिर लगा देंगे, तो इस तरह की चीजों में काफी दिक्कत हो जाती है, सप्लाई चेन्स जो है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए सैंक्शंस की नीतियों से हम लोग खुश नहीं हो सकते और कभी भी खुश नहीं हो।
1: पिनाक जी, आपने एक बेहद जरूरी शब्द कहा, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन को आज की इस दुनिया में हर देश या हर उभरता हुआ देश या हर विकसित देश कंट्रोल करना चाहता है, नियंत्रित करना चाहता है। वो चाहता है कि सप्लाई चेन उनके लिए लाभकारी हो। क्या लगता है कि जितनी भी ट्रेड नेगोशिएशंस हैं अब या अब के बाद या इस विश्व की जो परिस्थिति है उसके बाद, इस बात पर निर्भर करेंगी कि सप्लाई चेन जिन देशों के बीच में जो अग्रीमेंट्स हो रहे हैं उनको कितना लाभ देती हैं, और अब हम म्यूचुअल या मल्टीलैटरल अग्रीमेंट से आगे बढ़कर सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल अग्रीमेंट्स के विश्व की तरफ जा रहे हैं?
0: देखिए, वो तो मल्टीलैटरल WTO जो एग्रीमेंट्स थे वो तो ट्रंप साहब ने अपनी नीतियों के धक्के से उसको तो उन्होंने खत्म ही कर दिया है ऑलमोस्ट, पर जो उसको मानते हैं उसके साथ तो चल रहा है, पर अब सब लोग बायलैटरल की तरफ झुक रहे हैं
1: जी।
0: क्योंकि जो सबसे बड़ा इकोनॉमी दुनिया में है वो अगर कहता है कि हम नहीं मानते हैं मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, वो एक तरफा उन्होंने वो डिसीशन लिया है। इसीलिए भारत भी EU के साथ बायलैटरल कर चुका है, उसके बाद नॉर्डिक स्टेट्स जो है उनके साथ भी करेंगे, सबके साथ ही अब करना पड़ेगा क्योंकि इकोनॉमी चलाने के लिए ट्रेड बहुत जरूरी है और उससे सप्लाई चेन्स बहुत जरूरी है। तो सप्लाई चेन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उसके लिए भी नीतियां बदलनी पड़ती है और इंडिया बदल रही है नीति, क्योंकि हमारे यहाँ सप्लाई चेन्स के जो कई हब्स हैं वो अब यहाँ बनने लगे हैं। तो इसलिए हमें भी अपनी जो इंटरेस्ट है वो देखना है, पर बायलैटरल हो जाए तो ठीक है, वो तो होना ही पड़ेगा क्योंकि अब जब मल्टीलैटरल आप मानने को तैयार नहीं है तो अमेरिका के साथ तो बातचीत कर ही रहे हैं हम, तो मल्टीलैटरल जो बायलैटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो जब हो जाता है तो तब फिर मामला फिर बैक टू नॉर्मल हो सकता है, पर नॉर्मल नॉट इन द सेंस कि जो दुनिया पहले थी जहां मल्टीलैटरल एग्रीमेंट सब मानते थे, पर वो दुनिया नहीं रहेगी अब बायलैटरल एग्रीमेंट्स की दुनिया में हम पहुंच गए।
1: तो पिनाक साहब, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब हो, जब मध्यस्थता ना हो पाए, तो किन मुद्दों पर बातचीत करती हैं सरकारें? आपके तजुर्बे से आप क्या बता सकते हैं श्रोताओं को कि वो कौन से नेगोशिएशन पॉइंट्स होते हैं जिन पर अंत में ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि चलिए हम अब इन पॉइंट्स पर एक दूसरे से सहमति जताते हैं और अब आगे चलकर हम इस तरीके से अपनी पार्टनरशिप को और बढ़ाना चाहेंगे?
0: ट्रेड का जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि वहां पे एग्रीमेंट्स काफी हो जाती हैं कि अच्छा इस आइटम पर हम ये करेंगे, उस आइटम पर इतना ड्यूटी लगाएंगे, पर कुछ आइटम हमेशा बच जाती है क्योंकि बहुत सारे आइटम्स हैं। अब हमारी तरफ से जो इंटरेस्ट है उस आइटम को हम चाहते हैं कि कम ड्यूटी लगे और वो अपनी तरफ से बोलेंगे कि नहीं इस पे आप जीरो ड्यूटी कर दें। देखिए, अमरीका ने जो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने ये नीति अपनाई है कि जिन देशों के साथ हमारा

0: एडवर्स ट्रेड इम्बैलेंस है, यानी जो लोग हमें ज्यादा बेचते हैं और हम उन्हें कम बेचते हैं
1: जी,
0: उनके साथ हमारा रुख बदलेगा और उन्होंने बदला भी चाइना के साथ हमारे साथ, क्योंकि हमारे लिए एक ट्रेड बैलेंस जो है वो हमारे फेवर में है, वो 40-45 बिलियन डॉलर है। अब अमेरिका की ये नीति के बजाय अब वो ज्यादा हमको बेचना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आप हमें ज्यादा बेचते हो पर हम नहीं बेच पाते हैं क्योंकि आपके टैरिफ ज्यादा है। और हमारी तरफ से हमने बोला ठीक है, आप ट्रेड एग्रीमेंट अगर कर लेते हैं तो बात हो जाएगी, तो हम लोग भी थोड़ा कम कर देंगे टैरिफ आपके अच्छे जो गुड्स हैं उन पर। फिर एक और बात थी कि वो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो हमने मना कर दिया है कि वो हम नहीं खोलेंगे डेयरी एंड एग्रीकल्चर, क्योंकि करोड़ों लोग इस पे निर्भर हैं और वो गरीबी की रेखा से ऊपर ही हैं और कुछ गरीबी रेखा से नीचे भी हैं, तो इसके उनका जो जीवन है हम नष्ट नहीं करना चाहते, तो इस पे तो हम अटल रहेंगे मुझे लगता है, पर बाकी जितने भी चीज हैं उनको दूसरी जगह कंसेशंस दे देंगे। तो इस तरह से बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, तो बैठ के कई हो जाता है, फिर कुछ बाकी रह जाता है, तो फिर बाकी चीजों पे जाके चर्चा होती है अंदरूनी भी, फिर बैठकर भी दूसरे मुल्क के साथ जो बैठते हैं उसके भी सब चर्चा होती है और तब जाके डिसीजन निकलता है। फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज ही होता है, पर एक कॉम्प्रोमाइज म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है।
1: बिल्कुल ठीक बात कही आपने। और इसी बीच जो ये एक बदलता विश्व प्रारूप हमारे सामने है और किस तरीके से पश्चिमी एशिया में जो संघर्ष चलता ही जा रहा है, अभी फिलहाल उसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है, आपको क्या लगता है भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए भारत चीन रिश्ते कितने अहम हो जाते हैं? भारत ने अब चीन के साथ व्यवसाय दोबारा धीरे धीरे धीमे धीमे ही सही ग्रेजुअली ही सही दोबारा शुरू किया है। चीन और रूस के रिश्ते हम सभी जानते हैं कि बेहद मजबूत हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत और अमेरिका साथ नहीं है, वैसे ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे भारत और चीन भी साथ नहीं है, लेकिन भारत और चीन ज्योग्राफिकली बेहद करीब हैं और हम जानते हैं कि इससे पहले आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे हैं। आपको क्या लगता है आने वाले समय में भारत और चीन के रिश्ते कितना ये तय करेंगे कि भारत अमेरिका के रिश्ते कितने मजबूत रहते हैं?
0: ट्रायंगल जो हम बनाते हैं कि चीन भारत और अमेरिका
1: जी,
0: इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो मतलब इंटरेस्ट्स हैं वो अलग अलग हैं
1: जी,
0: और इसीलिए चीन के साथ भी हमारे इंटरेस्ट हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चीन भी बहुत बड़ा इकोनॉमी बन चुका है
1: बिल्कुल,
0: और सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता
1: बिल्कुल,
0: वो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। उनके यहाँ ऐसी चीजें हैं जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ्स हैं, वो 90% कंट्रोल करते हैं, तो ट्रेड तो करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रंप भी वहां पहुंचे थे बीजिंग उनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि अमेरिकन कॉर्पोरेट सेक्टर को भी फर्क पड़ रहा है, तो इसलिए दबाव तो वो ट्रेड भी यूज करते हैं लोग दबाव बनाने के लिए कि अगर आपके पास एक मोनोपोली हो किसी आइटम का तब दूसरों को जब लेवरेज करते हैं तो आप फायदा देखते हैं अपने देश के लिए। चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड भी बहुत बड़ा है और हमारा जो ट्रेड है वो एडवर्स बैलेंस है हमारा, हम उतना नहीं एक्सपोर्ट कर पाते, और आप आज बाजार में देख लीजिए चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड जो आइटम्स हैं गुड्स हैं कितने भरे हुए हैं। चाइना हमारे यहाँ मोबाइल बनाते हैं, कई चीजें हैं जो उसमें होता है, इसलिए चाइना को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि इकोनॉमिकली हम लोग बड़े इंटरडिपेंडेंट हैं, पूरी दुनिया ही आज इंटरडिपेंडेंट है, इसीलिए नेचुरली ये नेगोशिएशंस करके, और इंडिया ने भी देखा कि अगर अमेरिका इस तरह से हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाता है तो हमें फिर दूसरे मार्केट ढूंढने पड़ेंगे, हमें दूसरों के साथ भी हमें ट्रेड की जो चिंता है उसको कैसे बढ़ाया जाए वो सोचना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में चाइना काफी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और कई चीजों में तो वो अमरीका से भी आगे चला गया, तो इसलिए हमें ये रियलिस्टिक पोजीशन को लेना ही पड़ेगा। और चाइना के पास इन्वेस्टमेंट्स है, वो तो चाहते हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए
1: बिल्कुल। मीनाक्षी साहब, भारतीय मूल के जो लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं, टैक्स भरते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी जो अमेरिका के ग्रोथ रेट में बहुत अहम योगदान देती है, उनके लिए भी कुछ अच्छी खबर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
0: देखिए, वो तो कह रहे हैं कि हम अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को ओवरऑल कर रहे हैं। अब जैसे सेक्रेटरी रूबियो ने कहा दिल्ली में अपने स्पीच में कि जो नया इमिग्रेशन पॉलिसी हम कर रहे हैं शायद उससे भारतीयों को ज्यादा फायदा मिले, तो देखते हैं कि उनकी नई इमिग्रेशन पॉलिसी क्या बनेगी और उसमें फाइनली क्या होगा इस तरह की चीजों को सॉर्ट आउट करने।
1: पिनाक जी, आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: श्रोतो, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली खराबी सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण
2: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म भूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।

0: और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
2: Several key agreements were signed.
3: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
0: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया उर्वरक
4: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुँच चुकी है।
5: Like metric tons of imports have reached our shores.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशिया 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमान गिल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, अब आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉ. एन. राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पे जो आप रहते हैं वहां पे मुंबई में या महाराष्ट्र में, जैसे आपने मुझसे कहा,
1: जी
0: तो वहां पे कितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स हैं उसके बारे में आपको तहत जानकारी मिलेगी। उसमें एक नंबर होगा जहां पे आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, जस्ट टू वेरीफाई कि आप एक जेन्युइन पर्सन है। एक ओटीपी आते ही आपका जेन्युइन चेक करके वहां के जितने प्रोफेशनल केयर गिवर्स है वहां पे एक मैसेज चला जाएगा उनको कि आप ये सेवा चाहती है। उसके हिसाब से जो भी फ्री होंगे या अभी कहीं काम नहीं कर रहे होंगे वो आपको कॉल बैक करेंगे आपके नंबर पे और फिर आप उनकी सुविधाएं यूज कर
1: तो ये नंबर्स रजिस्टर्ड होंगे, जैसे अगर हमने हमें ओटीपी आएगा और अगर कोई बुजुर्ग है वो चाहता है कि है, तो ये इसको अगर हम वेरीफाई करने के लिए तो उनके पास कुछ रिकॉर्ड होगा या मेडिकल हिस्ट्री भी ऐसी कुछ भी देनी होगी उस समय?
0: नहीं, एक सीनियर सिटीजन या उसके घर के परिवार वाले अगर फोन करते हैं तो उनको वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं के मोबाइल पे ओटीपी आएगा
1: जी,
0: कि हमारे जेरियाट्रिक केयर गिवर का वहां पे सिर्फ नाम होगा, वो किस जेंडर का है वो होगा और प्रोफेशनली क्वालिफाइड है ये होगा, इसके अलावा वहां पे कोई जानकारी नहीं होगी।
1: और एक और सवाल आया है हमारा,
0: इसका पार्ट टू भी,
1: ये डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस के लिए, क्या पेड है, भुगतान देना पड़ेगा?
0: जी नहीं, किसी भी नागरिक को इस सेवा के लिए कोई भी भुगतान नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ एक ओटीपी से अपना जेन्युइनिटी वेरीफाई करना होगा। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जब आप इनकी सर्विसेज लोगे, आपने किसी की सर्विसेज हायर की है उस पे, तो इस हिसाब से का जो भी पेमेंट होगा वो आपके वहां के अवेलेबल चार्जेस पे आपको देना पड़ेगा, पर इसका पुलिस वेरिफिकेशन हो, कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो, वो आप ही को करना पड़ेगा। हम सिर्फ प्रोफेशनली ट्रेंड केयर गिवर्स दे रहे हैं
1: जी, हम ये सब जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, बाकी की जो प्रोसेस होगा वो अकॉर्डिंगली होगा
0: जी।
1: सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़े हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। हेलो,
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको आपको भी मालूम है कि सीनियर सिटीजन जब अपनी एज पे आ जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी कान सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है
0: जी,
2: वो फोन चलाने लायक नहीं रह जाते और कोई स्मार्टफोन नहीं चलाना जानता हो। कई लोग ऐसे हैं जो मोबाइल ही चलाना नहीं जानते, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे लोगों की क्या एक अलग ही प्रॉब्लम होती है? कोई बर्थ दिव्यांग है, किसी के दोनों पैर खराब है, वो अपने घर से तो निकल भी नहीं सकते, उनको तो लेटरिन बाथरूम बिठाने के लिए भी
1: जी मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्मार्टफोन से या तकनीक से बहुत परिचित ना हो और जो ये एक्सेस ना कर सके तो उन्हें किस तरह से सहायता मिलेगी? जी धर्मवीर जी, और संजय सूरी जी का भी हमारे पास इसी से जुड़ा सवाल है व्हाट्सएप पे कि जैसे जो कई सीनियर सिटीजन्स हैं जो वो बहुत सेवी नहीं है, जो मतलब टेक्निक्स और जो आजकल की जो नई सेवाएं आ रही हैं वो मोबाइल पे वो नहीं चाहते, तो उनके लिए ये कैसे हेल्प करेगी और कौन हेल्प कर सकता है इसको लेकर?
0: जी, इसमें एक हमारा एल्डर लाइन है 14567, ये नंबर हमारा एल्डर लाइन का है जो हमेशा इस ऐप से जुड़ा हुआ है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक 14567 पे डायल करके जो भी सेवाएं हैं वो उसके बारे में तहत जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए मोबाइल जानकारी होना या मोबाइल पे टेक सेवी होना जरूरत नहीं है।
1: जी थैंक यू मोनाली जी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न था जो हमारे एल्डरी के लिए। और एक और हमारा व्हाट्सएप पे प्रश्न है, ये है कमल कांत जी का हैदराबाद से कि हाउ कैन सीनियर सिटीजन्स गेट हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसीज, अगर आपातकालीन कई बार होता है और बहुत इमरजेंसी कोई होता नहीं क्योंकि अकेलेपन में रहते अकेले रहते हैं, तो उस समय बुजुर्ग को जो बुजुर्ग है वरिष्ठ नागरिकों को किस तरह से सहायता सुलभ हो सकती है?
0: जी थैंक यू कमलकांत सर आपके क्वेश्चन के लिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो जीवन ऐप में भी और सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल पे भी आपको पता होगा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 14567, तो यही सुविधा इमरजेंसी में हमारे वरिष्ठ नागरिक यूज कर सकते हैं। जब आप जीवन ऐप करते हैं तो इसका हमने 112 और 108 के साथ भी उसी पे एक सुविधा प्रदान की हुई है जिसके माध्यम से आप तीनों नंबर्स पे कहीं भी अपना हेल्प या इमरजेंसी पे आप कॉल कर सकते हैं।
1: और एक बहुत ही विशेष अनुरोध आया है हमारे पास व्हाट्सएप से कि आप प्लीज जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मराठी में चाहते हैं, और उनका प्रश्न ये है, अरुण पवार जी हैं, उनका प्रश्न ये है कि हाउ कैन आई फाइंड नियर बाय वॉक इन सेंटर फॉर सपोर्टिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस फ्रॉम जीवन मोबाइल ऐप। अनुरोध किया है उन्होंने बहुत ही।
0: थैंक यू अरुण पवार जी, मी तुम्हाला मराठीमध्येच उत्तर देईल. आमच्या याच्यात राष्ट्रीय वयोश्री योजनेच्या तहत पुष्कळ सेंटर्स ऑनलाईन अवेलेबल आहेत. तुम्ही तिथे नाव टाका आणि तुमच्या जागेत तुम्हाला मिळेल. अभी मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलना चाहूंगी कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत हम लोग जैसे कैंप्स लगाते हैं वो ऑनलाइन सेंटर्स के पूरी जानकारी 100 के करीब हमारे दिव्य वयोश्री केंद्र है. वहां पे बुजुर्ग जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस की जरूरतें जो होंगी वो आधार कार्ड का देख के परिचय पत्र दे के ले सकते हैं. तो ये जानकारी ऑलरेडी हमारे जीवन ऐप पे भी अवेलेबल है
1: जी. और सवाल है गोपाल सोनी जी का राजस्थान के सीकर से और संजय सूरी जी का जो कई उनके जो प्रश्न हैं दोनों के वो समान हैं. उनका कहना है कि ये जानना चाहते हैं कि जो ऐप लॉन्च किए गए हैं उसमें जो वरिष्ठ नागरिकों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा.
0: जी संजय सूरी जी और गोपाल सोनी जी, आपके सवालों के लिए तो पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि जीवन ऐप के बारे में मैं अभी थोड़ा सा विस्तार से आपको जानकारी देना चाहूंगी. जीवन ऐप में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आसपास के सीनियर सिटीजन होम जिसको हम वयो आश्रम बोलते हैं उसकी पूरी जानकारी जो हमारे मंत्रालय से ग्रांट्स पाते हैं उनकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी विद ज्योग्राफिकल लोकेशन नाम पता. दूसरा है एल्डर लाइन जैसे मैंने कहा 14567 उसका 112 और 108 के साथ. तीसरी है हमारे राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत जितने कैंप्स लगने वाले हैं और जितने वॉक इन सेंटर से उसके बारे में. चौथी जानकारी आपको मिल सकती है जहां पे हमारे बहुत से सीनियर सिटीजन जो है अपने पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या स्कीम है कहां से लिया जाए या फिर आयुष्मान भारत कार्ड जो है जहां कहां से मिल सकता है क्या क्या सुविधाएं हैं कहां अप्लाई करना हो इन सब के बारे में इस प्रोग्राम पे हम लोगों ने एक इंटीग्रेशन शुरू किया हुआ है. इसके अलावा हमारे जितने भी समझौता ज्ञापन हुए हैं एमओयू हुए हैं वो आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हो ब्रह्म कुमारीज हो वेव विकास हो या जिस भी संस्थाओं के साथ हमारा काम चल रहा है हमारे जितने भी स्कीम्स के बारे में जो हमारा ब्यौरा है हम लोग इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग के प्रोग्राम कर रहे हैं हमारे जो भी नए पहल हैं इसकी गैलरी है मैसेजेस है अनुभव बोलता है जहां पे सीनियर सिटीजन्स आके भी बोलते हैं तो ये सब जानकारी आपको उस जीवन ऐप में भी उपलब्ध होगी.
1: और संजय सूरी जी का एक और दूसरा प्रश्न ये है क्योंकि जैसे आपने अभी मराठी में जवाब दिया तो ऐसे कई श्रोता जानना चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो सुविधा दी जा रही है तो उपलब्ध होगी.
0: जी इसका इसका प्रयास चल रहा है और तुरंत ये उपलब्ध हो जाएगी
1: ताकि लोगों को आसानी हो.
0: जी, और जो संजीवनी
1: संजय सूरी जी और सासाराम बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी.
3: जी नमस्कार मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ. इसमें मैडम ने अभी बताया बहुत अच्छा कि दूर दराज तक कैसे हम लोग इसको पहुँच बना सकते हैं. मेरा इसमें एक इसमें और ऐड करना था कि क्या जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूर दराज तक जो उसमें कुछ ऐसा रेशियो भी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चल फिर नहीं सकते हैं उन तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं. तो इसमें ये हो सकता है कि जैसे सेवा केंद्र के माध्यम से या कुछ ऐसा अपॉइंटमेंट हो जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंक की जो सेवाएं हैं वो लगातार पहुंच पर नहीं है उसके हिसाब से कुछ ऐसा प्रोग्राम करके ताकि वहां तक दूर बैठे लोगों तक भी वो पहुंच सके. जो मैडम ने बताया था बहुत अच्छा अच्छा है. ये भी हो सकता है कि कुछ 10% 20% जो भी थोड़ा बहुत छूट दी जाए तो वहां तक हम लोग पहुंच बना सकते हैं. जी
1: सुझाव दे रहे हैं अमित जी कि दूर दराज क्षेत्रों तक अगर पहुंच बढ़ानी हो तो.
0: जी अमित उपाध्याय जी सासाराम से थैंक यू आपके प्रश्न के लिए. हमारे बिहाफ पे हमारे स्टेट गवर्नमेंट जितने भी है वो भी हमारे तहत हमारा बहुत सा कार्यक्रम इस पे सुचारू रूप से चलाते हैं. तो यही नहीं है कि केंद्र में ही हम चला रहे हैं पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या सामाजिक न्याय मंत्रालय जो आपके स्टेट के हैं बिहार के जैसे तो आप वहां भी जाके उनसे ये मांग सकते हैं. वहां भी वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक वेलफेयर ऑफिसर होता है. तो हमारी पहल ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट के साथ पहल शुरू हो चुकी है कि आप तक हम पहुंचे.
1: जी हाँ तो सिर्फ ये शहरों तक सीमित नहीं है तो पूरे देश में हर कोने तक इस सुविधा को पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का. मोनाली जी अगर देखूं जैसे हमने शुरुआत में अकेलेपन की भी बात की तो जो वरिष्ठ नागरिकों के जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें तो ये कितनी उपयोगी हो सकती है.

0: मैं इसमें एक आपको उदाहरण पेश करना चाहूंगी। हमारा जो 14567 है, इस पे बहुत से हमारे सीनियर सिटीजन हैं, 40-45 मिनट सिर्फ बोलते हैं क्योंकि अकेले रहते हैं तो उन्हें कोई बोलने वाला चाहिए। तो ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं जहां पे बुजुर्ग हमसे बातें करते रहते हैं। तो इसके साथ साथ अभी हमारे मंत्रालय ने, माननीय मंत्री जी ने भी इंटर जनरेशन बॉन्डिंग पे काफी जोर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के साथ भी हमने ऐसे बहुत से प्रोग्राम साझा करने चाहे हैं, वॉकथॉन्स करते हैं, इंटर जनरेशन बॉन्डिंग के नाम पे बहुत से हमने सीरीज भी शुरू की है। तो हर तरह से प्रयास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है कि हम ये जो सामाजिक इंक्लूसिव सोसाइटी हमारे बुजुर्गों के साथ एकजुट होके चले का प्रयास करते हैं कि वो अकेलापन महसूस ना करें।
1: जी हाँ, तो मतलब इसमें जो है कई समाजसेवी संस्थाएं भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकती हैं।
0: जी
1: ठीक है, मतलब ताकि जो ज्यादा लोगों तक अगर हम हो तो पहुंच बना सके। तो अगर मैं एक संक्षेप में जाना चाहूं, आपने जैसे कुछ कुछ योजनाएं बताई और जैसे आयुष्मान योजना है, तो क्या ये भी हमें उपलब्ध होगी? और जो बेसिक योजनाएं हैं वयोवृद्ध जो हमारे जन हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, तो एक बेसिक जानना चाहती हूँ कि मुख्य तौर पर क्या क्या योजनाएं हैं, आप संक्षेप में बताएं।
0: अभी तो हमने जो जीवन पोर्टल जो लॉन्च किया है उसमें हमने आयुष्मान भारत जो हमारे सीनियर सिटीजन या सीनियर नागरिकों के लिए है, आभा कार्ड, उसके लिए हमने प्रयास किया है। ओल्ड एज पेंशन जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देता है उसके लिए प्रयास किया है। जीवन प्रमाण जो पोस्टल और बाकी मिनिस्ट्रीज देती है उसका भी इंटीग्रेशन चल रहा है। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स है जो हमने अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाते हैं भारत सरकार, उसका बैक एंड से इंटीग्रेशन हमने अभी धीरे धीरे शुरू किया हुआ है इस पोर्टल के माध्यम से कि हमारे बुजुर्ग वन स्टॉप सॉल्यूशन या वन प्लेटफॉर्म पे ही उन सबको ये मिल जाए।
1: अच्छा, मतलब एक ही जगह पे, क्योंकि कई योजनाएं हैं, कई जो उसके एप्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन एक ही जगह पे सारी योजनाएं उपलब्ध है, तो उससे बहुत सहूलियत होगी जो हमारे वृद्ध जन है। पुणे से जुड़े हैं श्रीपद झाकड़े जी।
2: हेलो हेलो,
1: नमस्कार श्रीपद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद। मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ पुणे से। तो मेरा सवाल ये है कि मैं दृष्टिहीन हूँ और वृद्धाश्रम में रहते हैं, मतलब हम तो मतलब हम लोगों को किस प्रकार इन सेवाओं का लाभ मिल सकता है? कारण हमारे पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं है और कोई हम ऑपरेट नहीं कर सकते, तो हमको कैसे मतलब इसका उपयोग हो सकता है मतलब हम लोगों को?
1: जी हाँ, दृष्टिहीन है और वृद्धाश्रम में रहते हैं, स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए क्या उपाय है?
0: श्रीपाद जी, आप पुणे से बोल रहे हैं, सीनियर सिटीजन होम से?
1: जी, अब डिस्कनेक्ट हो गया है, पर हाँ जी, हाँ, उन्होंने बताया वृद्धाश्रम
0: से रहे। तो हमने जो जीवन ऐप लॉन्च किया है इसमें तो हर जानकारी है। इसके अलावा जितने एनजीओ जो सीनियर सिटीजन होम्स को कार्यान्वित कर रहे हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं, वो भी इस ऐप को देख के जो जो कार्यक्रम आसपास हो रहे हैं उसकी पूरी जानकारी उस पे है। आप अपने मैनेजमेंट स्टाफ को भी पूछ के ये जानकारी वहां से ले सकते हैं।
1: जी हाँ, तो बहुत इजी करने की कोशिश की गई है और आप तक पहुंच बढ़ाने की सरकार की कोशिश की गई है। अगर मैं विशेषता जानना चाहूँ इस ऐप की और इस डैशबोर्ड की, तो क्या है जो बुजुर्गों के लिए हो? क्योंकि जो टेक्निकल जो इतने सेवी नहीं है और स्मार्टफोन जिनको चलाने इतने खास नहीं आते, तो ऐसे में उनके लिए क्या विशेषता है?
0: पहले बात करते हैं शतायु की। शतायु नाम ही इसलिए हमने दिया है कि आप 100 साल जिए, तो हम आपके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या भावनात्मक सामाजिक जुड़ाव के लिए हमने शतायु ऐप नाम उसका किया है, जहाँ पे आपकी सुविधा के लिए जेरियाट्रिक केयर गिवर्स के मदद मिले कि आपको डेली कंपेनियनशिप हो, आपके वेलबीन के लिए हो, योगा हो, इन सब के लिए आपको मदद मिले। आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, ऐप पे जाके आप सीधा आपके आसपास के जितने प्रोफेशनली ट्रेंड है उसके बारे में जानकारी करके उनकी सर्विसेस ले सकते हैं। अब आते हैं हम जीवन ऐप पे, जो दूसरा हमने पोर्टल लॉन्च किया है जीवन, उसके तहत ना ही जैसे मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन होम्स, राष्ट्रीय वयोश्री कैंप और बाकी भी है, इसके अलावा बहुत से ऐसे भी हमारे पास कार्यक्रम होते हैं जिसपे आप डायरेक्टली लॉन्च करके आप इसके ऑनलाइन जुड़ के भी आप ले सकते हैं जानकारियां।
1: जी जी, तो मतलब आप जानकारी लेना भी आपके लिए आसान, और सबसे आसान तो ये है कि जो आपने एल्डरली जो हेल्पलाइन नंबर बताया हुआ है तो 14567 14567 इस

0: मिलेगी मिलेगी। इसके अलावा 112 जो आपका ERSS नंबर है, इस पे भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जिस पे आपको बाकी मदद भी वहां के वहां पहुंचाई जाएगी।
1: जी हाँ, तो दो नंबर्स मैम ने बताए हैं 14567 और जो कनेक्टेड हैं 112 के साथ भी। तो कोई भी आपात स्थिति हो, इमरजेंसी हो, तो आप इन नंबर्स पे डायल करके आप सेवा ले सकते हैं। अगर जैसे वरिष्ठ लोगों को जो इतने अगर नहीं सुन रहे हैं कार्यक्रम या उन तक ये पहुंच नहीं हो पा रही है कि ये जो सुविधा सरकार ने शुरू की है, तो उन तक इस बारे में जागरूकता लाने के लिए, इन सेवाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
0: एक तो मुझे आकाशवाणी का थैंक यू बोलना चाहिए कि पब्लिक लाइव हुए हैं, तो सब पब्लिक जहां भी है वो सुन रहे हैं, तो एक तो ये पब्लिक डिसेमिनेशन है ही
1: जी
0: प्रेस के तहत, और स्टेट गवर्नमेंट जैसे मैंने कहा कि हमारे बिहाफ पे वो भी बहुत से प्रोग्राम चलाते हैं, तो उनके तहत भी हम ये जीवन ऐप जो है वो भी इसके बारे में वहां पे इन्फॉर्मेशन देंगे, तो हर वरिष्ठ नागरिक तक पहुंचने की हम लोग जरूर प्रयास कर रहे हैं।
1: जी हाँ, जैसे हमने जेरेट्रिक केयर गिवर्स की बात की, और जैसे हमें तो खैर उस बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, पर अगर हम हर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ जब भुगतान करना है, तो अगर हम जाएं दूर दराज के क्षेत्रों में और जो भुगतान सेवा है तो उधर भी उपलब्ध होगी, जो ये प्रोवाइडर्स होंगे, केयर गिवर्स जो होंगे, जो स्वास्थ्य देखभाल जो कर्मी होंगे, कि वहां पर भी उपलब्ध होंगे ये इतनी दूर दराज के क्षेत्रों में भी?
0: जी, अगर वहां पे जैसे दूर से कोई ट्रेंड है उस जगह से, जैसे बिहार से सासाराम से, अगर वहां पे कोई प्रोफेशनली ट्रेंड जेरेट्रिक केयर गिवर है, तो उसके आसपास के लोकेलिटी में जितने लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, वो उसकी पूरी जानकारी वहां मिल जाएगी।
1: जी, दिल्ली से जुड़े हैं राजकुमारी जी।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
2: मैं राजकुमारी रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी आयु 82 वर्ष है मैडम
1: जी।
2: आपके मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया जीवन ऐप क्या है और सीनियर सिटीजन्स को इससे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी मैडम?
1: जी राजकुमारी जी, एक बार आपसे गुजारिश है, फिर से बता दें ऐप के बारे में और क्या इससे लोगों को फायदा होगा।
0: नमस्कार मैम, जीवन जॉइंट एंडली एम्पावर एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क ऐप है, जो एक मोबाइल सॉल्यूशन है। जीवन ऐप में आपको आपके आसपास होने वाले सीनियर सिटीजन होम्स हो, राष्ट्रीय वयोशी कैंप्स हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन या वॉक इन सेंटर जहां पे आप जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस ले सकते हैं, इसके अलावा एल्डर लाइन जो हेल्पलाइन है, और 112 इसके बारे में आप जानकारी, आपको किसी भी चीज की अगर कोई जरूरत हो तो इस वाले में 112 और 14567 पे डायल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी जो जैसे आभा कार्ड है या वयोश्री पेंशन योजना है या जितने भी सीनियर सिटीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐप्स है, उसका इंटीग्रेशन के बारे में जो प्रयास चल रहा है, तो इसकी सब जानकारी जो हमारे वयोश्रेष्ठ नागरिक है उनको मिलने के लिए हमारा मंत्रालय का एक छोटा सा प्रयास है।
1: जी, तो इसमें जैसे आपने स्टेट गवर्नमेंट की भी बात की, तो राज्य सरकारों की क्या भूमिका रहेगी?
0: राज्य सरकार की भूमिका ये होती है, जैसे हम बड़े मेजर इस पे काम करते हैं, वो माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, जहां पे वो हर व्यक्ति के आसपास के या उस स्टेट्स के रिलेटेड की ज्यादा जानकारी उन्हें होती है। एक माइक्रो लेवल पॉलिसी हम बना लेते हैं, पर वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम मोस्टली राज्य सरकारों का होता है, क्योंकि वो एक आम नागरिक से जुड़ते हैं, हम लोग डायरेक्टली नहीं जुड़ पाते, तो हमारा माध्यम होता है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। तो वहां पे जितने मेडिकल कैंप्स लगने हैं, ऑपरेशंस कैटरैक्ट के होने हैं, या जो ट्रेनिंग करवानी है, या डिमेंशिया स्क्रीनिंग हो रही है, तो वो सब जानकारी जो भी कैंप्स करवाने या जो भी आईसी मटेरियल की जानकारी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है।
1: जी, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जुड़े हैं रमा शंकर जी।
3: नमस्कार,
1: आपका सवाल। हाँ जी,
3: मैं ये पूछना चाहता था कि जैसा बहुत लोगों ने प्रश्न किया है कि जो वयोवृद्ध हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जो स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, दूर दराज गांवों में रहते हैं, उनके लिए ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था हो सकती है, यह व्यवस्था क्या की गई है, कृपया बताएं।
1: ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था है कि उन तक ये जो फायदे हैं और ये जो योजनाएं हैं ये प्रयास है पहुंचे?
0: रामाशंकर जी, रामाशंकर जी, आपको मोबाइल

0: टेक सेवी होने की जरूरत नहीं है, आप 14567 डायल करते ही आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इस ऐप में क्या है, या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए मंत्रालय का क्या दायित्व है और मंत्रालय के क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं।
1: अगर उन्हें का स्मार्टफोन भी नहीं है तो क्या करें?
0: 14567 में आपको स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल इससे भी आपका वो टोल फ्री नंबर है, आप डायल कर सकते हैं।
1: जी हाँ, तो अब आपकी जो समस्या था उसका निजात कर दिया मोनाली जी ने, मध्य प्रदेश
0: मंत्रालय ने।
1: जी राजेश नेमा जी। जी राजेश जी, आपका सवाल क्या है?
2: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
1: जी
2: तो मेरा सवाल ये है कि वर्तमान की जो आपाधापी है उसमें घर में जो बुजुर्ग रहते हैं वो परिवार से तालमेल नहीं बैठा पाते, तो इस स्थिति में वह ऐप क्या मदद कर सकता है?
1: जी राजेश जी, अब अक्सर आप देखिए कि सवाल ये है कि आपस में अगर घर में थोड़ा सा मनमुटाव रहता है तो स्थिति में ऐप का, हालांकि मैम ने बताया कि नंबर ही है 14567, और इसके अलावा क्या उन तक सहायता हो सकती है? मोनाली जी,
0: राजेश जी, जैसे हमने कहा कि परिवार के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, परिवार का आपसी मनमुटाव तो अपना पारिवारिक जीवन ही होता है, पर इसके अलावा अगर एब्यूज हो रहा है, मारपीट हो रही है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप 112 और 14567 पे जरूर आप इस पे रेस करिएगा, हम आपके लिए जस्ट वन कॉल अवे हैं।
1: जी तो अगर हम युवा पीढ़ी की बात करूं इसमें, तो युवा पीढ़ी किस तरह से सहायता दे सकती है?
0: जी थैंक यू इस सवाल के लिए, हमारे आदरणीय मंत्री जी भी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी इसके लिए काफी प्रयास करते रहते हैं कि हम इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग और युवाओं को कैसे शामिल किया जाए, कि हम बुजुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ाए जाए, तो इसके इससे साथ हमने बहुत से ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाने की कोशिश की है, जैसे ग्रैंड पेरेंट टीचर मीट स्कूलों में हो जाए, वॉकथॉन्स हो जाए, प्लेज ऑनलाइन प्लेजेस लेने चाहिए, तो इवन जेरेट्रिक केयर गिवर जो है वो युवाओं के लिए ही है, कि आज का युवा कल जाके जो बुजुर्ग हो तो उसके लिए वो अपने घर वालों की कैसे सेवा कर सकता है, तो इससे हम युवाओं को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
1: तो अगर मैं भविष्य में देखूं, अगर आपने जैसे योजनाएं बताई, जो स्कीम्स बताई इसमें है, तो और आगे भविष्य में किस तरह की चीजें इसमें एड ऑन करने की आपकी वो है योजना है?
0: जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी वरिष्ठ नागरिकों के प्रति हमारा जो दायित्व है और दो पिलर्स है, एजिंग विद डिग्निटी और एजिंग एट प्लेस, हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा बुजुर्ग जो है अपने घर में ही रहे और पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यापन करे। तो इसके जैसे मैंने कहा कि पहले भी हमने बहुत से एप्स को जोड़ने की कोशिश की है, हमसे यही रहेगी उम्मीद कि हम और इस पे जोड़ते जाएं।
1: जी धन्यवाद मोनाली जी इस बारे में जानकारी देने के लिए। अगर देखें तो ये जो दोनों चीजें हैं, जीवन ऐप और डैशबोर्ड, ये शतायु डैशबोर्ड है, तो तकनीक और संवेदनशीलता का ये बहुत ही अनोखा संगम है जो बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं, सहायता, देखभाल और सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ये पहल हमारे बुजुर्गों के जीवन में उम्मीद, सुरक्षा और सम्मान को नई रोशनी देगी, यही उम्मीद करते हैं। आप स्टूडियो में आई और विस्तार से चर्चा की, इस बारे में धन्यवाद। और अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं जिनके व्हाट्सएप पे हमें प्रश्न मिले और जिनके हमें कॉल्स आए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह सोमवार को फिर मुलाकात होगी। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

बात, होठों में ऐसी बात, मैं दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात।

उस समय के गानों में कुछ मीनिंगफुल अर्थ होते थे, यानी जब गानों के माध्यम से संवाद अपनी प्रेमिका से, प्रेसी से लोग करते थे। ऐसा ही एक और नगमा आपके लिए।

श्रोता बंधु, आप सुन रहे थे सुनहरी यादें कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आज हमने 70 के दशक के अनमोल नायाब गानों पर आपको सुनाया। रितेश आपसे विदा चाहता है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। शुभ रात्रि, नमस्कार। श्रोतो, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से मीडियम वेव के 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 होने वाले हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनते हैं राग नंद में ख्याल गायन। कलाकार हैं सविता रॉय।

श्रोतों, आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में राग नंद में ख्याल गायन, विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध थी। कलाकार थी सविता रॉय। आकाशवाणी के हम रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल

0: सुबह बीएसएफ की सांचो सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam were also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gondola ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials today said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children.

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं साथियों। संपन्न होती है आज की हमारी सांध्यकालीन सभा। इसी मीटर पर कल प्रातः 5:55 से हमारी पहली सभा पुनः आरंभ होगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद।